0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। आप बने रहिए लंच टाइम रेंट लाइन की बातें हम यहाँ पे थोड़ी देर में करेंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट मी 5599 पे, जहां पे आप मुझे मैसेज भेज के बताएं कि लंच टाइम रेंट लाइन के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी घटना घटित हुई हो जो सचमुच आपको बहुत ज्यादा इरिटेट किया हो। वैसे मैं एक टॉपिक बताता हूँ आपको, एक सबसे बढ़िया टॉपिक है रिगार्डिंग डेलाइट सेविंग। इससे रिलेटेबल अगर कुछ हो रेंट लाइन वाली बातें, तो प्लीज डू सेंड मी, क्योंकि काफी लोग मिस कर देते हैं। मैंने भी मिस कर दिया था, बट लकीली आई हैड नो वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम। अर्ली मॉर्निंग था मेरा, आफ्टरनून में था, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा इफेक्ट तो हुआ था कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी एंड ऑल। बट या अगर उस बारे में कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। इनफैक्ट मम्मी सुबह उठते मुझे बोलती है, जब ये डेलाइट सेविंग हुआ तो मम्मी बोलती है, यार घड़ी बंद होगी, सेल चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा, मम्मी घड़ी तो घूम रही है। और उस टाइम मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि डेलाइट सेविंग हो चुकी है। मैंने कहा, मम्मी घड़ी तो घूम रही है, कहाँ से बंद हुआ? कि नहीं देखना ये टाइम, मेरे को लग रहा रुक गई है, बैटरी लो गई इसलिए रुक गई है। फिर मैं दिमाग लगाया, अरे ये तो डेलाइट सेविंग हुआ। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी डेलाइट सेविंग हो गया और इस वजह से ये घड़ी क्या एक घंटा पीछे चले गई। तो वी जस्ट टू एडजस्ट, नाउ वी आर 7.5 आवर्स अहेड देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो फिर मम्मी ने कहा, अच्छा ये क्या होता है। चलो मम्मी को तो थोड़ा याद था इसलिए मम्मी समझ गई, पापा को समझाना है, मेरे को थोड़े पसीने छूटे। पापा बोले, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, टाइम कैसे चेंज हो गया। मैंने कहा, पापा, मेरे पापा को पूरा एक्सप्लेन किया है, पापा ये देखो ये मैप है और ये लाइंस बीच में दिख रही है, ये बेसिकली टाइम जोन डिवाइड करती है। सो न्यूजीलैंड का एक टाइम पे दो होता था मेरे ख्याल से, अभी एक ही है। वैसे इंडिया में भी दो हुआ करता था, बट उन्होंने काट के एक कर दिया। सो यस, आपके साथ क्या हुआ, मुझे लंच टाइम रेंट लाइन में के सेगमेंट में आप भेजिए। लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।

अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: अटोटियों के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
1: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
0: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
2: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
3: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
4: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
5: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
4: इसीलिए एनजेड पीएमआई से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
6: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही एनजेड पीएमआई के पॉल से बात कीजिए। एनजेड पीएमआई, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4 एनजेड पीएमआई।
7: This is your business. This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Xero.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक वेल यस फटाफट से इस हार की खबर में पढ़ लेता हूं एक्ट लीडर डेविड सिमोर ने सुपरमार्केट्स को ब्रेकअप करने का प्रपोजल को क्रिटिसाइज किया है Well, Act का फोकस है existing chains को तोड़ने की बजाय new supermarkets के लिए एंट्री इजी करना ये काफी मेरे को न्यूज तो आ रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है I mean, proposal रखा गया है but let's see क्या रिजल्ट रहता है इसका यार Party One Stop Approval System और Overseas Food Labels को accept करना जैसे proposal कर रही है ताकि competition बढ़े और grocery जो है वो prices पर pressure भी आए That is so true. I mean, competition hai, toh definitely things will get cheaper, but hopefully in a good way. I mean, it doesn't damage the quality. Let's see. Let's hope for the best.

0: Attention Uber drivers, ये उनके लिए मैसेज है यहाँ पे. If you have already have a claimed with not your fault service, तो आप वेट करते रहिए because आपको जल्द ही claim managers की तरफ से call आने वाला है या फिर they will get in touch with you. On other side, अगर आपने नहीं किया है तो अभी intake 4 है, वो शुरू हो चुका है, तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, apply कर सकते हैं. Just to give you a quick update, make sure that आप उन्हें call ना करें. Call ना करें because they are so busy and they honestly not going to pick up your call. So try not to waste your time over there. Better आप nyfservices.com, ये उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके you can apply directly and get the approved information.
1: Lunchbox with Ketan.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
1: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
1: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
7: City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
8: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
9: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
10: CRL first trip. Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
11: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
12: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
13: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
14: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
2: इसके पीछे
15: लंच के मंच पे
0: चलिए बॉलीवुड की खबर ले लेते हैं. बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ चुकी है. मेकर्स ने यश का रावण लुक रिवील करते हुए एक नया पोस्टर शेयर किया है. यश इस लुक में रॉयल कॉस्ट्यूम, हेवी ज्वेलरीज और पावरफुल एक्सप्रेशन के साथ रावणा के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं. ये रिवील मिस्टर वीस के साथ एक स्पेशल प्रमोशनल इवेंट्स के बाद हुई, जिसमें फिल्म को ग्लोबल अटेंशन भी दिया. नीतीश तिवारी की रामायणा में रणबीर कपूर राम, श्री राम भगवान, साई पल्लवी श्री सीता माता, श्रीमती सीता माता और यश रावणा के रोल प्ले कर रहे हैं. तो यस, फिल्म का पार्ट जो है फर्स्ट दिवाली के टाइम रिलीज होने वाला है इस साल और काफी लोग एक्साइटेड हैं. एंड यस, मैंने लास्ट आर में एक सवाल भी

0: जी आज के दिन वो पैदा हुए थे 1835 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ 1835 के दिन वो उनका जन्मदिन हुआ था पथरी पे। पथरी एक जगह है वहाँ पे।
1: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट NZPMI.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: 800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: वेल आपने कभी सोचा है एक ऐसी जगह आपने डेफिनेटली ये फोटोज देखे होंगे जहां पे बहुत सारे स्टोन फेसेस रखे हुए हैं जमीन पे बहुत जगह वेल उसकी कभी हिस्ट्री के बारे में आपको पता है वेल हिस्ट्री के अगर बारे में बात करें तो ये रही खबर बेसिकली ईस्टर आइलैंड जिसे रापा नुई भी कहा जाता है पैसिफिक ओशन में एक आइसोलेटेड आइलैंड है जिसे 1800 टू 1200 CE के आसपास पॉलिनेशियन लोगों ने ढूंढा था यानी कि डिस्कवर किया था इस आइलैंड की सबसे बड़ी पहचान यही है कि मोआई जिसे कहते हैं वो है जो कि लगभग 1000 बड़े पत्थरों के स्टैच्यूज हैं जो एक फेस के लुक लाइक लगते हैं जिन्हें एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज भी उनके समान यू नो उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया था एक समय पर ओवर पॉपुलेशन और पेड़ों के जो यू नो बहुत ही डिफॉरेस्टेशन हुआ था वहां पे उसकी वजह से यहाँ का जो इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही खराब हो गया था जिससे रिसोर्सेज खत्म होने लगे और आपस में सिविल वॉर शुरू होने लग गई इस क्राइसिस के बाद उन्होंने अपना जो धर्म है उसे बदला और बर्डमैन कल्ट शुरू किया 18th सेंचुरी में यूरोपियंस के आने के बाद पेरुवियन स्लेव रेड्स और स्मॉल पॉक्स जैसे जो डिजीजेस है वो यहाँ आने लगी जिसकी वजह से पॉपुलेशन को बहुत ही ज्यादा असर पड़ा और ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी 1877 तक सिर्फ 111 लोग ही बचे थे एंड 1888 में चिली ने इस आइलैंड को अपने अंदर ले लिया आज एक फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ के लोकल लोग अपनी कल्चर को लेकर यू नो उसे बचाकर टूरिज्म के सामने प्रस्तुत करते हैं

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: वेल चलिए सबसे पहले तो आपको अपडेट दे देता हूँ रिगार्डिंग द पॉडकास्ट। कुछ बहुत ही बढ़िया कंटेंट हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। सो व्हेनेवर यू गेट टाइम, व्हेनेवर यू डोंट फील लाइक यू नो लिसनिंग टू एनी काइंड ऑफ सॉन्ग्स और एनीथिंग एंड यू वांट टू कंज्यूम सम गुड नॉलेज, और अभी के तौर पे अगर आप एलिजिबल है फॉर द यू नो इलेक्शंस एंड ऑल, तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट आपको सुनना चाहिए। और अगर नहीं भी हो तो भी आपको रखना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर यू वुड बी राइट। सो यस, नवतेज रंधावा नेशनल पार्टी कैंपेन मैनेजर जो है वो मनुरेवा एंड ओटाहू से है, जॉइन सैंडी एंड रुजबे, उन्होंने उनसे बातचीत करी हेल्थ केयर स्टाफिंग और फ्रंटलाइन हेल्थ सिस्टम के चैलेंज पर। इससे अगर आपको सुनना है तो मुझे 5599 पे टेक्स्ट भेज दीजिए एंड मेक श्योर दैट आप ड्राइव लिख के मुझे भेजें। और साथ ही ब्रेकफास्ट का शो, विजय एंड पूजा ने काफी बढ़िया डिस्कशन की है रिगार्डिंग सक्सेस और सेटल्ड लाइफ, जो कि सोसाइटी कैसे मेजर करती है। तो यस, चाहे वो होम लोन्स हो, मैरिज हो, पर्सनल एक्सपेक्टेशन के थ्रू, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कशन की है एंड आई एम प्रीटी श्योर यू वुड लव इट। आप BF लिखिए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक आप तक आपके फोन में पहुंच जाए।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
4: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for Nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
5: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip your replay.
3: एक बड़ी खबर लेके आया हूँ क्राइस्टचर्च के लिटलटन टनल के पास एक सीरियस इंसिडेंट में एक आदमी क्रिटिकल इंजर्ड हो चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक मूविंग व्हीकल से गिर गया, जिसके बाद इमरजेंसी सर्विस को रात के करीब 11:40 बजे कॉल की गई. पैरामेडिक्स ने इंजर्ड मैन को तुरंत क्राइस्टचर्च हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां उसकी कंडीशन क्रिटिकल बताई गई है. पुलिस ने इस सीरियस क्रैश यूनिट्स ने इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि मूविंग व्हीकल से गिरने की एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस क्या थी. वैसे ये पुलिस सिचुएशंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इंसिडेंट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन सामने आने का इंतजार भी कर रही है. सो यस, एज सून एज वी गेट टू हियर एनीथिंग, हम आपको जरूर बताएंगे.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

मास्टर क्लास बाय विराट कोहली। जी हाँ, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पहले ओडीआई में 8 विकेट से हरा दिया है। वेस्ट इंडीज ने 295 रन बनाए हैं 7 विकेट खोकर 300 बॉलों पे, यानी कि 50 ओवर में। लेकिन इंडिया ने विराट कोहली और शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी के दम पर टारगेट सिर्फ और सिर्फ 41.4 ओवर में ही चेस कर लिया। विराट कोहली ने अनबीटन 139 बनाया और अपना 55th ओडीआई सेंचुरी कंप्लीट किया है। साथ ही वो 15,000 ओडीआई रन्स कंप्लीट करने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद सिर्फ दूसरे इंडियन बैटर बन चुके हैं। सो यस, शुभमन गिल ने भी 110 रन की सेंचुरी लगाई, जबकि कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर इंडिया की विक्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडिया सीरीज में अब 1-0 से आगे हो चुकी है। What a great start, yeah. What a great start. एक टाइम पे लग रहा था कि शायद it's gonna be very risky, क्योंकि शायद 140 या 150 रन हो चुके थे, एक भी विकेट नहीं गिरा था। But kudos to our bowlers as well. उन्होंने थोड़ा कोशिश करते रहे एंड फील्डर्स एज वेल एंड ऑफकोर्स ऑन अदर साइड विराट कोहली एंड शुभमन गिल। क्या इनिंग थी यार, क्या इनिंग थी।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. एक टॉपिक मुझे रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे शेयर करने का, अबाउट डे लाइट सेविंग. सो यस, मैंने थोड़ा एक रिसर्च किया है. और एक आर जो है वो क्या मैटर करता है? लाइक लोग ये भी बोलते हैं, भाई एक ही आर तो आगे पीछे हुआ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वेल, न्यूजीलैंड में डे लाइट सेविंग का चलता क्लॉक एक आर फॉरवर्ड हो चुका है, जिसका मतलब है कि एक घंटा स्लीप कम, जो कि ऑब्वियसली सभी ने एक्सपीरियंस किया है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये छोटा चेंज भी बॉडी के नेचुरल बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर सकता है और इससे कुछ लोगों को नींद आने में दिक्कत हो सकती है. मॉर्निंग में थोड़ी थकान भी महसूस हो सकती है, मूड, कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्शन टाइम पर भी असर डाल सकती है. सो यस, एक्सपर्ट्स के मुताबिक बॉडी को न्यू रूटीन एडजस्ट करने में कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ वक्त नहीं, कुछ दिन. मॉर्निंग सनलाइट लेना, बेड टाइम ग्रेजुअली एडजस्ट करना और बेडरूम को डार्क रखना एडजस्टमेंट को काफी इजी बना सकता है. वेल, जस्ट इमेजिन यार, हम तो खैर एक घंटे का ही देखते हैं, बट जस्ट इमेजिन टू दोस कंट्रीज जहां पे 6-6 महीने तक रात नहीं होती प्रॉपर और 6-6 महीने तक दिन नहीं होता है, वहां पे कैसे लोग एडजस्ट करते होंगे? लाइक लिटरली मैंने देखे काफी वीडियोस इंस्टाग्राम पे, वायरल वीडियो जहां पे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे मिडनाइट भी थोड़ा थोड़ा उजाला है. जस्ट इमेजिन वहां पे लोग कैसे रहते होंगे ना. अगर किसी ने ऐसी कंट्री में विजिट किया है तो प्लीज डू लेट मी नो आपका एक्सपीरियंस वहां का कैसा रहा. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. हम
1: ड्राइविंग यू होम. Drive show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
5: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
6: Non-stop Bollywood.
7: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
6: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
8: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
9: इसके पीछे
6: हम. Tech Talk.
0: पर ये खबर है टेक्नोलॉजी से. रिसर्चर्स AI के कुछ पोटेंशियल रिस्क को लेकर काफी वार्निंग देते नजर आ रहे हैं. पॉसिबल सिनेरियोस में AI का मिसयूज करके न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, डेंजरस बायो वेपन्स और पावरफुल AI सिस्टम्स का ह्यूमन कंट्रोल से बाहर जाना शामिल है. एक और कंसर्न ये है कि AI एजेंट्स का इंटरनेट पर लार्ज स्केल साइबर अटैक्स करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट या फाइनेंशियल सिस्टम को टारगेट करना. लेकिन एक्सपर्ट्स का ओपिनियन थोड़ा सा अलग भी है यहाँ पे. कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से डूम्सडे, एक्सट्रीम डूम्सडे सिनेरियो को अनलाइकली अ साइंस फिक्शन जैसा मानता है, जबकि दूसरी तरफ AI डेवलपमेंट के साथ स्ट्रॉन्गर सेफ्टी मेजर्स की जरूरत पर जोर भी दे रहे हैं. सो यस, सिंपल अगर शब्दों में कहे तो AI से फायदा के साथ साथ सीरियस रिस्क भी डिस्कशन हो रही है और डिबेट ये भी है कि टेक्नोलॉजी को कितना सेफली डेवलप और कंट्रोल किया जा सकता है. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट.
6: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: Download from upnafm.com.
1: Lunchbox with Ketan.
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी. हम.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
3: And that's all for today, guys. बहुत ही बढ़िया रहा आज की बातें, आज के आज की जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं. साथ में ऑफकोर्स आप ट्यून इन रहिए, आप बने रहिए कॉफी ब्रेक में. सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली, उनके साथ आप कानवा जो है बरकरार रखिए. अमेजिंग टॉपिक वो भी लेके आता है, अमेजिंग बातें वो भी करते हैं. और यस, रुजबे उनके साथ जुड़ जाएंगे इन द ड्राइव शो. बट यस, आई विल टेक अ लीव एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3 लंच बॉक्स के साथ, नई बातों के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, डाउनलोड रोवा टू लिसन हम 80s जुकबॉक्स।
1: इंतहा हो गई इंतजार की।
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: Moisture और ventilation का problem लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
9: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
8: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
10: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
11: Everything's better fresh at New World North Island. Get chicken thighs, $7.99 per kilo, or Rocket Slaw 350 gram, $3.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
12: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
13: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
14: अब हमारा क्या होगा?
15: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
13: तो क्या करें?
16: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
17: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.

0: 3:15 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। नौ आर्टिकल है कि कुछ इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने एनालिसिस किया है और सेवरल बेसिक हाउसहोल्ड कॉस्ट जो है इसके बारे में पता किया है कि कैसे एवरीडे थिंग्स जो है हैव जम्प्ड सिंस 2016। सो 2026 का कंपेरिजन 2016 के साथ किया है एंड कॉस्ट ऑफ राइजन फार मोर देन ओवरऑल 38% इंक्रीज इन द CPI ओवर द सेम पीरियड। सो जैसे 500 ग्राम बटर जो है ये 157% इंक्रीज हुआ है, इसमें स्लाइस्ड वाइट ब्रेड जो है ये भी 120% इंक्रीज हुई है, रेट्स एंड सर्विसेज एक्चुअली में 87% इंक्रीज हुए हैं एंड बिल्डिंग कॉस्ट का भी कैलकुलेट हुआ है 72% इंक्रीज हुआ है इसका भी, मीट पाई इज लाइक 64% इंक्रीज, बर्गर इज 56% इंक्रीज, चिकन ब्रेस्ट इज 2% इंक्रीज। सो स्टैंड आउट इज ऑफ कोर्स बटर जहाँ पे अप हुआ है बाय 157%, मीनिंग अ ब्लॉक दैट कॉस्ट रफली $3.28 इन 2016 वुड कॉस्ट $8.43 टुडे, मतलब मिनिमम इसकी कॉस्ट $8.43 की जाएगी। इंटरेस्टिंगली चिकन जो हैज बियरली मूव्ड बाय कंपैरिजन, सो राइजिंग जस्ट 2% ओवर द डिकेड। सो ये पूरे के पूरे 10 साल के कंपैरिजन में चिकन का ज़्यादा कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ 2% इंक्रीज हुआ है पूरे 10 सालों में। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ये सर्वे में पता चलता है कि 46% ऑफ न्यूजीलैंडर्स सेड दे फील वर्स ऑफ देन दे डिड इन 2016 कंपेयर्ड विद 37% हु सेड दे वर बेटर ऑफ। सो दे ऑल्सो नोटेड कि एवरेज आवरली वेजेस जो है ये ब्रॉडली दे ट्रैक द इन्फ्लेशन सिंस 2016। तो एक्सप्लेनेशन है कि जो लोग हैं ये स्पेंड कर रहे हैं ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम ऑन अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जैसे कि ग्रॉसरीज हो गए, रेट्स हो गए, यूटिलिटीज हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, जिन चीज़ों का आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, जहाँ पे लगना है वो लगना ही है पैसा वहाँ पे, लिविंग लेस मनी फॉर बाकी जो आप स्पेंडिंग करते हैं। व्हाट अबाउट यू, आपका ओवर रिसेंट टाइम आपकी जो कॉस्टिंग है, जो आप एक्सपेंडिचर आपका जो होता है, जो आप खर्चा वगैरह करते हो, आपका ज़्यादा खर्चा अभी अगर आप पिछले 5 साल का कंपेरिजन भी अगर लेके चलते हो, पिछले 5 सालों में आपने खुद के ऊपर कितना स्पेंड किया है, अगर आपके पास परसेंटेज है लाइक 20-30% एंड बाकी यूटिलिटीज़ यू नो अनअवॉइडेबल कॉस्ट आपकी कितनी परसेंटेज गई है, अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो कितना परसेंटेज रहेगा ये, इज़ इट लाइक 50-50% की 50% आप स्पेंड कर रहे हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट के ऊपर, 50% आप खुद पे अपना खर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो कपड़े ले लिए नए, ऐसे जूते ले लिए जिनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही जब हम शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं कि ओके ये अच्छा लगा खरीद लेते हैं, ये फ़ोन अच्छा लग रहा है खरीद लेते हैं, यहाँ पे हॉलीडे करनी है कर लेते हैं, दोज काइंड ऑफ जो खर्चे होते हैं उसका परसेंटेज, उसकी प्रोपोर्शन कितनी है आपकी लाइफ में एज कम्पेयर टू अनअवॉइडेबल कॉस्ट, यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं 5599 इज़ अ नंबर, मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे या फिर थोड़ी देर में यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉल करना है तो नंबर इज़ 0800 00, हम इट्स 0800 00 4866। इज इट लाइक 0%, 0% आपका इन चीज़ों के ऊपर जा रहा है, 100% आपका अनअवॉइडेबल कॉस्ट के ऊपर जा रहा है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट में नॉट जस्ट ग्रॉसरीज, रेट्स, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट आता है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेंट है, रेंट वर्सेस मॉर्गेज, कईयों का मॉर्गेज है कईयों का रेंट है, ये सब चीज़ें भी जा रही है, फ्यूल वगैरह जो कि ट्रांसपोर्ट में आ जाता है ये सब अलग जा रहा है। तो दे आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे आप तो बचत कर ही नहीं सकते हैं, वो जो आपको पे करना है इंश्योरेंस एंड ऑल दोज काइंड ऑफ स्टफ इज़ अनदर थिंग, ये जो आपको पेमेंट्स आपकी जानी है वो तो जानी जानी है, इसके अलावा आपका क्या परसेंटेज है जो आप बाकी चीज़ों के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, लिख के भेज सकते हैं। द कंपैरिजन 5599 इज द नंबर।
1: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
2: मैं लाऊं अपना ए गेम,
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: 3:27 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुकी है ड्राइव शो. फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं इलेक्शन स्पेशल. वैसे हमने रिकॉर्ड किया था, अगर आपने मिस आउट किया है, लास्ट थर्सडे हमने नवतेज रंधावा से बात की, कैंपेन मैनेजर फॉर द नेशनल पार्टी इन मैनोरिवा एंड ओटाहूहू. सो इन्होंने हमसे बातें की एंड काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कन्वर्सेशन हमारी हुई है जो आज के दिन में आपको मैटर करती है, नेशनल पार्टी की पॉलिसीज़ को लेके, चाहे वो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ हैं. एंड काफ़ी सवाल पूछे गए थे उनसे रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ाज़, रिगार्डिंग पेरेंट वीज़ाज़ के बारे में, हेल्थ केयर स्टाफिंग के बारे में. ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हमने ये सवाल बहुत पूछे थे और आपके जो सवाल आए थे वो भी हमने पूछे. जो चैलेंजेस इस समय हेल्थ केयर स्टाफ फेस कर रहा है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें उनके पॉलिसीज़ में कैसे हैं. एंड जो प्रेशर न्यूजीलैंड का फ्रंट लाइन हेल्थ सिस्टम इस समय में फेस कर रहा है, ऑल्सो फ्यूचर कैसा हो सकता है अगर नेशनल दोबारा आती है, पॉलिसीज़ को लेके, वर्कफोर्स चैलेंजेस को लेके जो कि हमारी कम्युनिटी को अफेक्ट करता है. सो एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हुई हमारी इमिग्रेशन, हेल्थ केयर, पॉलिटिक्स एंड फ्यूचर ऑफ न्यूजीलैंड को लेके. तो अगर आप ये कन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं, ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में आपको फुल एपिसोड मिल जाएगा, यू कैन लिसन टू द एपिसोड. एंड आने वाले दिनों में और भी ढेर सारी बातें हम किसी और के साथ भी करने वाले हैं. तो वी ट्राई एवरी थर्सडे को, हमने ये इलेक्शन स्पेशल रखा हुआ है ड्राइव शो में बिटवीन 5 to 6, जहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट पार्टीज़ के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनको हम यहाँ पे लेके आए, उनसे हम बातें करें. एंड जो आपके सवाल है, जो आपके जहन में सवाल होते हैं, वो आप हमें यहाँ पे भेजा कीजिए ताकि वो सवाल हम उनसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछे, क्योंकि इलेक्शन ईयर है एंड ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे लिए कौन सी पार्टी सुटेबल है, हमारे लिए कौन सा पर्सन सुटेबल है. जो आपकी पॉलिसी, जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके साथ अलाइन करती है या फिर नहीं करती है, आपके फ्यूचर के साथ अलाइन करती है कि नहीं करती है. एंड ऐसे में कोई अभी पॉलिसीज़ बहुत सारी आ रही है. आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, टुडे लेबर पार्टी ने भी काफ़ी चीज़ें अनाउंस की है, एक्ट पार्टी ने भी अगेन बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की है. द मैनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन. एंड आज क्रिस्टोफर लक्सन, इन्होंने भी मीडिया से बातें की है. सो इट्स कंटिन्यूसली एवरी डे कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही है, चाहे वो स्टूडेंट डेट्स को लेकर अभी आ रही है. तो ये सारे सवाल हम कोशिश कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछने के लिए, जो आपके कंसर्न में हैं, जो हमें अफेक्ट करते हैं यहाँ पे, हमारी कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं. सो मेक श्योर कि इस एपिसोड को आप ज़रूर सुनेगा. आपको ड्राइव अकेला लिख के भेजना है 5599 पर अगर आपको लिंक चाहिए. एंड अदरवाइज रोवा पे आप ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी ये एपिसोड आपको मिल जाएगा. सो दिस थर्सडे भी कोई स्पेशल ज़रूर यहाँ पे आएगा तो उसके बारे में भी हम जल्दी आपको बताएंगे.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स.
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
3: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर. गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें. जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे. कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड. डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz. दैट्स commonwealthvault.go.nz.
4: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging? clever tech, impressive range, and electrifying performance. Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
5: This is Warehouse Country, where on your way home from work, school, or wherever, you can top up on eggs, nature's fresh bread, and milk at the best price in the country. From, well,

0: 3:33 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और आते हैं आज के सवाल पे. व्हाट एम आई क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. सो व्हाट एम आई क्वेश्चन में ध्यान से सुनेगा, आपको बताना है कि ये क्या है. ये जो भी है इट कैन बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन द माइंड्स, मतलब माइंड्स के बीच में ना ये एक ब्रिज बना सकता है विदाउट इवन टचिंग आइदर ऑफ द ब्रिज, मतलब किसी भी माइंड को टच किए बिना. इट कैन ब्रिंग द इट कैन बिल्ड अ ब्रिज, इट कैन हील अ ब्रोकन स्पिरिट, या फिर एक वॉर भी ये क्रिएट कर सकता है. येट इसका कोई भी वेट नहीं है. ये क्या है आपको बताना है. इट कैन बिल्ड द ब्रिजेस बिटवीन माइंड्स, इट कैन हील अ ब्रोकन स्पिरिट, और इट कैन स्पार्क अ वॉर. इसमें इतनी ताकत है कि माइंड्स के बीच में ब्रिजेस हो सकती है, किसी के ब्रोकन स्पिरिट को ये हील कर सकता है, या फिर इतना ताकतवर है कि ये वॉर क्रिएट कर दे. लेकिन इसका वेट कुछ नहीं है. ये क्या है आपको बताना है 5599 पर. वेट एज इन की यू नो एज इन केजीज, किलोग्राम्स में इसका वेट कुछ नहीं है, लेकिन वैसे बहुत हैवी है ये. एंड एक्चुअली में कई बार बहुत ही हैवी हो सकता है ये. सो आपको बताना है क्या है 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ, कि ऐसा क्या है जो माइंड्स के बीच में ब्रिजेस भी बिल्ड कर सकता है, एक ब्रोकन स्पिरिट को भी हील कर सकता है, लेकिन इतनी ताकत भी है कि एक वॉर क्रिएट कर दे, लेकिन इसका कुछ भी वेट नहीं है. ये क्या है 5599 इज अ नंबर जहाँ पे मैसेज करके अपना आंसर आप शेयर कर सकते हैं.
1: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZ.

8 मिनट बाकी है 4:04 ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो जाएगा और आज हम शर्ली सेठिया का फुल पॉडकास्ट भी आपके लिए रिलीज करने वाले हैं। हमें काफ़ी इंक्वायरीज आई थी कि कब फुल एपिसोड हम रिलीज करेंगे बिकॉज ट्रेंड मेकर्स में आपने उस दिन लाइव म्यूजिक तो उनका डेफिनेटली इंजॉय किया, बट ये जो पूरा का पूरा एपिसोड आज हम रिलीज करने वाले हैं इसमें बहुत सारी बातें हमने शर्ली सेठिया से की है। अगर आप न्यूजीलैंड में एक सिंगर हो, एक आर्टिस्ट हो और आप बड़ा सपना देख रहे हो कहीं पे पहुंचने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ये एपिसोड तो ज़रूर सुनेगा। और यहाँ पे भी कुछ बनने के लिए अगर आप सपना देख रहे हैं तो ज़रूर सुनेगा बिकॉज उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की फ्रॉम न्यूजीलैंड टू बॉलीवुड, यहाँ से बॉलीवुड कैसा नज़र आता है, अंदर जाके बॉलीवुड कैसा है एंड और भी ढेर सारे फैक्ट्स, अपनी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें। तो ये सब कुछ आपको हम ज़रूर सुनाएंगे ये जो पॉडकास्ट इसको रिलीज़ हम कर रहे हैं एंड इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे ड्राइव शो में।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.8 डिग्री से और आज को ओवरनाइट 11 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है. और आज का वेदर वैसे थोड़ा क्लाउडी थोड़ा रेनी भी है, बट कल का वेदर डिटो ऐसा ही रहेगा. सनसेट 7:23 पर.
2: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मोनाको एंड पोकेकोई, वेयर स्लीपी हेड कंफर्ट मीट्स एक्सेप्शनल वैल्यू. बेड्स आर अस मोनाको एंड पोकेकोई एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप, द होम ऑफ GW एंड हैवल एंड ओमुडा जेकू.
0: सुपर से ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड.
1: 4:03 हो चुके हैं और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी राइट नाउ. रुस्बे बस पहुंचता ही होगा. कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? हाउ इज इट गोइंग सो फार? वेल, डे लाइट सेविंग के बाद हर किसी को थोड़ा ऐसा झटका ज़रूर लगता है, बिकॉज चाहे 1 आवर की स्लीप हमारी जाती है, सेक्रीफाइस होती है, बट स्टिल यार 1 आवर कईयों के लिए, यू नो, लेट नाइट जब होता है उसके बाद 1 आवर बीच में स्किप हो जाता है, तो वो साइकोलॉजिकली थॉट जो है ना कि भाई 1 आवर स्लीप हमारी कम हो गई है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सक्यूज़ बहाना बन जाता है. और मैंने तो आज तक सुना है, मंडे तक इसको एक्सटेंड होते हुए सुना है. सो आप बता सकते हैं आपका वीकेंड कैसा गया? दो रेनी वीकेंड था, हाउ वाज इट? आप यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं इसके बारे में. एंड इस आवर में वैसे शेयर करेंगे हमने जो पॉडकास्ट रिलीज़ करने वाले हैं इसके बारे में और भी बातें यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे. आपके सुपर सिटी में क्या क्या हो रहा है इसके डिटेल्स भी थोड़ी देर में.

चार बज के 10 मिनट हो चुके हैं एंड बाली बैंकॉक का ट्रिप जो है गाइस हमारा बहुत ही जल्दी होने वाला है, टाइम निकलता जा रहा है। सो ये मार्च 2027 में हम करने वाले हैं ईस्टर वीकेंड पे 2 कंट्रीज और एक एपिक एडवेंचर, जीरो स्ट्रेस। 50% तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है और उसके आगे कितनी टिकट्स गई है ये अभी अपडेट लेना हमारा बाकी है सन टूर से। लेकिन ये बाली बैंकॉक का जो गेटअवे है आप मेरे और रुजबे के साथ ट्रैवल कर सकते हैं एंड ये बिल्कुल प्लान्ड रहेगा जिसमें एक ही बार आपको खर्चा करना है। इट्स ऑल इंक्लूसिव एंड हैसल फ्री, सो इट्स लाइक अ गाइडेड टूर ये रहने वाला है जिसमें आपको खुद के लिए भी थोड़ा टाइम ज़रूर ऑफकोर्स मिलेगा बिकॉज इट्स अ हॉलीडे। तो ऑल बट यू हैव टू डू इज़ पैक योर बैग्स एंड गेट रेडी फॉर दिस एपिक एडवेंचर बिकॉज फ्लाइट से लेके अकोमोडेशन, 5-स्टार की अकोमोडेशन, देन तीनों टाइम का खाना, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उस जगह पे फेमस है बाली एंड बैंकॉक में, ये सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान ऑलरेडी इस पैकेज में रखा गया है। नाउ द थिंग इज देयर इज़ अ दिवाली ऑफ़र एज वेल। अब दिवाली आ रही है तो ऐसे में सन टूअर्स आपके लिए ऑफ़र ना लेके आए ऐसे हो नहीं सकता है। सो अगर ये पैकेज आप खरीदते हैं तो साथ में आपको फ्री एक क्रूज़ पैकेज मिल रहा है। 2 नाइट एंड 3 डे का क्रूज़ पैकेज है विच इज़ टोटली फ्री। ये कार्निवल क्रूज़ है विच इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर और इस क्रूज़ में अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं या फिर किसी और को भेजना चाहते हैं आप किसी और को भेज भी सकते हैं। ये ट्रांसफरेबल भी है। सो टू एनी वन हु विल बुक बाली एंड बैंकॉक का ये ट्रिप बाय दिवाली, सो बाय दिवाली अगर आप बुकिंग करते हैं तो ये एक्सक्लूसिव आपके लिए है। तो इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए, इवन रिगार्डिंग द ट्रिप, यू नो इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स कि वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कि आप जो स्पेंड कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ जाने वाला है, इज़ इट वर्थ और नॉट, कई बार बहुत सारे सवाल माइंड में आते हैं। तो अगर ये सब सवालों के जवाब आपको चाहिए यू कैन जॉइन मी एंड रुजबे इसी वीकेंड पे। एक्चुअली में हम चाय पे चर्चा करने वाले हैं इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट, सो उसकी डिटेल्स हम आपको भेज देंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड है टू सिट विद अस बिकॉज सन टूअर्स के अनिल भाटिया हमारे साथ होंगे एंड देन यू नो कोई पेमेंट्स का सवाल होगा आपके माइंड में, काफ़ी सवाल आपके माइंड में हो सकते हैं इस ट्रिप को लेके बिकॉज यू माइट बी इंटरेस्टेड बट देन यू मस्ट बी लाइक कि आपके लिए वर्थ है कि नहीं है। एंड वो सारे सवालों के जवाब एक्चुअली में वहाँ पे सन टूअर्स के अनिल भाटिया ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे। वी कैन जस्ट सिट टुगेदर, हैव चर्चा एंड देन इफ़ यू फील लाइक कि दिस ट्रिप इज़ फॉर यू देन बुक योर टिकट्स। हो उनके साथ आप बात कीजिए एंड देन बुकिंग कीजिए। पहले तो आपको सिंपल रजिस्टर ही करना है एंड उसके बाद धीरे धीरे आपको पेमेंट्स करनी है। सो या अगर आपको ये ट्रिप के बारे में और जानकारी चाहिए, अगर आप चाय पे चर्चा यानी कि मेरे और रुजबे के साथ और अनिल भाटिया के साथ बैठ के डिस्कशंस करना चाहते हैं तो ट्रिप लिख के भेजिए 5599 पर, TRIP ट्रिप लिख के भेजिए 5599 पर। ऑटो रिप्लाई में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, जस्ट फिल द फॉर्म एंड दैट्स इट। हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे लोकेशन के बारे में, टाइमिंग के बारे में एंड आप बस वहाँ पर पहुँच जाइए एंड वी गोना हैव चैट अराउंड दिस। रिमेंबर स्पेसेस लिमिटेड होती है, ये जो ऐसे टूअर्स होते हैं वेरी लिमिटेड स्पेस होती है तो यू डोंट वांट टू मिस आउट विद द स्पेसेस बिकॉज इट्स ऑल अ पैकेज डील एंड बाली बैंकॉक ये एक्चुअली में हॉट स्पॉट है। वेदर गोना बी परफेक्ट ओवर देयर, यहाँ पे तो फुल बारिश रहती है ईस्टर वीकेंड में बट यू कैन हैव अ रियली गुड गेटअवे से भी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम सबको अपनी लाइफ में ना अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हॉलीडे के नाम पे आप दिसंबर या कहीं पे भी जब हॉलीडे लेते हैं तो कई बार अपने होम कंट्री में हम जाते हैं बट दैट्स नॉट अ हॉलीडे, वो तो हम अपनी फैमिली को विजिट करने जाते हैं। हॉलीडे इज समथिंग यू जस्ट चिल आउट टू एक ऐसी जगह पे, एक फॉरेन प्लेस पे जहाँ पे आप जस्ट यू कैन बी योर सेल्फ और समवन एल्स एंड जस्ट इन्जॉय इट। अगर आप ऐसे ट्रैवलर है जिसके साथ कंपनी नहीं है तो भी आपके लिए परफेक्ट है। अगर वैसे ट्रैवलर है जो अपने पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं बट आप साथ में नहीं जा सकते हैं तो भी इट्स अ परफेक्ट बिकॉज इट्स ऑल अ ग्रुप ट्रैवल वहाँ पे होने वाला है। सो अगर आप फ्रेंड्स एक साथ हो गए, कई बार होता है कि गर्ल्स ट्रिप करना होता है, बॉयज़ ट्रिप करना होता है तो उनके लिए भी ये सूटेबल है। सो या अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं टू डिस्कस मोर अबाउट दिस पैकेज जस्ट राइट ट्रिप ऑन 5599। ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिलेगा, फॉर्म मिलेगा,
Fill the form and we will get back to you.

0: 4:22 हो चुके हैं। वैसे अगर आप उबर ड्राइवर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ क्लेम विथ नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड क्लेम मैनेजर आपके इन टच में रहेगा। इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड येट, इनटेक 4 जो है ये अभी ओपन है। सो प्लीज़ नोट कि जो नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज है, इनकी जो फ़ोन टीम है ये अभी एट कैपेसिटी है। सो प्लीज़ डू नॉट कॉल, इंस्टेड आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है nyfservices.com वेबसाइट पे। तो इट्स nyfnotyourfaultservices.com, वहाँ पे और भी जानकारी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। सो इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ क्लेम, सो ये अभी मूव फॉरवर्ड हो रहा है एंड क्लेम मैनेजर डेफिनेटली विल बी इन टच विद यू।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

4:27 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। की डेवलपमेंट्स इलेक्शंस को लेके काफी है। एक्ट ने अपोज किया है प्रपोजल्स टू स्ट्रक्चरली ब्रेक अप द मेजर सुपरमार्केट बिजनेसेस। डेविड सिबन ने वैसे आर्ग्यू किया है कि ये सुपरमार्केट्स को और भी वीक करेगा। बाइंग द पावर कुड मेक ग्रोसरीज मोर एक्सपेंसिव एंड पोटेंशियली डिस्करेज किया है इन्वेस्टमेंट। नेशनल हैज पुट द इकोनॉमी, क्राइम एंड स्कूल अटेंडेंस एट द सेंटर ऑफ इट्स कैंपेन। एंड क्रिस्टोफर लक्सर ने प्रेजेंट किया है इलेक्शन एज अ चॉइस बिटवीन कम्पीटिंग अप्रोचेज एंड न्यू प्लेज कार्ड एज वेल। नेशनल लेबर हैव फॉर्मली लॉन्च देयर कैंपेन्स बेसिकली। सो लेबर के लीडर क्रिस हिपकिंस यूज द लॉन्च टू फोकस ऑन इश्यूज इंक्लूडिंग स्टूडेंट डेट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग एज वेल। वाइल नेशनल्स लॉन्च जो थी इट कंसनट्रेटेड हैवली ऑन इट्स रिकॉर्ड इन गवर्नमेंट एंड इट्स कैंपेन थीम एज वेल। सुपरमार्केट इशू है ये अभी सिग्निफिकेंट बनता जा रहा है इलेक्शन बैटल ग्राउंड में भी, जहाँ पे नेशनल ने प्रपोज किया है पोटेंशियली ब्रेकिंग अप फूड स्टफ। वेल एनजेड फर्स्ट हैज ऑल्सो प्रपोज की स्ट्रक्चरल सेपरेशन जो है सुपरमार्केट बिजनेस की वो सही रहेगी। सो लेट्स सी क्या होता है इसके बारे में आगे और भी क्या प्रोग्रेस होती है। एंड इलेक्शंस को लेके जो हम यहाँ पे स्पेशल सेगमेंट कर रहे हैं एवरी थर्सडेज को कर रहे हैं, एक्ट के पार्टी लीडर डेविड सिमर से हमने बातें की थी पहले थर्सडे को, देन लास्ट थर्सडे को हमने बात की थी नेशनल पार्टी के कैंपेन मैनेजर के साथ नवतेज रंधावा के साथ, एंड डिफरेंट इश्यूज हमने डिस्कस किए। और इस हफ्ते भी जिसके साथ हम बात करेंगे आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे। बट अगर आपका कोई सवाल है किसी पार्टी को लेके, किसी पॉलिसीज के बारे में, किसी इश्यू को लेके रिगार्डिंग दिस इलेक्शन, आप ज़रूर यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 555 पर। एंड अगर आपने मिस आउट किया है जो हमने बातें की थी नेशनल पार्टी के साथ, तो आप ड्राइव लिख के भेजिए 555 पर, ऑटो रिप्लाई में आपको एपिसोड मिल जाएगा।

0: 434 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड ओवर द वीकेंड जो देखा वो आपके साथ शेयर करती हूँ. ये रिकमेंडेशंस में भी आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, ओवर द डिनर या फिर आने वाले वीकेंड भी आप देख सकते हैं. द इज़ वन मूवी जो मैंने देखी जिसका नाम है लॉक्ड. सो ये नेटफ्लिक्स पे आई है और 2025 की मूवी है. या बहुत ही, अगर आपको थ्रिलर मूवीज़ पसंद है ना कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा ऐसा काइंड ऑफ, तो ये मूवी आपके लिए है. तो इसमें होता क्या है, ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है बाय द वे. सो इसमें ये जो बंदा है ये ब्रेक इन करता है एक गाड़ी में, इसको पैसे की ज़रूरत है तो ब्रेक इन करता है गाड़ी. फ्लैश गाड़ी इसको दिखाई देती है. ब्रेक इन क्या करना है, गाड़ी खुली होती है तो उसमें चला जाता है कि इसमें कुछ महंगा दिखाई देगा इसको, जिसको वो बेच के थोड़े पैसे ले सकता है. बट देन कुछ उसको उसमें दिखाई नहीं देता है, मतलब सब कुछ होता है गाड़ी में बट उसको कुछ ऐसा महंगी आइटम वो दिखाई नहीं देती जिसको वो बेच सके. तो वो कहता है छोड़ो यार निकलता हूँ, और फिर निकल ही नहीं पाता है क्योंकि गाड़ी लॉक हो जाती है. अब गाड़ी लॉक हो जाए, आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, ही डिड एवरीथिंग एंड यही कहानी है पूरी की पूरी. तो एक गाड़ी में ये बंदा लॉक्ड हो जाता है एंड फिर गाड़ी का जो ओनर है वो वहाँ पे फ़ोन करता है गाड़ी में एंड उससे बातें करता है और फिर उसे मज़ा चखाता है. बहुत कुछ होता है कहानी में, ट्विस्ट एंड टर्न्स, गाड़ी चलना भी शुरू हो जाती है. तो एक इतनी बात समझ में है कि टू मच टेक्नोलॉजी जब गाड़ी में आ जाए तो वो ख़तरनाक भी हो सकती है एक्चुअली में. सो अगर आपको ऐसी मूवीज़ पसंद है, दिस मूवीज़ फॉर यू, जिसका नाम है लॉक्ड. तो ये ऐसी मूवी है. और मैंने सीरीज़ देखनी शुरू की थी, शक सीरीज़ आई है परिणीति चोपड़ा जेनिफर विंगेट की. इट वॉज़ गुड टू सी जेनिफर विंगेट आफ्टर लॉन्ग टाइम. बट यार बहुत ही कह सकते कि प्रेडिक्टेबल है. मुझे ऐसा लगा, मेरा पर्सनली है, मुझे कहानी में ज़्यादा दम नहीं लग रहा था. मतलब इवन फॉर दी परिणीति चोपड़ा की वो जहाँ पे उसकी जो एक्टिंग है इस सीरीज़ में, इतनी मेरे को सही नहीं लग रही थी. आई डोंट नो आपने ये सीरीज़ अभी तक देखी है कि नहीं देखी है, बट मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई. तो या ये मैं रेकमेंड नहीं कर सकती. बट या इसमें स्टारकास्ट अच्छी है वैसे. सुमित व्यास भी है इसमें, हरलीन सेठी है यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम हरलीन सेठी को भी देखा. हरलीन सेठी इज़ द वन, सो शी हैड अ रिलेशनशिप विद विकी कौशल स्टार्टिंग में, व्हेन विकी कौशल स्टार्टेड इन बॉलीवुड. उस समय पर हरलीन सेठी एंड विकी कौशल डेटिंग ईच अदर. फिर दोनों का ब्रेकअप हुआ था एंड देन विकी कौशल इवेंचुअली डेटेड एंड मैरिड कैटरीना कैफ. एंड हरलीन सेठी इन अ ओन वे ऑल्सो, उनकी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे र्यूमर्स अभी तक है. बट या इसमें ताहिर राज भसीन भी है. सो स्टारकास्ट अच्छी है इस मूवी की. बट देन मुझे स्टोरी लाइन में इतना दम नहीं लगा. बट या लॉक्ड इज़ द वन मूवी जो आपको थ्रिलिंग मूवी लगेगी. अगर आपने कुछ ऐसा देखा है तो आप भी यहाँ पर ज़रूर बता सकते हैं. 5599 इज़ द नंबर.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने. हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने.
2: Accurate traffic.
3: Fly Solomon Airlines. Showers overnight, a low of 11 on the northern from Town to Constellation Drive, 26 minutes to Silverdale, 48 on the northwestern to Massey, just taking 20 minutes. The southern's heavy heading north from Mount Wellington to Main Highway, from Town to Manukau, 33 minutes, Drury, 52. Delays in Onehunga on Nielsen Street heading west. Southwestern is a bit slow heading north through Mangere Bridge.
4: There's more to do in Vanuatu. Non-stop from Auckland each week. Visit flysolomons.com.
5: Kya baat hai us khane mein? जो
2: पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
5: hey! City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
6: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
7: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
8: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
9: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
10: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
2: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
11: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
12: James, this is a radio ad.
11: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
13: It's my turn on dinner and my flatmates have only ever seen me make toast. Burnt toast. But I look like I know what I'm doing with Wilbur's sweet chili butterfly chicken. Even though I don't. That's my kind of Woolies.

0: with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: 447 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. 28 सितंबर है अगर वैसे आज आपका बर्थडे है. और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. दिवाली की सेलिब्रेशंस बस शुरू ही हो रही है बिकॉज इवेंट्स जो है ये होना शुरू हो चुके हैं. नाउ ये जो पहला इवेंट है जो आप अटेंड कर सकते हैं इसी सैटरडे को, आने वाले सैटरडे को 3 अक्टूबर को मैनकाऊ वेलोड्रोम पार्क में, जो कि मैनकाऊ में है ऑफकोर्स, वहाँ पे आप इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं. सो महिंद्रा एनजेड दिवाली होने वाली है मैनकाऊ वेलोड्रोम पार्क में. मोहम्मद सदीक, सो मोहम्मद सदीक इज़ दैट सिंगर, अगर आपको याद है, जहाँ पे दलजीत दोसांझ ने इंडिया में जब टूर किया था ही इंट्रोड्यूस्ड अ लेजेंड सिंगर ऑन स्टेज, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जिनकी तरह कपड़े दलजीत दोसांझ एक्चुअली में पहनते हैं. सो मोहम्मद सदीक यहाँ पे आने वाले हैं एंड ऑफकोर्स एंट्री एकदम फ्री है, आप जाके उनको देख सकते हैं. सो मोहम्मद सदीक एंड इवन इंडिया से DJ लक्की भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं. डिलीशियस फूड स्टॉल्स तो रहने ही वाले हैं, फन राइड्स होंगे बच्चों के लिए एंड एट द एंड फायरवर्क्स भी होने वाले हैं. इसी सैटरडे को 3 अक्टूबर को 1 PM टू 9 PM ये इवेंट रहेगा, फ्री एंट्री. सो आपको पहुंचना है मैनकाऊ वेलोड्रोम पार्क में. सो वहां पे आप ज़रूर जाएगा. दिस इज़ हैपनिंग इन एसोसिएशन विद NZI कम्युनिटी ट्रस्ट एंड AMI. एक फैमिली फन इवेंट रहने वाला है, फैमिली फ्रेंडली इवेंट एक्चुअली में ये रहने वाला है. तो इसके लिए आप भी वहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं. सो रिमेंबर अट्रैक्शंस आर मोहम्मद सदीक एंड टीम फ्रॉम इंडिया, DJ लकी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, फूड स्टॉल्स, फन राइड्स रहने वाली हैं एंड एंड विद फायरवर्क्स होने वाला है मैनकाऊ वेलोड्रोम पार्क, मैनकाऊ 3 अक्टूबर 1 PM टू 9 PM.

5:07 हो चुके हैं। पावर ड्राइविड 5 फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं। नो डेलाइट सेविंग, इसका डिफरेंस क्या होता है हमारी हेल्थ या वेलबींग के ऊपर? सो ये जो 1 आवर का शिफ्ट होता है, इट कैन एक्चुअली अफेक्ट आवर बॉडी क्लॉक। सो इवन दो 1 आवर बहुत ही एक स्मॉल आवर साउंड होता है, बट मूविंग द क्लॉक फॉरवर्ड और बैक ये आपका स्लीप एंड वेक साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। ये आर्टिकल आया है, इसमें बताया गया है कि जो स्लीप है इज द बिगेस्ट इश्यू आज के टाइम पे। सो जब डेलाइट सेविंग शुरू होती है तो पीपल इफेक्टिवली लूज एन आवर ऑफ स्लीप एंड सम पीपल टेक सेवरल डेज टू एडजस्ट टू इट। कुछ लोग सेवरल डेज लेते हैं एंड क्योंकि हमारा जो अंदर का जो रिदम होता है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होता। बॉडी के अंदर जो एक इंटरनल क्लॉक है, ये लाइट एंड डार्कनेस के ऊपर रिस्पॉन्ड करती है, ना कि टाइम के ऊपर जो आपके फ़ोन या क्लॉक के ऊपर है। सो इट ओनली रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड डार्क, एंड मॉर्निंग लाइट मैटर करती है। एक्सपोजर टू नेचुरल लाइट, इट हेल्प रेगुलेट द बॉडी क्लॉक एंड आपके ब्रेन को बताने के लिए कि इट्स टाइम टू वेक अप। नाउ दिस इज़ वन रीज़न टाइमिंग ऑफ डे लाइट कैन मैटर मोर देन द एक्चुअल 1 आवर। इवनिंग लाइट जो है ये आपकी स्लीप को भी डिले करती है। अब जैसे इस समय पर आपको अच्छा खासा डे दिखाई दे रहा होगा जो कि पीक विंटर में आपको नहीं दिखाई देता है। सो लॉन्गर डे लाइट इन द इवनिंग कैन इनकरेज पीपल टू स्टे एक्टिव लेटर, पोटेंशियली आपका बेड टाइम को थोड़ा पुश करता है, पुश बैक करता है। एंड कई बार कुछ लोगों के लिए सेफ्टी इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, लाइक स्लीप डिसरप्शंस या टायर्डनेस क्लॉक चेंज होने के बाद। इससे अलर्टनेस अफेक्ट होती है, कंसंट्रेशन, रिएक्शन टाइम। सो दे आर ब्रॉडर हेल्थ कंसिड्रेशंस काफ़ी लोगों को लेके। तो इसलिए जब कुछ लोगों के लिए एक्सक्यूज़ भी होता है, लेकिन काफ़ी लोग अगर वो बोलते हैं कि उनको अफेक्ट करता है, तो कभी कभी ऐसा मानना चाहिए कि या दिस कैन एक्चुअली डे लाइट सेविंग कैन एक्चुअली अफेक्ट समवन लाइफ या समवन स्लीप। मेस विद, नॉट अफेक्ट, मेरे को लगता है बहुत बड़ा वर्ड है, मेस कह सकते हैं, मेस विद समवन स्लीप ये ज़रूर हो सकता है। क्या आपके ऊपर होता है ये मेसअप डे लाइट सेविंग का? आप भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे 0800 00 हम पर, 0800 00 4866 पर, या फिर यू आर लाइक आपको पता भी नहीं चला कि कब 1:59 पे 3 बज गए रात के या 2 बजे, इट डिडंट मैटर टू यू, वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। एंड हैव यू एवर ट्राइड रिकॉर्डिंग इट? जब नए नए आते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में ना, ये कंसेप्ट क्योंकि या काफ़ी लोगों के लिए नया होता ही है। सो जब नए नए आते हैं तो यहाँ पे कई बार हम रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करते हैं कि हाउ यू नो 1:59 के बाद 3 होता है या फिर जब ख़त्म होती है डेलाइट सेविंग। सो आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है तो वो भी यहाँ पे शेयर कीजिए। 0800 00 हम इज़ अ नंबर।

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: हम Accurate traffic.
3: Leap Motor electric vehicles are unignorable.
4: Showers overnight, a low of 11. Town to Constellation Drive taking half an hour to Silverdale, 43 minutes. Heavy in both directions between Oniwa and Northcote Roads. Northwestern to Massey, all good, 22 minutes. On the southern, Town to Manukau, 36 minutes. To Drury, 52. Heavy both ways between Mount Wellington and Green Lane. Southwestern slow heading north through Mangere Bridge and Puhinui Road to the southern.
3: Buy a Leap Motor this month. Pay nothing until 2027 with $2,000 off your finance. Terms apply.
5: Everything's better fresh at New World North Island. Get chicken thighs, $7.99 per kilo, or Rocket Slaw 350 gram, $3.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: TradeDepot.co.nz.
7: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set, just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
8: TradeDepot.co.nz.
9: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800 862 342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
10: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
11: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
12: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
13: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
14: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
15: 5:18 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. वैसे अक्टूबर में काफ़ी चीज़ें चेंज भी होने वाले हैं, कुछ लॉ चेंज होने वाले हैं. सो उसका ये रन डाउन है. न्यू रोड रूल्स होने वाले हैं 1 अक्टूबर से. सेवरल रोड रूल्स जो है ये चेंज हो रहे हैं, जैसे कि 1.5 मीटर पासिंग रूल. सो ड्राइवर्स दे मस्ट लीव एट लीस्ट 1.5 मीटर व्हेन पासिंग साइक्लिस्ट, हॉर्स राइडर्स एंड अदर रोड यूजर्स कवर्ड बाय द रूल. रिगार्डलेस की जो रोड की स्पीड लिमिट है इज अबव और बिलो 60 किलोमीटर पर आवर. सो 1.5 मीटर पासिंग रूल डेफिनेटली वहाँ पे होगा. एंड देन बसेस के ऊपर जो चेंज है, ऑन रोड विद स्पीड लिमिट्स ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर और लेस, ड्राइवर्स विल हैव टू गिव वे टू बसेस पुलिंग आउट फ्रॉम बस स्टॉप. सो अगर आपकी आगे गाड़ी जो है, जो बस है, बस स्टॉप से निकल रही है एंड इंडिकेटर दिया है, सो यू हैव टू गिव द वे टू बस. सो बस मस्ट गो फर्स्ट, ऐसा काफ़ी बसेस के पीछे लिखा भी होता है. सो मेक श्योर कि ये अभी नया रोड रूल है. अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको ये, अगर कोई ऑफिसर देखते हैं आपको फाइन भी हो सकता है इसको लेके. देन चिल्ड्रन ऑन बाइक्स, चिल्ड्रन 12 एंड अंडर कैन लीगली राइड ऑन द फुटपाथ व्हेन अकंपनीड बाय एन अडल्ट. And e-scooters, riders will be legally allowed to use the cycle lane, जो e-scooter use करते हैं. And 9th October से life jackets become compulsory. So this is big one for anyone with a small boat. So 9th October से everyone on a recreational craft 6 meter or less must wear properly fitted life jacket. Life jacket के बिना आप उस चाहे small boat है आप नहीं जा सकते हैं. While the craft is underway, subject to specific exemptions. जो स्कीपर है यानी कि जो पर्सन है इन चार्ज है बोट का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर कि एवरीवन इज वेयरिंग वन. सो रूल अप्लाई होता है अक्रॉस न्यूजीलैंड. गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि ये जो चेंज है इट कैन प्रिवेंट एवरेज ऑफ 10 डेथ्स अ ईयर. वन न्यूज़ ने बताया था कि 17 पीपल दे डाई एनुअली इन रिक्रिएशनल बोटिंग इंसिडेंट्स. नाउ द अनदर वन इज 1st October से cholesterol medication becomes easier to access. So एक cholesterol को low करने की एक medicine होती है जिसका नाम है rosuvastatin. Rosuvastatin इसकी eligibility restrictions जो है 1st October से remove कर दी जाएगी. अभी ये easily available नहीं है. Now also not easily available. आपको अगर recommend आपको बोला गया है आपके डॉक्टर ने तभी आप इसको ले सकते हैं. पीपल हु नीड इट विल नो लॉन्गर हैव टू मीट अ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हैव एनी अदर स्टफ. सो इवन फार्मासिस्ट में ये अवेलेबल होगी. दे एस्टिमेट अराउंड 81,000 एडिशनल पीपल कुड एक्सेस इट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. सो लेट्स सी अभी करंट यूजर्स इसके 76,000 लोग हैं. काफ़ी वीज़ा एप्लीकेशंस फुली ऑनलाइन जारी है 1st अक्टूबर से. सो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने बोला है कि देर एंडिंग दोज पेपर एप्लीकेशंस फॉर अ रेंज ऑफ विजिटर एंड ट्रांजिट वीज़ाज जिसमें जर्नल विजिटर्स आते हैं, बिजनेस विजिटर, ग्रुप विजिटर, एकेडमिक विजिटर, मेडिकल ट्रीटमेंट, पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट की कैटेगरी, स्पोर्ट्स इवेंट्स, विजिटिंग मीडिया, ट्रांजिट वीज़ाज. ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो है अभी इमिग्रेशन ऑनलाइन ही सबमिट करेगी 1st अक्टूबर से. तो पेपर एप्लीकेशंस अब वो नहीं होंगी या कुछ केसेस एग्जेम्प्ट ज़रूर किए जाएंगे. इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से ही मिलेगी. देन पेरेंट रेजिडेंट वीज़ा सिलेक्शन जो है ये भी चेंज हो रही है. ये 5th अक्टूबर से चेंज हो रही है. सो ये आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट हो सकता है 1st अक्टूबर से. द पेरेंट रेजिडेंट वीज़ा EOI सिलेक्शन सिस्टम जो है ये चेंज हो रहा है. 90% ऑफ सिलेक्शन जो है विल बी मेड बेस्ड ऑन द डेट द EOI एंटर द क्यू यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब क्यू में गया. 90% सिलेक्शन उसके बेस्ड पे रहेगी डेट के बेस पे. 10% जो होगी विल कंटिन्यू थ्रू अ बैलेट सिस्टम. जो एनुअल कैप है रिमेन्स 2500 वीज़ाज. सो जो एग्जिस्टिंग EOI है दे रिमेन इन द सिस्टम रेदर देन एक्सपायरिंग आफ्टर 2 years. सो प्रोवाइडेड एप्लीकेंट कीप द डिटेल्स करंट. जो पहली सिलेक्शन है अंडर द न्यू सिस्टम ये 10th नवंबर से होगी. सो यह आप बताइएगा कि आपको इसमें से क्या अफेक्ट करता है. काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करती है अगर देखा जाए तो. रोड रूल्स में भी काफ़ी चीज़ें जो है ये काफ़ी लोगों को अफेक्ट करने वाली है. बट रिमेंबर बसेस को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्टनेस होने वाली है ऑन द रोड. स्पीड विद द स्पीड लिमिट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर और लेस यू विल हैव टू गिव वे टू बसेस पुलिंग आउट ऑफ द बस स्टॉप.
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
6: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ
8: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 5:31 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और आते हैं आज के पॉडकास्ट पे। शर्ली सीटिया का स्पेशल तो आपने फ्राइडे को सुना 6 से 7 के बीच में, और हमने आपको बताया कि बहुत ही जल्दी फुल एपिसोड जो पॉडकास्ट है ये भी आपके साथ हम रिलीज़ करेंगे। नाउ ये पॉडकास्ट रिलीज़ कर दिया है, आप ड्राइव लिख के भेजेंगे 5599 पर तो ऑटो रिप्लाई में आपको फुल लिंक मिल जाएगा पॉडकास्ट का, जहाँ पे शर्ली सीटिया वेंट अनफिल्टर्ड विद अस बॉलीवुड के बारे में और भी ढेर सारी बात है। यू नो, बीइंग अ कीवी गर्ल, प्रॉपर कीवी गर्ल, जहाँ पे उसकी स्टडी यहाँ पे स्कूल्स में हुई है, ब्रॉट अप इन न्यूजीलैंड, एंड देन बॉलीवुड के सपने देखना, एंड बॉलीवुड के नॉट जस्ट सपने देखना, उसके ऊपर मेहनत करना कि वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, देन इवेंचुअली बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहुँचना, वहाँ पे म्यूज़िक करना, मूवीज़ करना, एक्टिंग करना, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करना, ये सारी की सारी जर्नी शर्ली सेठिया ने शेयर की है। एंड अच्छा लगता है जब हमारा कोई टैलेंट यहाँ से यू नो बॉलीवुड में जाता है एंड बिग नेम बन जाता है। नाउ शर्ली सेठिया, उसकी मैंने ऐसा नोटिस किया है कि बहुत सारे फैंस जो अभी काफ़ी लोग न्यूजीलैंड आए नहीं थे, तब से उसके फैंस लोग बन गए थे। लाइक केतन इज़ वन एग्जाम्पल। केतन ने बताया कि वेन ही वॉज नॉट इन न्यूजीलैंड, उसी समय उसने शर्ली सेठिया की वीडियोज़ देखनी शुरू की थी सिंगिंग की, उसको फॉलो करना शुरू किया था। एंड तब तक वो, जब तक वो यहाँ पे आए, शर्ली सेठिया आई थिंक देन वेंट टू इंडिया। सो कीवी गर्ल से देन अपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना, ये उन्होंने बहुत ही कैंडिड कन्वर्सेशन हमारे साथ की अपनी जर्नी के बारे में, कि रियलिटीज़ ऑफ नेविगेटिंग द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज एन आउटसाइडर, एंड नॉट जस्ट एन आउटसाइडर, आउटसाइडर एज इन की न्यूजीलैंड से इंडिया में जाना। यू नो, जब हम इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, काफ़ी चीज़ों के बीच में डिफरेंस है, मतलब बोल चाल के बीच में, काफ़ी लोगों के एटीट्यूड के बीच में, या काफ़ी चीज़ों के बीच में, कल्चर में भी बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे इट्स वेरी रिलैक्स्ड, लेड बैक, पोलाइटली बात करना, एंड वहाँ पे हर जगह पे ऐसा नहीं है। सो वो सारी चीज़ें फेस करना व्हेन न्यूजीलैंड में हमें ऑलरेडी आदत हो जाती है एक पर्टिकुलर चीज़ों की, हैबिट्स की, सो वहाँ से इंडस्ट्री में डायरेक्टली जाना, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी टफ। तो वो चैलेंजेस शर्ली सेठिया ने इसमें शेयर किए। वी टॉक्ड अबाउट द गुड, बैड एंड ऑनेस्ट साइड ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल, जो प्रेशर है वहाँ पर आर्टिस्ट के ऊपर, म्यूज़िक इंडस्ट्री पर ख़ास तौर पर, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी बातें होती है, सो वो उन्होंने शेयर किया। एंड शी ऑल्सो एक्सपीरियंस द ऑनलाइन ट्रॉलिंग, ट्रॉलिंग तो अभी हॉट टॉपिक है रिसेंट, सो हमने वो सवाल भी पूछा। ट्रॉलिंग के बारे में उन्होंने बोला कि नेगेटिविटी को वो कैसे डील करती है, एंड हर एक्सपीरियंस विद सलमान खान एंड अदर म्यूज़िक इंडस्ट्री जहाँ पर उन्होंने काम किया, उनके साथ उनका कैसा रहा, वो सब चीज़ उन्होंने शेयर की। वर्किंग इन मूवीज़ कि एक कीवी एक्सेंट को कैसे उन्होंने जाने दिया और इंडियन एक्सेंट उन्होंने कैसे वहाँ पे पकड़ा। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ शर्ली सेठिया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, ज़रूर सुनिएगा। ड्राइव कीवर्ड लिख के भेजेंगे तो आपको फुल एपिसोड एक्चुअली में मिलेगा। थोड़ा सा बिट मैं आपको यहाँ पे सुनाती भी हूँ, जहाँ पे आई थिंक इन्होंने ट्रॉलिंग के बारे में बात की है।
1: सारे बुरे कॉमेंट्स भी आते थे तो मैं उस टाइम बहुत अफेक्ट होती थी कि ये इतना बुरा बुरा क्यों बोल रहे हैं, मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है जो टू अपसेट देम सो मच। एंड आई यूज टू फील रियली बैड पर्सनली बिकॉज आई एम अ वेरी लाइक आई वांट टू मेक एवरीबडी हैप्पी, आई वांट टू स्प्रेड लाइक पॉजिटिव वाइब्स, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्यों ऐसे सोच रहे हैं,
0: स्पेशली न्यूजीलैंड में मेरे को लगता है कि ऐसे कमेंट्स की आदत नहीं होती है।
1: या तो सडनली वन यू गेट लाइक एन इन्फ्लक्स ऑफ लाइक सो मैनी, इट्स स्कैरी। बट आई थिंक उस टाइम पर मैंने कहीं तो ये उस टाइम पर नहीं, स्कूल में मेरा एक असाइनमेंट था, और मैं, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग हाउ आई रिमेंबर दिस आफ्टर सो मैनी ईयर्स, राइट। स्कूल टाइम में मैंने हमें इंग्लिश में एक एसे लिखना था ऑन अ टॉपिक, एनी टॉपिक। तो मैंने टॉपिक चूज किया था हाउ टू बी हैप्पी।
2: ओके
1: ओके, अब वो ऐसे कहाँ है मुझे नहीं पता, बट उसका एक पॉइंट था जो मैंने रिसर्च किया था, जो मुझे समवेयर इन द उसको क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड,
2: राइट,
1: सबकॉन्शियस माइंड में कहीं रह गया होगा। दिस मस्ट हैव बीन लाइक आई डोंट नो, ये 7 or 8.
0: Okay.
1: Like, yeah. So many years ago.
2: Yeah.
1: Right?
2: Wow. So, a few years ago, yeah.
1: उसमें मैंने रिसर्च किया था और तब मैंने ये पॉइंट पढ़ा था कि एक वाइट कलर का आप A4 पेपर अगर यूज करो लाइक दैट वन वो क्लियर है वो क्लियर है उसको
0: उसके बाद एक्चुअली में उन्होंने हमें विजुअली पूरा बताया तो इसके लिए तो बहुत ही जल्दी आप वीडियो निकालेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे द कॉन्टेक्स्ट वाज कि वाइट पेपर आपकी खूबियां हैं बेसिकली एंड देन वाइट पेपर के ऊपर उन्होंने चार डॉट्स वहां पे बना दिए और फिर बोला कि इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली हमें वो चार डॉट्स दिखाई देंगे जो आपकी खामियाँ हैं कई बार लेकिन पीछे जो इतनी सारी खूबियाँ होती है लाइक वाइट बोर्ड इज़ फुल खूबियों से भरा हुआ उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता लेकिन हमारे छोटे छोटे जो डॉट्स है कई बार उसके ऊपर नेगेटिविटी के ऊपर हमारा कई बार ध्यान ज़्यादा जाता है बिकॉज आवर माइंड इज़ नेगेटिव बाइस्ड माइंड सो दिस इज़ वॉट शी रिमेंबर्ड टू गेट ओवर द ट्रॉलिंग शी वॉज फेसिंग एंड यू नो हम भी कई बार मुझे लगता है कि हर किसी ने ये किया होगा सेलेब्स की फ़ोटो को देख के या फिर वीडियोस को देख के यार इसको क्या हो गया है या कमेंट किया या फिर मन में सोचा बट वी डोंट रियली अंडरस्टैंड द स्ट्रगल दे गो थ्रू मतलब चीज़ें जो उनकी लाइफ में भी चल रही होती है बहुत जल्दी सेलेब्स को लेके खास तौर पे हम जजमेंट्स पास कर देते हैं तो शी एड्रेस दैट थिंग ऑल्सो इस पॉडकास्ट में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जरूर सुनेगा ड्राइव कीवर्ड लिख के भेजेंगे तो आपको फुल एपिसोड मिलेगा अदरवाइज गो टू रोवा गो टू स्पॉटिफाई एप्पल म्यूजिक एंड सर्च अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे

0: इवेंट्स हो रहे हैं आपकी सुपर सिटी में. वेद प्रचार वीक जो है ये हो रहा है आज से लेके संडे 4th अक्टूबर तक, 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोरे, 6:20 PM ऑनवर्ड्स. एंड वहाँ पे भी आप ज़रूर जा सकते हैं. विच इज़ 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RS Maje न्यूजीलैंड. एंड दिवाली की सेलिब्रेशन इसी वीकेंड पे होने वाली है, 3rd अक्टूबर को. इट्स ऑलरेडी देयर, इमेजिन कैसे साल गया है ये. सो 3rd अक्टूबर को अगर आप मैनकाओ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू. मैनकाओ वेलोड्रोम पार्क में एंड स्पेशली मोहम्मद सदीक लाइव परफॉर्म करने वाले हैं, लेजेंडरी मोहम्मद सदीक, जिनको इंट्रोड्यूस किया था दिलजीत दोसांझ ने इन हिज लास्ट इंडिया टूर. तो ये वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं. इंट्रोड्यूस एज इन कि उनको एक्चुअली में ऑनर किया था कि यू नो कि उनसे वो बहुत इंस्पायर्ड रहे हैं अपनी लाइफ में. और DJ लकी फ्रॉम इंडिया वो भी शामिल होने वाले हैं. डिलीशियस फूड स्टॉल्स भी रहेंगे एंड फायर वर्क्स भी रहेगा. सो 3rd अक्टूबर 1 PM to 9 PM फ्री एंट्री है, कोई चार्जेस नहीं है. मैनकाओ वेलोड्रोम पार्क जो कि मैनकाओ में लोकेटेड है, वहाँ पे आपको पहुँचना है फॉर महिंद्रा एंड जेड दिवाली 2026.
1: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: Well, throwback में उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना आप सुनने वाले हैं और आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं एक एक्टर का बर्थडे. वेल, ये जो एक्टर है ना, लेट्स सी कितने लोग इसका नाम गेस कर पाते हैं ड्राइव कीवर्ड के साथ 5599 पर. ये जो एक्टर है ये करंटली एक्टिव है, एक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी एक बहुत ही बड़ी मूवी अभी आने वाली है, बिग प्रोजेक्ट इनका एक्चुअली में आने वाला है. एंड इनके मॉम डैड भी एक्टर हैं, वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं. इनके दादा भी एक्टर हैं और इनके परदादा भी एक्टर हैं. मतलब एक्टर की फैमिली है ये. सो इस एक्टर का आज बर्थडे है. सो मैसेज करके बताइए 5599 पर किस एक्टर का बर्थडे आज सेलिब्रेट होने वाला है, किनके गाने ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं जो खुद एक्टर है. और बाय द वे इनकी वाइफ भी एक्टर है. बच्चा आगे जाके एक्टर होगा ये नहीं पता. इनकी वाइफ एक्टर है, इनके मम्मी पापा एक्टर मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, इनके दादा बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, इनके परदादा भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से है. सो हु इज़ दिस एक्टर 5599 पर मैसेज करके आप बता सकते हैं ड्राइव कीवर्ड के साथ.

0: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
2: अब हमारा क्या होगा?
3: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
1: तो क्या करें?
4: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
5: Check. Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
6: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
7: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Nicola Willis intends to encourage Sir John Key to read the details of National's supermarket policy. The former Prime Minister has told the Post that he's not sure if breaking up foodstuffs is the right solution. Willis says she's happy to give him the data.
8: I don't reckon he's read the cost-benefit analysis yet, so I'll have to make sure I forward my old mate John a copy.
7: Fast-track approval has been granted for the build of 250 new homes in Wanaka. The panel also accepted a proposal to cap visitor accommodation at 20% so the development is lived in. There is concern from conservationists as the Army kicks off training in Christchurch's Lyttelton. Up to 60 personnel will be moving through the area this week, firing blanks and using small boats. The Maui and Hector's Dolphin Defenders Group says the harbour is a core habitat for the endangered Hector's, not a place for war games. In response, the Defence Force says it will be following all relevant legislation and regulations. And work to shore up the home of Rotorua Museum against earthquakes is now done. Mayor Tanya Tapsell says it took an incredible amount of effort to get to this point.
9: The most complex earthquake strengthening project in the country, to bring it in not only on time but under budget, has just been phenomenal.
7: The final round of rugby's NPC regular season is this weekend. 14 All Blacks who were involved in the greatest rivalry series have been released to play. That includes Beauden Barrett, who is available for Taranaki for the first time in 6 years. Rugby league with Machinery House in a league of their own, Newcastle Knights hooker Phoenix Crossland was sent off and is facing a lengthy ban from the NRL for that hip drop tackle that broke Nathan Cleary's leg.
6: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusbay. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura Jaiku.
10: Let's go! 3, 2, 1.
6: Trend Makers. Show with Sandy and Rusbay.
12: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
13: 6:02 हो चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। रुस्बे आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन कल वो यहाँ पे जरूर शामिल हो जाएगा। एंड मैंने आपसे हिंट दिए थे कि किसकी बात कर रही हूँ, किसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, एंड द नेम इज रणबीर कपूर। आज रणबीर कपूर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यू नो रणबीर कपूर का जो पूरा नाम है इज रणबीर राज कपूर। ही शेयर्स अ नेम विद हिज ग्रैंडफादर जिनका नाम राज कपूर है। सो राज कपूर का पूरा नाम इज एक्चुअली रणबीर राज कपूर। एंड रणबीर कपूर को हमेशा से ऑब्सेशन रही है नंबर 8 के साथ। 8 नंबर उनकी गाड़ी पे, उनकी स्पोर्ट्स जर्सी पे एंड बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर, बिकॉज इज अ सिंबल फॉर इन्फिनिटी। एंड तो ये नंबर उनका हमेशा से फेवरेट नंबर है। इनफैक्ट यू नो कपूर खानदान में फर्स्ट मेल कपूर ग्रेजुएट है रणबीर कपूर। सो ही वॉज अ फर्स्ट मेल फ्रॉम हिज डायरेक्ट फैमिली पूरे के पूरे खानदान में टू पास क्लास 10 एंड कंप्लीट हायर एजुकेशन अब्रॉड। तो अभी तक किसी और मेल ने रणबीर कपूर से पहले ये नहीं किया था। ये रणबीर कपूर की अपनी फैमिली में अचीवमेंट ज़रूर रही है। बट कमाल के एक्टर है अगर देखा जाए रणबीर कपूर। और नॉट जस्ट ही शेयर्स द नेम विद राज कपूर इज ग्रैंडफादर, मुझे ऐसा उनकी एक्टिंग में कभी कभी दिखाई देता है कि वो बहुत सारी यू नो एक्टिंग स्किल्स जो है वो राज कपूर जैसी यूज़ करते हैं। नॉट लाइक हिज फादर, नॉट लाइक ऋषि कपूर, बट वो राज कपूर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ में अपने ग्रैंडफादर से। उनकी तरह एक्टिंग करना, यू नो कभी कभी किसी किसी मूवी में उनकी तरह ड्रेस अप करना, ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा की है, उनसे उनको देख के बहुत ज़्यादा सीखा है रणबीर कपूर ने. एंड रणबीर कपूर को सबसे पहले वैसे बैंड बाजा बारात के लिए भी ही वॉज़ द फर्स्ट चॉइस, जो कि रणवीर सिंह का रोल था, बिट्टू का रोल. सो उसके पहले ये जो रोल है ये रणबीर कपूर के पास गया था. पर रणबीर कपूर की शुरुआत होनी थी इस मूवी के साथ, सावरिया मूवी के साथ. सावरिया मूवी के साथ जब इनकी शुरुआत हुई, संजय लीला बंसाली ने इनको कास्ट किया, इट वाज़ अ बिग प्रोडक्शन सोनम कपूर के साथ. बॉक्स ऑफिस में ये मूवी इतनी नहीं चली थी. एज अ डेब्यू इन्होंने इस मूवी के लिए अवार्ड ज़रूर जीता, बट बॉक्स ऑफिस में एक्चुअली में ये मूवी फ्लॉप थी. एंड रणबीर कपूर के लिए ऐसा जाना भी गया है ना कि जिन मूवीज़ में उन्होंने काम किया है उन मूवीज़ की एक्ट्रेसेस के साथ उनकी डेटिंग के र्यूमर्स बहुत आए हैं, जैसे इसमें सोनम कपूर के साथ, फिर दीपिका के साथ, तो बाकी तो र्यूमर्स नहीं थे, एंड देन कैटरीना कैफ एंड आलिया भट्ट. बीच वाला नहीं पता है, बट वी स्टार्ट विद सावरिया टाइटल सॉन्ग.

रणबीर कपूर का बर्थडे है तो रणबीर कपूर के कुछ हिट सॉन्ग्स आज आप यहाँ पे सुन रहे हैं. एंड रणबीर कपूर की ही मूवी का गाना अभी आप यहाँ पे सुन रहे थे थोड़ी देर पहले. एंड अभी वेकअप सिड का गाना सुनने वाले हैं. लैंडमार्क कमिंग ऑफ एज मूवी थी एक्चुअली में, जिसमें अर्बन यूथ सिनेमा को डिफाइन किया गया था. यान मुखर्जी जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड भी है रणबीर कपूर के, सो इन्होंने इस मूवी को बनाया था. एंड रणबीर कपूर की इसमें जो छवि थी एज अ सीरियस एक्टर वो हमें देखने को मिली थी. ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट था, यान मुखर्जी का एज अ डायरेक्टर पहला प्रोजेक्ट था. रणबीर कपूर ने इस मूवी में अपनी पर्सनल वार्डरोब को ही यूज़ किया था, तो सिड का एक बहुत ही रिलेटेबल कॉलेज बॉय वाइब देने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो पर्सनल कलेक्शन ऑफ ग्राफिक बॉक्सर्स एंड कैजुअल टी शर्ट्स थी वो सेवरल सीन्स में इन्होंने एक्चुअली में यूज़ की थी इस मूवी में. एंड आई थिंक वो मूवी में वर्क भी की बिकॉज काफ़ी लोगों को ये मूवी पसंद आई. वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवी ऑफ रणबीर कपूर हम इसको ज़रूर कह सकते हैं. नो सवाल आपके लिए ये है, आपको बताना है कि रणबीर कपूर ने अपनी लाइफ में किसके ऊपर बायोपिक की है. सो रणबीर कपूर हैज़ डन अ बायोपिक, कमाल की बायोपिक की थी. किसकी लाइफ के ऊपर रणबीर कपूर ने बायोपिक की है. ड्राइव कीवर्ड के साथ यहाँ पे आंसर लिख के भेज सकते हैं 5599 पर.

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
5: आजकल लेकर इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
9: कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर। गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz। दैट्स commonwealthvault.co.nz।
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
12: Are you ready to go home?
13: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
14: ड्राइव शो फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। ट्रेंड मेकर्स में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रणबीर कपूर को, उनका आज बर्थडे है। यू नो रणबीर कपूर, वैसे इनको एक फिजिकल कंडीशन है जिसका नाम है डिविएटेड नेजल सेप्टम, विच मेक्स हिम टॉक एंड ईट वेरी फास्ट। वो बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत कई बार जल्दी जल्दी बात भी करते हैं। एंड रणबीर कपूर का वैसे कोई भी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ऑफिशियल ना फेसबुक पे है जिसको वो ऑपरेट करे, या इंस्टा पे, कहीं पे भी नहीं है। लेकिन या कुछ इंटरव्यूज़ में इन्होंने इतना ज़रूर एडमिट किया है कि उनके कुछ सीक्रेट प्राइवेट अकाउंट है जिसको वो यूज़ करते हैं इधर उधर की गॉसिप चेक करने के लिए, बिकॉज अपेरेंटली ही इज़ अ वेरी बिग गॉसिप पर्सन जिसके पास बहुत लोगों की गॉसिप होती है। तो वो अपना कई बार सीक्रेट अकाउंट यूज़ करते हैं काफ़ी चीज़ें लोगों के इंस्टा पे जाके चेक करने के लिए उनके बारे में। दिस इज़ सो कूल ना। ये करीना कपूर ने भी एक्चुअली में एक बार एडमिट किया हुआ है कि वो भी एक सीक्रेट हैंडल यूज़ करती है काफ़ी चीज़ें चेक करने के लिए। हाँ, सो मतलब ऑफकोर्स उनको करना ही पड़ता है अपने रियल अकाउंट से, तो वो हर कोई चीज़ चेक नहीं कर सकते हैं। एंड मेरा आपसे सवाल था, अभी भी जवाब लिख के यहाँ पर भेज सकते हैं, कि रणबीर कपूर ने किसके ऊपर बायोपिक की है। 5599 इज़ अ नंबर जहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर मूवी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है रणबीर कपूर की, अजब प्रेम की गजब कहानी, मतलब गजब ही कहानी है थी कैटरीना कैफ के साथ। सीन इसका बहुत ही एपिक था, एक जहाँ पे सलमान खान आता है और बोलता है कि ऐसा तुम बिहेव कर रहे हो जैसे मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हो, और एक्चुअली में वही रियलिटी हुआ बाद में, गर्लफ्रेंड को लेके वो चल दिया। एनीवे, ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है, इट वाज अ वेरी नाइस, वेरी होलसम मूवी आई थिंक। बहुत ही क्यूट सी कहानी को बनाया गया था इस मूवी में, तो या इट्स अजय प्रेम की गजब कहानी, आप ज़रूर देख सकते हैं इस मूवी को।

ट्रेंड मेकर्स में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रणबीर कपूर का बर्थडे, और सवाल मैंने आपसे पूछा था कि किसके बायोपिक रणबीर कपूर की है। संजू इज द राइट आंसर, संजय दत्त। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आंसर भेजा था, वैसे स्वाति खैर ऑफ कुकरेती आपका भी आंसर यहाँ पे आया था, एंड काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आंसर लिख के भेजा। थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए। एंड संजू मूवी देखते समय एक्चुअली में हम भूल ही गए थे कि हम रणबीर कपूर को देख रहे हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी, फुल ऑन संजय दत्त ही दिखाई दे रहे थे उस मूवी में। इवन इन दिस मूवी ए दिल है मुश्किल, डायरेक्टेड बाय करण जौहर, इस मूवी में भी इन्होंने जो एक्टिंग की थी उनका बहुत ही नेचुरल और इजी केमिस्ट्री था अनुष्का शर्मा के साथ, एंड ऑल्सो इसमें जो उन्होंने कैमियो था दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। नाउ कमिंग अप, जो गाना आप सुनने वाले हैं तमाशा मूवी का, नाउ तमाशा मूवी में ना ये मूवी बहुत कम लोगों को उस समय पर पसंद आई थी जब मूवी रिलीज़ हुई, लेकिन इस मूवी के फैक्ट्स जो इम्तियाज़ अली के हैं जो बाहर आना शुरू हुए तब लोगों ने दोबारा जाके इस मूवी को देखा इस मूवी को समझने के लिए, एंड आई थिंक ऐसी मूवीज़ में परफेक्शन ले चुके हैं अभी रणबीर कपूर ऐसी आर्ट सिनेमा में, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से किया था। और वैसे भी इनकी और दीपिका की जोड़ी को हर कोई पसंद करता है, ब्रेकअप के बाद मेरे को लगता है कि इनकी जोड़ी ज़्यादा फेमस हो गई जब लोग ज़्यादा इनको साथ में देखना चाहने लगे। सो यह इस मूवी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
3: Showers tonight, a low of 11. All good on the northern from Town to Constellation Drive, 16 minutes to Silverdale, 28. On the northwestern to Massey, just 15 minutes. The southern looking good, just a bit heavy heading north from Great South Road exit to Dilworth Ave. Town to Manukau, 22 minutes. Drury, 31. Southwestern slow from Cavendish Drive through to the southern.
2: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
4: Professional by ninjas has saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
4: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
5: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
6: इसीलिए NZPMI से बात कर लो. वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800

रणबीर कपूर का बर्थडे आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रणबीर कपूर वैसे मैसिव फुटबॉल फैन भी है एंड को ऑन करते हैं इंडियन सुपर लीग क्लब मुंबई सिटी एफसी। सो इन्होंने वैसे सबसे पहले जब अपने इन्होंने कमाई की थी, अपनी मूवी इनकी हिट हुई थी, सबसे पहले इन्होंने अपनी लग्जरी वॉच ली थी अपने पहले पे चेक से। In fact, this was not from the acting. This was from assisting on film sets. So, Sanjay Leela Bhansali ke saath inhone kuch movies mein assist kiya tha. That's how he got the role in Sanjay Leela Bhansali, Savariya. And he's also very skilled mimicry artist. Kaafi actors ki mimicry achhe se ye karte hai. Jaise ki Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, Sanjay Dutt ka role hi humne dekh liya. Inka bahut hi perfect way se inhone kiya tha. Jo abhi gaana sunne wale hain, जॉर्डन का गाना, मतलब कि रॉक स्टार मूवी का गाना जो हम सुनने वाले हैं, जिसमें इन्होंने जॉर्डन का रोल प्ले किया था। रणबीर कपूर ही लिव्ड इन एआर रहमान स्टूडियो फॉर डेज। ही लर्न द क्लासिकल गिटार फ्रॉम स्क्रैच सो दैट मूवी के शॉट्स में उनकी जो हैंड प्लेसमेंट्स है गिटार के ऊपर वो एक्यूरेट लगे, उसमें कोई भी गलती ना लगे गाने के हिसाब से, बातों के हिसाब से। तो दैट्स हाउ ही डिड द रोल ऑफ जॉर्डन और वो दिखाई देती है, वो शिद्दत उनके फेस में दिखाई देती है। मुझे रॉकस्टार मूवी रणबीर कपूर की बहुत अच्छी लगी थी। देयर वाज अनदर मूवी बर्फी, मुझे वो मूवी भी रणबीर कपूर की बहुत अच्छी लगी थी। लिस्ट ऑफ मूवीज़ है रणबीर कपूर की जो उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर में बहुत अच्छी की है। अभी रामायणा मूवी इनकी आने वाली है जो कि बॉलीवुड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट रहने वाली है, सो उसका भी इंतज़ार रहेगा अराउंड दिवाली। एंड इसी नोट पे मैं आपको कहती हूँ टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी कल 3 बजे कॉफी ब्रेक में एंड देन ड्राइव शो में विद रोज़ पे। बाय।

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
3: This is Warehouse Country, where on your way home from work, school or wherever, you can top up on eggs, nature's fresh bread and milk at the best price in the country. From, well, the warehouse.
4: Time check.
5: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
4: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. The latest One News variant poll would put the coalition government on 59 seats, which means it would need a deal with the Opportunity Party to retain power. PM Christopher Luxon has ruled out working with Opportunity. State Highway 25 has been closed after a single vehicle crashed this evening at Pepuroa in the Hauraki district. Injuries are reported. Politicians are encouraged to mull over a new report that questions the new secondary school qualifications. Tero Tero Ano has highlighted concerns about the delivery of equitable outcomes. In sport tomorrow afternoon, All Blacks coach Dave Rennie releasing the names in the 34-man squad for the Bledisloe Cup. 14 ABs have been released to play NPC rugby this weekend. Read into that what you will. Rugby news with All Blacks Travel and Hospitality.com. Eden Park Bledisloe Cup hospitality packages selling now. And he was famous for that gritty batting style, a bristling moustache, and a legendary flight from Australia to the UK in 1989 on which he consumed 52 beers. Now David Boone has been appointed interim chair of Cricket Australia.
7: Sports news
4: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
8: World's best, hamari good brands bhi hai.
4: Night Cafe on Hum. Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
9: गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरी वन. मैं क्रिश आ गया हूँ आपके साथ देने के लिए स्टूडियो में. और आज है मंडे, तो आज आपके लिए कुछ स्पेशल होने जा रहा है, जैसे हमेशा होता है आपके लिए, स्पेशली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आज 28 सितंबर है, तो सितंबर भी बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होने को आया है और बहुत ही फास्ट ये महीना गया है. ठंड भी थोड़ा बहुत हुआ है इस महीने में. स्प्रिंग का ये महीना था, लेकिन अभी टूवर्ड्स दी एंड हम आ चुके हैं. मैं क्रिश आ गया हूँ आपका साथ देने के लिए आज भी. तो चलो शुरू करते हैं आपके लिए आज का सेगमेंट नो लॉजिक मंडे. वेलकम एवरीवन. नाइट कैफे में नो लॉजिक मंडे आपके लिए रहता है 8 to 9. आज इंटरेस्टिंग खबरें मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, क्योंकि जितने भी खबरें जो हमें मिलती है, जो हमें शॉक कर देता है या फिर आश्चर्यचकित कर देता है या फिर थोड़ा बहुत हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, ऐसे ही कुछ जो न्यूज़ हमारे पास है वो लेकर आए हैं, जो आज के आपके साथ हम शेयर करेंगे. बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको सुनाता हूं और फिर हमारा पहला न्यूज़ अभी आज का मैं आपके साथ शेयर करूंगा. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हैं, वेलकम टू नो लॉजिक मंडे. गाने भी ऐसे जिसमें लॉजिक कम सुनाई देंगे, इन्फॉर्मेशन भी ऐसे जो एकदम सोचने पर मजबूर कर देंगे. तो स्वागत है आपका, क्रिश का साथ है.

न लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ इंटरेस्टिंग खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक ऐसा टी शर्ट है जो क्लेम करता है कि इट स्टेज फ्रेश फॉर 30 डेज। 3 अगस्त को इसको पब्लिश किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स की स्टोरी है। अमेरिकन क्लोदिंग कंपनी हर्कलॉन ने इंट्रोड्यूस किया है हर्क शर्ट V5.0। कंपनी क्लेम करती है कि ये शर्ट कैन रिमेन स्मेल फ्री फॉर मोर देन 30 डेज, मतलब बदबू से दूर ये 30 डेज तक रह सकता है। और दैट वुड ड्रामेटिकली रिड्यूस द नीड फॉर फ्रीक्वेंट वॉशिंग। इस प्रोडक्ट को ऐसे ही मार्केट किया गया है अराउंड एंटी माइक्रोबियल और स्मेल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज जो इनमें पाया जाता है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। सुनते रहो।

0: Night Cafe, where sense takes a break.
1: No Logic Monday.
2: You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits एक-एक करके आपके favorite songs और interesting खबरें मैं लेकर आऊँगा. आपके लिए जारी है No Logic Monday. Giant humanoid robot का जो सर है, इससे visitors काफी unsettled हुए. China की ये story है. Ahead Form एक organization का नाम है जिन्होंने create किया highly realistic humanoid robot head, और इसका skin, eyes और facial movements are designed to mimic humans. और इस realism से काफ़ी viewers uncomfortable हुए, और कहा गया है कि ये सर का दाम सिर्फ $150,000 है, US वो भी. तो ये खबर हमें मिली है. इसके अलावा माइक्रो ड्रोन शूट्स इंसेक्ट्स इन मिड एयर, इस पर जानकारी मैं लेकर आऊँगा. यूनाइटेड स्टेट्स की स्टोरी है, सुनते रहो नो लॉजिक मंडे.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Krishka saath hai, no logic Monday aapke liye jaari hai. 15 July ki ye story hai, United States ki ye story, jahan par ek startup is developing chote-chote drones, tiny drones, jo design kiye ja rahe hain to intercept flying insects. Ye drones detect kar payenge aur target karenge insects such as mosquitoes while airborne, matlab jab wo hawa mein honge. Aur is idea ko essentially banaya gaya hai as an automated aerial pest control सिस्टम के लिए और कहा गया है कि मिनिएचर रोबोटिक्स को कंप्यूटर विजन के साथ कंबाइन करके ये इंटरेस्टिंग सा जो इनोवेशन तैयार किया गया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम और हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडनाइट, 9 पीएम तक रहेगा आपके साथ नो लॉजिक मंडे.

आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। मोटरवे पासेस डायरेक्टली ओवर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, ये सिर्फ चाइना में ही हो सकता है। गुयांग चाइना की ये स्टोरी है जहां पर एक सेक्शन ऑफ द शुईखोशी ब्रिज डायरेक्टली पास होता है ओवर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। अनयूजुअल डिज़ाइन है क्योंकि इससे काफ़ी अपार्टमेंट्स अंडरनीथ हो चुके हैं द एलिवेट

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नॉलॉजिक मंडे में आपके लिए हम लेकर आते हैं। एक जायंट स्पाइन कवर्ड कैटरपिलर एलियन की तरह दिखता है। ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक रीजन की ये स्टोरी है जहां पर एक कैटरपिलर को पाया गया है, कैटरपिलर ऑफ द कैबेज ट्री मॉथ। इसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीयरेंस देखा गया है। इसका बॉडी इज कवर्ड इन प्रोमिनेंट स्पाइंस जिनको एक एलियन क्रीचर से रिजेंबलेंस पाया गया है और कहा गया है कि

0: इसका बहुत ही फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस है और ये हार्मलेस टू ह्यूमंस है थैंक गॉड. और इससे काफ़ी मोर अनयूजुअल एनिमल डिस्कवरीज होना शुरू हो चुके हैं जिसमें से एक ये भी है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्पाइडर टेस्टेड, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी अगर समय रहा तो.
1: NASA. NASA is the one in Punjabi.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: Time check. Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
7: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
8: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. The Greens have surged to 16% in the latest One News Varian poll, their highest ever level in this poll. Labour and National both dipped, both on 28. It is the third poll this month to have both parties below 30%. State Highway 25 has been closed at Pipiroa in Hauraki following a serious single-vehicle crash early this evening. Injuries were reported. And police have been forced to briefly detain a seal in Wellington. Officers teamed up with DOC after the animal was seen crossing the Hutt Road yesterday afternoon. They were able to get it into a patrol car and drive it to a local beach. In sport, the 34-man All Black squad for the two-match Bledisloe Cup series is released tomorrow afternoon. 14 All Blacks have been released to play NPC rugby this weekend. And rugby league with Machinery House in a league of their own, Panthers playmaker Nathan Cleary has posted a photo of himself from his hospital bed, including the message, "I'll be back." Cleary suffered a compound fracture in Phoenix Crossland's hip drop tackle. Crossland is expected to get a lengthy ban.
0: Sports News.
7: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
9: 28th September है, तो जितने भी लोगों का जन्मदिन है आपको भी बहुत ही जल्दी याद करेंगे, बस आप हमारा साथ देते रहे। लवली सॉन्ग्स मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट और हॉट गाने आपके लिए होंगे, बिगेस्ट हिट्स आपके लिए हम पेश करते रहेंगे। दैट्स हम फॉर यू, जो आपके लिए लेकर आता रहता है ऐसे हिट गाने। अभी 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक का टाइम हो चुका है, एंजॉय करते हैं। प्यारे प्यारे गाने मैं लेकर आया हूँ, कुछ रोमांटिक, कुछ रॉकिंग, कुछ अलग अलग आर्टिस्ट की आवाज़ों में, जो आपको बेहद पसंद आएगा। एंजॉय एवरीवन।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं यहाँ कहानियाँ होती है रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
2: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा
2: बस चल

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िया लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई? लिख के दू क्या?

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You are listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा 60s और 70s के हिट्स. 80s जुकबॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इंजॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, मैं

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: The interest dividend of $377 has just been paid. Woohoo! 374,000 Auckland households and businesses in the Entrust District are sharing $141 million. So go on, celebrate having a bit extra in your pocket. Treat yourself, pay some bills, or stash it away. You choose. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. Enjoy your Entrust dividend, Auckland.
2: राज, रोमांस, एक्शन और सुपरनेचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना.
3: इस वन की काली शक्ति रात के साये से भी काले.
2: द वन नाउ शोइंग इन सिनेमास.
4: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है,
5: जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास.
2: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC.
6: हमें माता का बुलावा आया है.
7: Of Bollywood.
8: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
7: Night Cafe. आपका moment. Krish का magic. Only on Hum.
9: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एक एक करके प्यारे गाने आपके लिए हम पेश कर रहे हैं. वेद प्रचार वीक ये होने जा रहा है, फ्रॉम 28 सितंबर टू 4 अक्टूबर एट 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोए फ्रॉम 6:20 PM. और हाईलाइट ऑफ दिस ईयर्स प्रोग्राम रहेगा 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड. तो वेद प्रचार वीक में शामिल होना ना भूले. तारीख याद रहे 28 सितंबर टू 4 अक्टूबर और जगह 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोए फ्रॉम 6:20 PM. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.
10: हीर की खातिर मर गया राजा, छोड़ के तख्त हजारा.
11: So what?
10: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी.
11: Big deal, dude.
10: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी. दिन भर सेक्टर 17 भाई. दिन भर सेक्टर 17.
12: मैनू नी चाहिदा कोई राजा. नारा छे दी यारी वीरे, मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा.
10: हाय चुकला रब्बा मैनू.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आपसुन आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अगर आज आपका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन जिनका आज जन्मदिन है एंड दोज हु आर सेलिब्रेटिंग. आई एम श्योर आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर वीकेंड के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है, तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं. अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो, आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं तो बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स, क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं. आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर. तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इंटरेस्टिंग खबरें इस घंटे पर भी लेकर आएंगे, स्पेशली सामाजिक सूचनाएं जो हो रहे हैं हमारे आसपास, इस पर जानकारी आपके लिए रहेगा. इट्स मंडे 28th September. तो जितने भी हमारे लवली लिसनर्स हमारा साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं हमारे फाइनल आवर में, स्वागत है आपका. 30 minutes ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक में इस बार लवली सॉन्ग्स में लेकर आया हूँ. श्रेया घोषाल, यसिर देसाई पहले गाने के साथ में यसिर देसाई आ रहे हैं, कुमार सानू, अलका याग्निक और कमबख्त गाना सुनिधि चौहान कहके लेकर आ रहे हैं. धुरंधर का टाइटल ट्रैक भी आपके लिए हम पेश करेंगे और आतिफ असलम चलते चलते के साथ भी आएंगे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. एंजॉय एवरीवन.

0: Night Cafe.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: का मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ Unfiltered Drive with Sandy and Ruzbe. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातें करेंगे. काफ़ी लोगों को लगता है कि आपके फैमिली को ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ मिल जाता है हमारे मृत्यु के बाद, तो आप दोबारा सोचिएगा क्योंकि विल्स डेथ और क्या होता है हमारे पैसे और प्रॉपर्टी के साथ जब हम चले जाते हैं. ये टॉपिक हमेशा हम लोग अवॉइड करते हैं. हमें अजम्पशन होती है कि हमारे पार्टनर चिल्ड्रन या हमारे फैमिली विल सिंपली सॉर्ट इट आउट, ऐसा ही हम सोचते हैं. लेकिन क्या एक्चुअली में होता है जब आपकी मृत्यु होती है विदाउट अ विल इन न्यूजीलैंड? क्या आपके एसेट्स को क्या होगा, आपके घर, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स का क्या होगा? और ये प्रोसेस अननेसेसरी स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉस्ट भी क्रिएट हो सकता है. और इस एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ड्राइव में एस्टेट प्लानिंग कन्वर्सेशंस जो काफ़ी फैमिली अवॉइड करते हैं उसी मुद्दे पर बातें होगी. तानिया पिंटो सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट बातें करेंगी अबाउट कॉमन मिथ्स अराउंड विल्स और एक्सप्लेन करेगी कि क्या होता है अगर विल नहीं होता है. कुछ सिंपल स्टेप्स भी बताएंगी जिससे आप अपना थिंग्स काफ़ी ईजिया बना सकते हैं फॉर योर लव्ड वंस लेटर. बिकॉज प्लानिंग फॉर योर डेथ इजंट अबाउट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर योर फैमिली इज इन लेफ्ट फिगरिंग एवरीथिंग आउट व्हेन यू आर नो लॉन्गर देयर टू एक्सप्लेन इट. तो ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर, आपको और भी जानकारी मिल जाएगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम.

0: से ऑन हम।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
2: डिब्बा खुल गया
3: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे।
4: संजना का डिब्बा खुल गया।
5: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
4: डिब्बा खुल गया।
5: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम। और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
10: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in store today.
11: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
12: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
13: अब हमारा क्या होगा?
14: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
12: तो क्या करें?
15: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर कल ट्यूसडे नाइट को, हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए। कर्क स्टूडियो रिलोडेड भी रहेगा 8 to 9 और फिर बाकी का नाइट कैफे हमारे साथ पूरा थर्सडे तक चलेगा। अपना बहुत ही ख्याल रखें, क्रिश का बहुत सारा प्यार, नमस्ते।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। कशिश नेचुरल योगर्ट।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
2: Playing Bollywood's biggest hits. Budget gandeng.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.

0: मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: नाइट फ्लाइट।

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं है उसको।
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो।
2: अभी ब्रांड हो गया ना।
1: रुस्बे के बाल लगे उस
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2. 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
4: राज, रोमांस, एक्शन और सुपर नेचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, एम तमन्ना।
5: इस वन की काली शक्तियाँ रात के साए से भी काले हैं।
4: द वन नाउ शोइंग इन सिनेमास।
6: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है,
7: जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास।
4: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म, रेटिंग TBC।
8: हमें माता का बुलावा आया है।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, ceiling आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: 10 a.m.
1: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
2: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
3: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
4: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
0: Check.
4: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
1: Good morning, is samay theek chibit rahe.
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
5: Morning, I'm Grace Conker with the latest at 6. The Treasury will open the government's books later today. Known as PREFU, the docs provide a snapshot of what risks the country may face. It lays out the forecast economic outlook, and Treasury says it gives an indication of what the economy is most likely to do to inform decision making. Auckland Uni researchers found untreated eczema in children is strongly linked with bone and joint infections. Lead author Sarah Hunter says the risk is three times as great.
6: Is a condition where children end up hospitalised. They often need multiple surgeries.
5: An erratic driver has led to a dramatic pursuit on Auckland's Southern Motorway. Police were called about a black Audi yesterday evening. The vehicle made contact with a patrol car and had its tyres spiked but continued driving. The man eventually stopped and fled, sparking a foot chase along the Southern Motorway before being caught. The five men arrested in the UK on suspicion of preparing a terror act at a military base remain under investigation despite being on bail. Assistant Commissioner Lawrence Taylor says they're looking at every angle.
7: That this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
5: In sport, commentator Tony Johnson expects two experienced forwards to be recalled when the All Blacks name their 34-man squad for the Bledisloe Cup at 2:30 today. TJ told the DSPN podcast that Shannon Frizzell and Scott Barrett should be included.
8: I think over the last 2 weeks, I think Frizzell has put up a compelling case, and I think Scott Barrett, they'll want him back there as well.
5: Rugby news with All Blacks travel and hospitality.com. Eden Park Bledisloe Cup hospitality packages selling now.
0: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papa Toy, and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum, playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में अगर आज का वेदर देखा जाए तो कहा गया है मोस्टली क्लाउडी रहेगा और बारिश जो है ये ज़रूर होगी आज. खास तौर पर आज दिन भर बारिश होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं. शाम के समय साफ मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है विद अ लिटिल बिट ऑफ सनशाइन. आज सनराइज होगा अगले घंटे ठीक 7 पर और सनसेट 7:24 PM पर. टेम्परेचर राइट नाउ 11.2 डिग्रीज है जबकि हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है लेटर टुडे. एंड ओवरनाइट टेम्परेचर आज का बताया जा रहा है अराउंड 10 डिग्रीज तक रहने वाला है.
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजय एंड पूजा
9: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको. बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम. हैरिंगटन लिविंग मोनाको.
0: ब्रेकफास्ट कैचअप द ब्रेकफास्ट शो विद वीजय एंड पूजा.
10: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
11: तीन मिनट हो रहे हैं, 6:00 नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपको, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। मंगलवार है 29th of September और आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी लोग अभी भी सुबह सुबह हमारे साथ शामिल हुए हैं।
11: इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, इस मंगल प्रभात की शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए। और कल आपसे कहा था कि आज आएंगे आपका साथ देने के लिए, तो आगे हैं 4 घंटे का ये सफर जो है आपके लिए दिलकश और खुशनुमा बनाने के लिए।
1: बिल्कुल, और कोशिश हमारी यही रहेगी जहाँ पर पहले घंटे से शुरुआत हम करेंगे ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ, खबरों में क्या कुछ है आपको हम जरूर अपडेटेड रखेंगे, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा। और ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी भरपूर आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सुबह की, जहाँ पर आप हमारा साथ दे रहे हैं 104.2 FM या फिर रोवा ऐप के जरिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग, 4 मिनट हो रहे समय हमारे स्टूडियोज में 6:00।

0: Sunnyside Up.
1: यू नो इतनी सारी खूबसूरत स्टोरीज होती है दुनिया भर में जो अलग अलग सिचुएशंस के रूप में इंसिडेंट्स के रूप में सामने आती है और आई केम अक्रॉस दिस वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी दिस मॉर्निंग तो मैंने सोचा जिसके बारे में आपसे ज़रूर हम बातें जो है ये करेंगे. नाउ दिस पर्टिकुलर स्टोरी जो है ये एक पेशेंट के बारे में है जिनको एक यू नो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न और वहाँ पर ट्रीटमेंट पाते समय जब उनकी जो नर्स उनकी देखभाल कर रही थी उनको उनसे कम्युनिकेट करना था जिनको इंग्लिश नहीं आती थी बाय द वे तो उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके को चुना और फिर वो जो तरीका है इसके बारे में इस पेशेंट ने ऑनलाइन जो है ये पोस्ट किया एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी वेंट वायरल. एक सिंपल हैंड रिटन नोट जो है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जिसे लैंग्वेज बैरियर के नाम से भी जाना जाता है. अगर कोई एक पर्टिकुलर भाषा में कम्युनिकेट करता है और आप उस भाषा को नहीं जानते हैं तो उनसे कैसे बात करेंगे.
2: हाँ.
1: तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है ये और इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सलूशन एक नर्स ने निकाला जिनके ओरिजिन से फ्रॉम चाइना एंड रिपोर्टेडली शी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश और उनकी जो पेशेंट है वो इंग्लिश भाषा ही समझती थी. अब उनको अपने पेशेंट को इत्तला करना था कि अगली सुबह आपकी सर्जरी जो है ये स्केड्यूल्ड है फॉर 8 AM. इसका मतलब ये है कि रात 8 बजे से आप ना तो कुछ खा सकती हैं ना तो कुछ पी सकती हैं. अब वो ये बताए कैसे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेपर लिया और पेपर पर एक ड्राइंग जो है ये की. सबसे पहले उन्होंने लिखा टुनाइट, फिर लिखा 22:00 यानी कि रात 10 बजे का टाइम. उसके बाद उन्होंने बाजू में लिखा आफ्टर, फिर नीचे लिखा 9 और एक छोटा सा ड्राइंग जो है ये किया जिसमें यू नो बाउल है, कटलरीज है और बाउल में कुछ खाना जैसा कुछ जो ये ड्रॉ किया.
2: हाँ.
1: फिर लिखा 9, टैप ड्रॉ किया और टैप के नीचे एक हाथ बनाया जिसके हाथों में एक ग्लास है और टैप से पानी जो है एक ग्लास में जा रहा है. सो बेसिकली उनका मतलब था टुनाइट 10 PM आफ्टर नो फूड नो ड्रिंक, दैट्स व्हाट शी ड्रू.
2: ओके.
1: फिर उसके नीचे उन्होंने लिखा टुमारो मॉर्निंग और नाइफ बनाया, नाइफ पर ब्लड के कुछ ड्रॉपलेट्स बनाए और लिखा 8 AM एज इन कि टुमारो 8 AM आपकी सर्जरी होगी.
2: अच्छा.
1: ये पूरा उन्होंने ड्रॉ कर अपने पेशेंट को दिखाया और उनको समझाया जिस तरीके से वो समझा सकती थी और फिर उसके बाद पेशेंट जो है उन्होंने उनको थम्स अप दिया कि वो समझ गई और फिर उन्होंने वो चीज़ें रिपीट की और फिर पेशेंट ने उनसे वो नोट जो है ये लिया जिसके बाद उन्होंने इसे इसकी फ़ोटो ली और ऑनलाइन इसे जो है ये पब्लिश किया है. ये US की स्टोरी है बाय द वे एंड द पेशेंट हैज़ नॉट शेयर्ड इट इन अ वे जहाँ पर वो अपने इस नर्स की यू नो हंसी उड़ा रही हो. उन्होंने इस इंटेंशन से शेयर किया कि अक्सर लोगों को कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में आपको काम करने के लिए यहाँ की भाषा जाननी ज़रूरी है. आई मीन जितनी भाषाएं आप जाने उतना आपके लिए अच्छा है.
2: अच्छा होता है,
1: इट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर एवरीवन एंड इट हेल्प्स यू कम्युनिकेट. एक स्किल भी होता है ना हर किसी एक भाषा को जानना, समझना, बोलना. लेकिन इस मामले में इस पेशेंट ने ये कहा कि अक्सर ये बोला जाता है ना कि ये भाषा नहीं आती तो आप हमारे देश में नहीं आ सकते, यहाँ काम नहीं कर सकते. बट हियर दिस पर्टिकुलर नर्स डजंट फ्लुएंटली स्पीक दिस लैंग्वेज जो मुझे आती है और इतने अच्छे से मेरी देखभाल करती है एंड शी वॉन्टेड टू मेक श्योर आई अंडरस्टूड एवरीथिंग. शी वेंट आउट ऑफ अ वे और उन्होंने मुझे अपने अंदाज में पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की एंड शी अप्रिशिएटेड दैट जेस्चर जिसके बाद चलकर उन्होंने ये पूरी की पूरी जो इंसिडेंट की यू नो स्टोरी है ये उन्होंने ऑनलाइन शेयर की.
2: इट्स अमेजिंग. कहते हैं कि अपनी ओर से कोशिश जो है ये करनी चाहिए तो
1: Absolutely.
2: आप अचीव कर सकते हैं.
1: या अदरवाइज उनके पास तो और ऑप्शंस थे, वो चाहती तो वो क्या करती किसी और को ढूंढ कर लाती जो इंग्लिश बोलती है और उनको बताती कि आप इनको बता दो. बट शी मेड श्योर कि शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट और वो पेशेंट जो है वो जानकारी हासिल करे जो उनके लिए जरूरी है थ्रू हा. सो देयर यू गो, आज की सनी साइड अप स्टोरी जो आपके लिए हम लेकर आ रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. दिस इज ब्रेकफास्ट कैचअप. 16 मिनट हो रहे हैं 6:00, थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस हम लेकर आएंगे आपके लिए.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: ए देखो आ गए
3: सनातन वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स इन कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड ब्रिंग्स यू वैलेंटाइन्स बफे रेस्टोरेंट लाल ट्रांसपोर्ट इन राम्स ग्रुप ऑफ कंपनीज 11th सनातन वर्ल्ड कप 2026 होस्टेड बाय एनजेड सनातन स्पोर्ट्स इन कल्चरल इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम सितंबर 30th ओकलैंड कम्स अलाइव विद सोकर नेटबॉल वॉलीबॉल एंड गोल्फ टीम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड फिजी ऑस्ट्रेलिया कनाडा एंड अमेरिका कॉम्पीटिंग अक्रॉस बिल मैकिनली पार्क एंड लोकल वेन्यूज यूनिटी थ्रू स्पोर्ट कल्चर एंड कम्युनिटी कॉन्टेक्ट टूर्नमेंट चेयरपर्सन जितेन लाल ऑन 021-452-503
0: Powered by nyfservices.com Professional Visa Services and baitcaps.com
3: Stay tuned to Hub, your official media partner.
4: बूढ़ा हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
5: अब हमारा क्या होगा
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
7: तो क्या करें
8: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
0: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
9: Bollywood.
10: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
3: Global headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में घरेलू एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने से दो मंजिला इमारत ढह गई जिसमें 3 साल के एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई आधे से ज़्यादा मकान मलबे में बदलने के बाद रेस्क्यू किए गए 7 लोगों में से 3 घायल हैं जिनमें से एक की हालत 90% ब्रेन इंजरीज के कारण बेहद नाजुक बनी हुई है पुलिस के मुताबिक एक व्यापारी के घर पर शाम 5 बजे खाना बनाते वक्त ये ब्लास्ट हुआ जिससे आसपास के घरों पर भी असर पड़ा फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रंबुका ने कहा है कि वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि इस हफ्ते पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की सेकंड रीडिंग के लिए ज़रूरी नंबर्स उनके पास होंगे उनका कहना है कि ये सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो बिल के अमेंडमेंट्स को कितने अच्छे से पेश करते हैं और बाकी फैसला MPs के वोट पर निर्भर करेगा बिल को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट के 66% यानी कम से कम 35 MPs का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद इंडियन मेंस क्रिकेट टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई है टूर्नामेंट के रूल्स के मुताबिक मैच अबंडन होने पर ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में बेहतर सीड होने की वजह से वर्ल्ड नंबर 1 इंडिया को आगे भेज दिया गया डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में कल बांग्लादेश और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विनर से होगा यूएफए नेशंस लीग के मैचेस आज एक बार फिर खेले जा रहे हैं दूसरे हिस्से में साइप्रस और लेटविया नीलोल से बराबर हैं यही परिणाम अभी जॉर्जिया और यूक्रेन के बीच है जबकि मॉन्टेनेग्रो की जीत आर्मेनिया के खिलाफ 2-1 से हो रही है सुबह 8:15 रोमानिया बोस्निया हर्जेगोविना से खेलेगा टर्की वर्सेस इटली फ्रांस वर्सेस बेल्जियम नॉर्दर्न आयरलैंड वर्सेस हंगरी स्वीडन वर्सेस पोलैंड मैचेस खेले जाएंगे जिन पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे ये रहे सुबह के मुख्य समाचार
9: Bollywood's most wanted.
12: Gundi khad gao. Ya seedha andar aao.
13: Main laau apna A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और 30 मिनट हो रहे हैं समय हमारे स्टूडियोज़ में 6:00 फिलहाल. आज है ट्यूसडे 29th ऑफ सितंबर, तो आपको याद दिला रहे हैं कि आज अगर आपका स्पेशल डे है, एज इन अगर आप अपनी शादी की सालगिरह या फिर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के इस खास मौके पर. दूसरी ओर जहां पर आपको याद भी दिला रहे हैं कि अपना अपना जो बर्थडे ग्रीटिंग हो या एनिवर्सरी ग्रीटिंग हो, ये आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं. आप टेक्स्ट कर सकते हैं हमें ऑन 5599, और जब आप टेक्स्ट करें तो याद रहे कि 7 बजे से पहले अपने अपने मैसेजेस जो है ये आप सेंड कर सकते हैं ताकि आपको हम समय पर विश कर सकें.
3: बिल्कुल, अपने मैसेजेस आप टाइम से पहले हमें ज़रूर भेज दें. वैसे आज अगर देखें सुबह सुबह आपने हमें याद किया, इसके लिए थैंक यू सो मच. हम कहना चाहेंगे सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल. राज आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट से वेरी गुड मॉर्निंग आपको, थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए.
2: और इसके अलावा हमारे पास सल्लू का भी मैसेज आया है फ्रॉम गल्फ हाबा इन फंगपरुआ, एंड नॉट फॉरगेटिंग बॉबी मान जी जिन्होंने हमारे पास अपना मैसेज जो है ये सेंड किया है और सुबह सुबह हमें याद किया है. थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. इधर चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, लेट्स टॉक बॉलीवुड. क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड में, इस पर भी आपको जानकारियाँ जो है ये हम दे देते हैं. वैसे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो कल मेरे ख्याल से रणबीर कपूर का बर्थडे था.
3: हाँ, रणबीर कपूर और लता मंगेशकर इनका जन्म कल ही के दिन हुआ था. सो देयर वर अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस हैपनिंग. रणबीर कपूर जो है उन्होंने पेपराजी के साथ बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट किया, केक वगैरह काटा, सो इट वाज अ गुड डे. दूसरी तरफ बॉलीवुड always has its share of problems.
2: Yep.
3: और अभी कहते हैं कि रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी और जैकी भगनानी ये काफ़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसने मुंबई में कई लोकेशंस पर सर्चेस किए हैं कल. और जो रकुल प्रीत सिंह, वाशु भगनानी, जैकी भगनानी, इनके जो एंटिटीज़ हैं उनको लेकर छानबीन की जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अराउंड 12 लोकेशंस जो हैं जो एसोसिएटेड हैं रकुल प्रीत सिंह और साथ में वाशु भगनानी और पैनोरामा स्टूडियोज़, वहाँ पर सर्च किया गया. एंड टैक्स अथॉरिटीज़ को ये खबर मिली है कि काफ़ी बड़े लार्ज सम्स ऑफ मनी जो है इसको विदेश ट्रांसफ़र किया जा रहा है विद फिल्म रिलेटेड एक्टिविटीज़. ये ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेडली लिंक टू एक्सपेंसेस क्लेम्ड अंडर ओवरसीज फिल्म शूट्स. और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करना शुरू कर दिया है कि क्या टैक्स इवेजन जो है ये किया जा रहा है या कोई और फाइनेंशियल इररेगुलरिटी है. कई टीम्स जो है इनको डिप्लॉय किया गया है अक्रॉस मुंबई टू कॉन्डक्ट सर्चेस एट वेरियस ऑफिसेस और प्रेमिसेस. अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक किया जा रहा है और इससे आगे कुछ खास जानकारियां तो नहीं दी गई हैं. रकुल प्रीत सिंह ऑब्वियसली जैकी भगनानी की पत्नी है
2: जी,
3: और उनके पिता जो हैं वाशु भगनानी, जैकी भगनानी के ये फाउंडर हैं पूजा एंटरटेनमेंट के. द प्रोडक्शन हाउस हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सेवरल हिंदी फिल्म, कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन. और दूसरी तरफ पेनोरामा स्टूडियोज जो है इसने बैक किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है कई हिंदी फिल्मों को इंक्लूडिंग रेड एंड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द दृश्यम फ्रेंचाइज. रकुल प्रीत सिंह वैसे अगर फिल्मी जिंदगी को देखें इनकी, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2026 रामायण पार्ट वन में ये दिखने वाली है शूर्पणखा के रोल में. तो देखें क्या असर होता है इन सभी चीज़ों का.
2: ओके, तो आपके लिए अपडेट्स जो है हम लेकर आते रहेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी कैन रिमाइंड यू अबाउट द फैक्ट कि काफ़ी चीज़ें जो है ये हो रही है व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड इंडस्ट्री. फिलहाल चलिए आपके लिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हम लेकर आ रहे हैं, और इस गाने के बाद आज का पहला सवाल जो है ये हम आपको बताएंगे.
4: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन मोहित चौहान और साथ में अलीशा चिनोई को आप सुन रहे थे सुबह सुबह. आज आपके लिए इनकी आवाज़ हमने पेश की और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में आज का ये सॉन्ग जो है आपके लिए हम लेकर आ रहे थे फ्रॉम द मूवी क्रिश 3. 2013 में ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी. फिलहाल चलिए इधर समय की ओर देखें तो 19 मिनट्स अवे फ्रॉम 7 और हमने कहा था कि आज का पहला सवाल ये भी आपके लिए हम लेकर आएंगे. तो आज आपको जो बॉलीवुड मूवी गेस्ट करनी है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बॉलीवुड मूवीज़. और ये जो क्लूज मैं आपको दूंगी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है. वंस यू लिसन टू दीज क्लूज आप फटाफट अपने दिमाग में एक आंसर जो है ये सोच सकते हैं 110% आई कैन गारंटी. एंड मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ आज की इस मूवी को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी का भी गलत जवाब नहीं आएगा.
1: अच्छा,
0: यस, सो लेट्स सी कि मेरा ये कॉन्फिडेंस जो है ये मिट्टी में मिलता है या फिर सच में यू नो पूरा होता है. तो द क्लूज जो आपको ध्यान से सुनना है वो है सबसे पहला टेलीफोन, दैट्स द फर्स्ट क्लू.
1: हाँ,
0: सेकेंड क्लू आज का इज चश्मे यानी आई ग्लासेस.
1: ओके,
0: और थर्ड क्लू इज एक नाम, स्टार फिशरीज. टेलीफोन, आई ग्लासेस एंड स्टार फिशरीज. स्टार फिशरीज बेसिकली एक नाम है, एक बिजनेस का बोल लो, जो भी बोल लो आप.
1: हाँ,
0: तो ये थ्री एलिमेंट्स है, थ्री क्लूज है आज की बॉलीवुड मूवी गेस करने के लिए. सो टेलीफोन, चश्मे and star fisheries. आप you know बहुत बड़े Bollywood fan नहीं हो, that's why I know कि आपको difficulty होगी.
1: Who says I'm not a big Bollywood fan?
0: Because मैंने जो clues दिए उस हिसाब से आप एकदम blackout हो गए थे, like you were okay कौन सी फिल्म हो सकती है, I could read your face.
1: Yeah.
0: Without you saying a word मुझे पता चल रहा था कि आपको नई idea कि कौन सी फिल्म है ये.
1: हाँ, obviously मुझे नई idea है.
0: हाँ, तो that's why I'm saying ना, क्योंकि जो पक्का वाला बॉलीवुड फैन होता है ना उसको ये फिल्म के बारे में पता है, और जो मैंने क्लूज दिए उस हिसाब से वो फटाफट जवाब दे सकते हैं. सो बी एफ स्पेस आपका आंसर, आपका नाम.
1: I know.
0: And text platform देखा ना आपने. तो बी एफ स्पेस आपका आंसर, आपका नाम, आपको 5599% करना है. एंड दिनेश, आई मस्ट से यू आर अ वेरी बिग बॉलीवुड फैन, क्योंकि मैंने अपना क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं किया था, मैंने तीसरा क्लू दिया भी नहीं था, दो क्लू सुनकर इन्होंने आंसर्स भेजे अपने. तो जल्दी जल्दी अपना जवाब आप सेंड कीजिए. आज की बॉलीवुड मूवी जो आपको गेस करनी है, थ्री एलिमेंट्स, थ्री क्लूज जो हमने दिए हैं, सबसे पहला है टेलीफोन, दूसरा है चश्मे यानी आई ग्लासेस, और तीसरा एक नाम, स्टार फिशरीज. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी का गलत जवाब आज नहीं आएगा. लेट्स सी ये कॉन्फिडेंस मेरा पूरा होता है या नहीं. आपको जवाब देने के लिए हम दे रहे हैं 3 मिनट्स. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
3: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ.
4: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
5: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
6: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा.
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
8: हेलो एवरीबॉडी.
4: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
4: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum. Hum. Accurate traffic.
10: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
11: But wet overnight, but should be mainly fine today. Just some cloud around, high of 17. Into the city, Southern Motorway, we're starting to slow down. Got slow patches, Papakura on and off to Penrose, 24 minutes, Manukau to town, 46 in from Drury. Southwestern looking mostly fine. Northwestern, 24 minutes in from Massey, slow from St. Luke's, even a bit heavy. And Northern 18 from Constellation, slow there to Milford and at Esmond.
10: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
12: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Do lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
13: Hey you with the ears. Your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping,
14: babe, wake up, look at this meme.
13: Ha-ha reacts and thumbs up from Dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny.
15: Happy.
16: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: 13 minute rah gaye hain 7 bajne mein on the breakfast show with Vijay and Pooja. Aaj 29th of September, aaj World Heart Day hai.
0: Oh, Heart Day.
1: Haan.
0: Wow, okay.
1: Heart Day, ये दिन है basically about drawing attention, हमारा ध्यान खींचने के लिए to heart diseases, illnesses, health issues, heart से related जो होते हैं.
0: You know, आजकल के time में अगर देखा जाए, I don't know what's going on, probably the lifestyle, जो भाग दौड़ है, because people ऐसा नहीं कि ना तो promote कर रहे हैं, ना तो खुद practice कर रहे हैं, because a lot of people are promoting and practicing healthy eating habits and healthy lifestyle as well. लेकिन बावजूद उसके, a lot of young people are, you know, dying because of heart diseases and of course heart attacks.
1: Yeah, cardiac arrest वगैरह जो है काफी. अगर आज के दिन को आप mark करने जा रहे हैं, कुछ चीजें जो है अपने आप से हम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि following a healthy diet, quitting alcohol, stopping smoking, physical exercise करना, अपने जो cholesterol, blood pressure और heart checks जो है ये करना on a regular basis, ये सारी चीजें जो है ये आज आप कर सकते हैं. सो आज वर्ल्ड हार्ट डे ये मार्क किया जा रहा है. इसके अलावा आज और भी कई चीज़ें मार्क की जा रही हैं, जिनमें शामिल है आज इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट.
0: ओके,
1: यू नो बहुत सारा खाना जो है ये बर्बाद होता है. आज यूएस में पर्टिकुलरली कॉफी डे मार्क किया जाता है.
0: ओके, नाइस. कॉफी भाई, कॉफी के बिना तो बहुत से लोगों की नहीं चलती, मी बीइंग वन ऑफ देम. एंड आई थिंक इसे आप अगर सही हिसाब से कंज्यूम करें तो ये अच्छा है. ऐसा नहीं कि आप इसी पे निर्भर हो ना.
1: हाँ,
0: स्पेशली अगर आप एक दिन में 2-3 कप से ज्यादा पीते हो तो वो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चनेबल है, जिस पर आप ऑफ कोर्स कुछ काम कर सकते हैं. बट राइट नाउ गेटिंग बैक टू आज का हमारा जो क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, आपको बताना था कि आज की हमारी बॉलीवुड फिल्म जो है ये कौन सी मूवी है. हमने आपको क्लूज के तौर पर 3 चीज़ों के बारे में बताए थे, 3 एलिमेंट्स बताए थे. आपको याद है वो 3 एलिमेंट्स?
1: यस, वो फिशिंग कंपनी की का नाम टेलीफोन और चश्मा मेरे ख्याल से.
0: जी, सो यू आर करेक्ट. सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स which is telephone, chashme और
1: starfisheries.
0: Yes, starfisheries नाम जो है ना बहुत popular हुआ था इस particular film से, and बहुत से lines जो है ये जुड़े थे इस particular you know company से या company के नाम से, dialogues basically. तो अभी तक अगर देखा जाए, हमने आपसे पहले बताया था first person to answer is Divnesh Anand, जिसके बाद Sunny है, हरमिलाप है, कुछ लोगों ने messages भेजे हैं, unfortunately नाम नहीं है इनका. कृष्ण ने message किया है, नीलेश शंकर है, गुंजन है, रोनल्ड है, प्रीति है, अमित गोस्वामी है, राज है, नितिका है, विमल ने भी अपना जवाब भेजा है. And as I had said, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज किसी का भी गलत जवाब नहीं आएगा, बट सरप्राइजिंगली गलत जवाब आए हैं. और एकदम ऐसा नहीं कि कोई नया अनोखा अजूबा डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूवी जो है ये आया है.
1: अरे कोई मेरी टीम में भी तो होना चाहिए ना.
0: हाँ, तो जवाब गलत इस हिसाब से हुआ कि आपने कहीं ना कहीं फिल्म तो सही पकड़ी है, लेकिन आपने उसका पार्ट वन या पार्ट टू या पार्ट थ्री ऐसे भेज दिया. यू नॉट श्योर कि ये जो क्लूज मैंने दिए वो किस पार्ट के हैं.
1: अच्छा,
0: आई मीन नॉट पार्ट, लाइक फ्रेंचाइजी में भी आ सकती है ना ये फिल्म, तो इस हिसाब से शायद आपने अपना जवाब भेजा है. तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो क्लूज मैंने दिए हैं, विच इज टेलीफोन और ब्लैक सॉरी चश्मे और उसके बाद में स्टारफिश रीज, ये जो नाम है ये किस फिल्म का हिस्सा है, बिकॉज इसके अलग अलग पार्ट्स भी आए हैं और अगर आप डिफरेंट पार्ट का जवाब भेज रहे हैं तो वो तो गलत ही हो जाता है ना. तो आप अपना आंसर जो है कि हमारे पास सेंड कीजिए ऑन 5599 जल्दी से, क्योंकि आफ्टर 7 AM हम आपको सही जवाब जो है ये देंगे. तो जवाब भेजने के लिए
1: BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं. फजीलत पापा टोई टोई से एंड मनीषा, थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए.

0: Breakfast catch up.
1: Accurate traffic.
2: Leapmotor electric vehicles are unignorable.
3: A fine one all day today, just some cloudy patches, high of 17 degrees into the city. Starting to slow, northern 20 minutes, Constellation to town, 32 in from Silverdale. Slow at Silverdale, Constellation to Waito Valley and at Esmond. Northwestern 28 minutes in from Massey, slow from Point Sheep, heavy a lot of the way. Southern 28 in from Manukau, we're slow Papakura to Papatoetoe and a few patches past there. Southwestern still okay.
2: Buy a Leapmotor this month, pay nothing until 2027 with $2,000 off your finance. Terms apply.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: याद रहे सुपर सिटी ऑकलैंड में आज के वेदर के बारे में कहा गया है कि पार्टली क्लाउडी रहेगा, फ्यू शावर्स होंगे जरूर, लेकिन शाम के समय साफ मौसम का अनुमान है। सनसेट 7:24 पीएम पर होगा। टेम्परेचर इज 11.5 डिग्रीज फॉर नाउ। ओवरनाइट 10 डिग्रीज रहेगा आज।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.

0: गया।
1: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
2: तीन मिनट हुए हैं 7:00 मेगा फाइनेंस की ओर से आपका स्वागत हम कर रहे हैं। वेलकम टू मॉर्निंग मैडनेस। इस घंटे तो बहुत सारी चीजें होंगी, इंक्लूडिंग योर बर्थडे ग्रीटिंग, स्टार्स फॉर द डे, 7:30 न्यूज हेडलाइंस, सेलिब्रिटी अलार्म भी खेलेंगे।
3: बिल्कुल खेलेंगे। और फिलहाल चलिए हमने पिछले घंटे जो सवाल आपसे पूछा था पहले तो उसे देख लेते कि उसका क्या अंजाम हुआ है। और हमने लास्ट मैसेज आई थिंक पढ़ा था फजीलत और मनीषा का ना, if I'm not mistaken, right? So, जितने लोगों ने आज हमारे पास अपने answers भेजे, thank you so much. And the correct जवाब आज की हमारी Bollywood movie जो आपको guess करनी थी was हेरा फेरी या हेरा फेरी। जितने लोगों ने हमारे पास अपने messages भेजे हैं, now why I said कि we did get a few wrong answers was क्योंकि कुछ लोगों ने फिर हेरा फेरी जो है ये लिखकर भेजा था, which is not correct in this manner. But thank you so much जितने लोगों ने हमारे साथ आज participate किया Bollywood movie guess करने के लिए। फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज जो पहली स्टोरी आपके लिए हम लेकर आए हैं, something to be proud about as a Kiwi, as a person living in New Zealand, as a citizen and resident of New Zealand. Apparently Oxford English डिक्शनरी जो है यहाँ पर कीवी शब्द KIWI इसका एक फोर्थ मीनिंग जो है ये ऐड किया गया है। एंड अगर हम आपको इस शब्द के बारे में बताएं तो ऑलरेडी हम कीवी शब्द जो है इसे यूज करते हैं एज अ फ्रूट, कीवी फ्रूट जो होता है ना उसके लिए, और न्यूजीलैंड का जो नेटिव बर्ड है कीवी उसके लिए, और न्यूजीलैंड के लोगों को भी कीवी कहा जाता है। सो दीज आर द थ्री मीनिंग्स जो इस वर्ड के साथ एसोसिएटेड है। नाउ द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हैज एडेड द फोर्थ मीनिंग जिसका मतलब है कीवी एज अ कैजुअल टर्म फॉर न्यूजीलैंड इंग्लिश। न्यूजीलैंड में
2: अच्छा न्यूजीलैंड इंग्लिश को कीवी
3: यस
2: मतलब दे दिया अभी ऑक्सफोर्ड ने।
3: हाँ, दिस इज द फोर्थ मीनिंग ऑफ द वर्ड कीवी नाउ। और ये जो यूज है बेसिकली इस शब्द का, कीवी शब्द का एज न्यूजीलैंड में जिस तरह के इंग्लिश को हम यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल 1979 से हो रहा है और तब से आइडेंटिफाई किया जाता है एज कीवी, द न्यूजीलैंड इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है। सो अपेरेंटली वी हैव बीन कॉलिंग आवर वर्जन ऑफ इंग्लिश कीवी फॉर डेकेड्स नाउ, और फाइनली इसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड दैट्स नॉट द ओनली न्यूजीलैंड एडिशन जो हुआ है, इस साल एक माओरी शब्द फकापापा ये भी ऐड किया गया है।
2: ओके,
3: एंड इट हैज आल्सो बीन पार्ट ऑफ दिस यू नो एडिशन ऑफ न्यूजीलैंड में जो भाषा है, जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाता है फकापापा, जिसके बारे में कहा जाता है इट कुड बी यूज्ड एज अ नाउन एंड अ वर्ब बोथ, और ये एंसेस्ट्री कनेक्शंस बिटवीन पीपल प्लेसेस एंड जनरेशंस इस हिसाब से इसका इस्तेमाल जो है ये होता है। सो फ्रॉम स्वीट हैज टू ये नाम जो कीवी वे ऑफ स्पीकिंग है ऑफिशियली अब इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ओर अपना जो मार्क है ये बना रहा है। एंड इट्स ऑफ कोर्स अ प्राउड मोमेंट यू नो जब आपकी कंट्री की जो भाषा है उसे इस हिसाब से रिकॉग्निशन मिलती है। तो
2: बिल्कुल और भी बहुत चीजों को रिकॉग्निशन मिल रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं जानने के लिए हमारे साथ ही रहें।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट ready for this
5: na de dil par de teenu tenne tadaruna

0: fans experience. Call 0800-634-234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में ऑकलैंड के हाई कोर्ट ने लोकफुंग लॉरेंस ली को 2023 में एक कपल के मर्डर और फॉर्मर लैंडलॉर्ड की हत्या की साजिश रचने के मामले में गिल्टी करार दिया है। ली ने कोर्ट में मैनस्लॉटर की बात मानी थी, लेकिन जूरी ने चार घंटे की सुनवाई के बाद उसे सभी चार्जेस पर गिल्टी पाया। ली ने अपने साथ शु मानपून के साथ मिलकर डिस्प्यूट के बाद क्वक कपल के घर में घुसकर उनकी हत्या की थी। पुलिस को कुक का एड्रेस लीक होने और पून द्वारा पहले ही दी गई वार्निंग रिपोर्ट को नजरअंदाज करने को लेकर भी ट्रायल के दौरान सवाल उठे। ली को दिसंबर में सजा सुनाई जाएगी। टे मायोहा एओ परेकरांगी यूथ जस्टिस फैसिलिटी में सात लोगों ने मिलकर एक यूथ पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद उसे सीरियस इंजरीज के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि औरंगत अमरीकी के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक स्टाफ के बीच में आने के बावजूद अटेकस ने विक्टिम के सर और चेहरे पर कई पंचेस और किक्स मारे, जिसके बाद सभी सात आरोपियों को सिकिवा केया में भेज दिया गया। इस घटना के बाद लेबर पार्टी के चिल्ड्रन स्पोक्स पर्सन विलोजिन प्राइम ने फैसिलिटीज में स्टाफ की ट्रेनिंग और शॉर्टेज पर गहरे सवाल उठाए हैं। एनपीसी के फाइनल राउंड से पहले टॉप एट में से पांच टीम्स नॉर्थ हार्बर, कैंटरबरी, नॉर्थलैंड, हॉक्सबे और ओटागो अपनी जगह पक्का कर चुकी हैं, जबकि बाकी तीन स्पोर्ट्स के लिए पांच टीमों के बीच काफी कड़ी टक्कर होगी। इस हफ्ते होने वाले डिसाइसिव मैचेस के लिए ऑल ब्लैक्स के 14 प्लेयर्स को उनके रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस के लिए रिलीज किया गया है, जिसमें स्टार प्लेयर बॉर्डन बैरेट तरनाकी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। फॉर्मर चैंपियन ऑकलैंड टॉप एट की रेस से बाहर हो चुकी हैं, जबकि वेलिंगटन अपनी लगातार 11 मैचेस की हार के सिलसिले को तोड़ने और सीजन की पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। नॉर्थ हार्बर टेबल पर टॉप पर बनी हुई है, जबकि टैस्मैन के खिलाड़ी कायरेन तोइफलाउ सिंगल सीजन में सबसे ज्यादा 15 ट्राइज के साथ ऑल टाइम रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब हैं। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuko, big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Manuko, hum, accurate traffic.
5: No Leaming's massive sellout starts tonight.
6: Some cloud around on a mainly fine day. Got a high of 17 degrees. Coming in on the southern motorway, 38 minutes Manuko to town, almost an hour from Drury. Now we're slow most of the way from Papa. Got a few heavier spots. Southwestern slow northbound through Woody. Northwestern 33 minutes in from Massey, slow at the Ardatu, then all the way from Partiki with heavy patches. And Northern 22 in from Constellation, slow at Silverdale and Constellation to the bridge.
5: No Leaming's massive sellout starts tonight. Big brands, hot prices, don't miss it.
7: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: It's Macca's 50th birthday, and to celebrate, we're giving you one in three chances to win food prizes. Order ticketed items using the Macca's app to play. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply.
12: At Woolworths, we're helping you get more value every day, like a massive half price off Tegel products. Stock up on Tegel takeouts, burgers, tenders, nuggets and more. T's, C's and exclusions apply.
13: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
0: business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydar.co.nz.
14: The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari koi branch nahi hai.

0: 1234.
1: Birthday greetings.
2: Iska birthday bhai?
3: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
2: Happy birthday to you.
4: मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज का दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. जितने भी लोग जाए कहीं पर भी आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं. और आज सबसे पहले मैसेज आया है, हैप्पी बर्थडे टू माय मिसेस प्रीतिका. प्रीतिका जी, सालगिरह मुबारक हो. आपके पति हैं रोनल्ड, इकलौता बेटा है रायन और जितने भी आपके परिवार वाले हैं सभी आज आपको शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. आपको इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं.
5: हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज यानी कि ऑन द 29th ऑफ सितंबर, जहां कहीं भी आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको.
6: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. This is Morning Madness, all thanks to Mega Finance. आपके लिए से हम लेकर आ रहे हैं. 20 मिनट बाकी है फिलहाल हमारे स्टूडियोज पे, वैसे 8 बजने में. ठीक 8 पर तो न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए रहेगा ही, पर फॉर नाउ इधर हमने आपसे जो क्वेश्चन आज पूछा था, जहाँ पर आपको हमारी आज की सेलिब्रिटी को गेस करना था, इनकी आवाज़ भी हमने आपको सुनाई थी, एंड ऑल यू नीडेड टू डू वाज टू आइडेंटिफाई कि ये सेलिब्रिटी आज की हमारी कौन है. तो सबसे पहले अगर देखा जाए, आज जैसे ही अपनी आवाज़ प्ले की, द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमारे पास अपना आंसर भेजा था वाज गुंजन. गुंजन के बाद कवनीत का मैसेज आया, फिर दवनेश ने अपना मैसेज भेजा, थोड़े गलत हुए ये, फिर उन्होंने दो आंसर्स भेजे थे बाय द वे, फिर उन्होंने बाद में चलकर एक आंसर जो है ये भेजा. अल्फाज का भी मैसेज आया, सोम है, रवि है, मोविन है, मोनिका है, इन्होंने भी अपने आंसर्स भेजे हैं. और इसके अलावा जायरीन आपका भी मैसेज हमें मिला है. कृतेश कृतनेश है मैनिकाउ से, इनका मैसेज आया है. मोनिशा है, मोनिका है, साथ में रेशमी जी आपका भी मैसेज मिला है हमें. बलजिंदर जी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए. और मिस्टर माटा माटा ने सभी को गुड मॉर्निंग जो है ये विश किया है. तो आज जितने भी लोगों ने हमारे पास अपना आंसर्स भेजे हैं, 4 सेलिब्रिटी अराम, सभी के सही आंसर्स आए हैं, सभी ने सही सही गेस किया. आज की हमारी सेलिब्रिटी वॉज नन अदर देन राखी सावंत.
4: सो थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए जो आपने हमारे पास भेजे हैं. और अभी 8 बजे के बाद आज का हमारा व्हाट्स योर टेक, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. बाय द वे अक्टूबर महीना जो है ये रिलीजेस से एकदम खचाखच भरा हुआ है. अभी देखिए, अब तो आज और कल का दिन ही बाकी रह गया है सितंबर को ख़त्म होने में.
5: हाँ, बस दो ही दिन है.
4: हाँ, तो देयर्स सो मेनी मूवीज जो रिलीज होने वाली हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ माय डॉग.
5: ये कौन सी फिल्म है?
4: ये आपने इस फिल्म के बारे में नहीं सुना?
5: मैं नाम सुना है, बट आई कैन्ट रिमेम्बर लाइक.
4: हाँ, इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी काम कर रहे हैं और ये इट सेलिब्रेट्स द अनकंडीशनल लव एंड लॉयल्टी ह्यूमंस और डॉग्स के बीच जो होता है. सो ये फिल्म जो है रिलीज होने को है, और भी बहुत सारी हैं, हम आपको थोड़ी देर बाद इसके बारे में बताएंगे.
5: ठीक है, तो तैयार रहेगा इसके लिए, आपके लिए डिटेल्स जो है ये हम जरूर लेकर आएंगे. फिलहाल चलिए एंजॉय करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक आपके नाम कर रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज है, अलॉन्ग विद नीति मोहन. दिस इज द रिप्राइज्ड वर्जन जो फिल्म बादशाह से आपके लिए लेकर आ रहे हैं. 2017 में फिल्म आई थी. इस गाने को रिक्रिएट किया गया, आई थिंक 80s में या 70s में मेरे ख्याल से गाना आया था, रिक्रिएट किया गया, लेकिन उसका रिप्राइज वर्जन, एक और एक वर्जन इसी फिल्म में आपके लिए.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना,
2: और गानों में जस्ट

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: 10 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में. 8 पर न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट है आपके लिए. फिल्मों के बारे में हमने कहा था आपको बताएंगे, तो ओ माय डॉग के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है. दूसरी फिल्म दो दिनों बाद जो रिलीज होने जा रही है, मैं लड़ेगा
2: ये फिल्म का नाम है.
1: हाँ
2: ओके.
1: और ये बॉक्सिंग पर एक मूवी है.
2: ओके.
1: एट एन आर्मी हॉस्पिटल. टू डेज बाद वाल्मीकि रामायण ये भी रिलीज होने जा रही है. टुगेदर विद दृश्यम 3 ये भी आ रही है.
2: अच्छा, ये टू डेज बाद आपने कहा.
1: हाँ.
2: मतलब फ्राइडे को.
1: क्या? 2 अक्टूबर.
2: ओके.
1: एंड एक और फिल्म आ रही है, प्रेम कीटाणु.
2: प्रेम कीटाणु मैंने इसका वो देखा है, आई थिंक
1: ट्रेलर.
2: हाँ, वो कौन है इसमें? आयुष्मान खुराना ना.
1: अपार शक्ति खुराना.
2: अपार शक्ति खुराना.
1: अपार शक्ति खुराना, वीर पहाड़िया. हाँ. और आफिया सायद, राकेश बेदी ये सभी काम कर रहे हैं इसमें. और उसी दिन रिलीज होने जा रही है पूजा मेरी जान.
2: अरे ओह माय गुडनेस, ये किसने बना दिया?
1: ये फिल्म जो है इसमें मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी और कौवा बिरयानी काम कर रहे हैं.
2: ओह गुडनेस.
1: तो पूजा मेरी जान ये भी 2 अक्टूबर को रिलीज होने को है. एंड फ्राइडे को अनदर मूवी जान तेरी कसम.
2: ओके. यार बड़े अजीबोगरीब नाम वाले फिल्म जो कि रिलीज होने वाले हैं. बट वी हैव गॉट अ लिस्ट, जो आपको अच्छा लगे वो आप जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. बाय द वे, एक हिस्ट्री जो है ये क्रिएट हुई है चेस की दुनिया में, शतरंज की दुनिया में. आपको आती है कैसे खेलते हैं चेस?
1: हाँ बिल्कुल आती है. जीरो.
2: झूठ बोलना पाप है, आगे मेरे को नहीं बोलना. बट एनीवेज, नॉर्थ वेस्ट लंदन इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है हेरो. ये एक लार्ज सबर्बन टाउन है और इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ की एक रेसिडेंट है जिनका एक स्कूल गर्ल है बेसिकली, जो जिनका नाम है मेरे ख्याल से बोधना शिवानंदन. और बोधना जो है सिर्फ 11 साल की है, ओनली 11 ईयर्स ओल्ड. और इन्होंने चेस की दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट किया है बाय बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू अर्न द वुमन ग्रैंड मास्टर टाइटल 11 साल की उम्र में.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का वेदर पार्टली क्लाउडी विद लिटिल बिट ऑफ शावर्स हो सकता है शाम के समय, तो उम्मीद की जा रही है कि धूप जो है ये दिखेगी, बट इट विल बी ओनली फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. सनसेट होगा 7:24 PM पर. टेम्परेचर राइट नाउ देखा जाए 12.3 डिग्रीज तक पहुंच चुका है. हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है आज. बाद में चलकर इन ओवर नाइट टेम्परेचर आज 10 डिग्रीज रहेगा.
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
3: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम The Fortune at Harrington Living Monaco. Big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
1: ट्रेंड पेट्रोल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं हम द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा, जहां पर हम बातें करते हैं कुछ ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में. और अभी के लिए कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स AI जो है, इट्स नॉट अ ट्रेंड, इट्स देयर टू स्टे इन फैक्ट. और बहुत से लोग जो है अलग अलग तरीके से यू नो फेस कर रहे हैं, इसके साथ डील कर रहे हैं, इसके साथ काम कर रहे हैं. बट वन पर्टिकुलर AI टूल जिसके बारे में भी फिलहाल काफ़ी बातें हो रही हैं, एंड इट्स बीइंग कॉल्ड द न्यू थिंग विच इज़ इन, जो ज़्यादातर लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं. I don't know how many of you have tried it. Apparently, कुछ ऐसे बहुत जाने माने यू नो लोग हैं जिन्होंने AI को यूज़ किया है, जिनको इन्होंने खुद अपने अपने सॉफ्टवेयर जो है ये बनाए हैं. इनके हिसाब से कहा जा रहा है कि क्लोड एक ऐसा AI टूल है जिसके बारे में कहा जाता है इट्स वेरी वेरी यूजफुल एंड इट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ. बहुत से लोग जो है इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए. और क्लोड के बारे में अगर बातें करें, इफ़ यू डोंट रियली नो द स्पेलिंग, इट्स CLAUDE. क्लोड. और अगर आपने अभी तक इसे नहीं एक्सपीरियंस किया है, आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं. आई हैवंट डन मच विद इट. मैंने सिर्फ इसका नाम सुना है, मैंने सिर्फ ये जाना है कि ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग एंड स्टडिंग दिस कि ये कैसे जो है वर्क करता है. बट क्लोड के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ मच मोर एडवांस्ड देन शायद जो बेसिक AIs जो है अभी तक आपने यूज़ किए होंगे. ऐसा नहीं कि ChatGPT एंड Gemini आर नॉट देयर, और उनके भी अपने अपने फीचर्स हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं जो शायद आप फ्री अगर अकाउंट यूज़ कर रहे तो नहीं एक्सप्लोर कर सकते. यू माइट हैव टू पे एंड गेट एक्सेस टू सर्टेन थिंग्स. क्लोड वर्क्स द सेम. उसके भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको जब आप पे करोगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, एंड देन यू कैन एक्सेस टू इट. बट इसके बारे में कहा जाता है इट कैन मेक योर लाइफ ईजी. सो अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, दिस इज समथिंग दैट्स ट्रेंडिंग इन द वर्ल्ड ऑफ AI, क्लोड, और ये आप जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं.
5: तो आप देयर आर सम वेरी गुड टूल्स जो आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं ऑन इन. जहाँ तक AI का सवाल है, इट्स जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम डूइंग सम रिसर्च एंड डूइंग द राइट थिंग.
1: यस. तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो है ये टैकल कर सकता है. डाटा एनालाइज करता है, कोड्स वगैरह जो आपके लिए लिखता है, एंड थिंग्स थ्रू योर हार्डेस्ट वर्क. बेसिकली एक ऐसा AI प्रोग्राम जिसे बिल्ड किया गया है टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. तो अगर आप इस नेक्स्ट जनरेशन AI असिस्टेंट क्लोड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंड यू वॉन्ट टू बी ट्रेंड टू बी सेफ, एक्यूरेट एंड श्योर और सिक्योर एट द सेम टाइम, तो आप ज़रूर इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, जहाँ पर ट्रेंड पेट्रोल में आप कल एक बार फिर आपके लिए लेकर आएंगे एक ऐसी ही चीज़ जो ट्रेंड कर रही है, इसके बारे में बातें हम ज़रूर करेंगे. रियलिटी शोज की दुनिया में काफ़ी कुछ जो है फिलहाल ट्रेंड कर रहा है. मैंने कहीं पर एक पोस्ट पढ़ा था कि आजकल जैसे ही आप आँखें बंद कर आँखें ओपन करो, एक नया रियलिटी शो जो ये आ जाता है, एंड इट्स सो हार्ड टू कीप अप विद ऑल ऑफ देम. आर यू कीपिंग अप विद एनी ऑफ द रियलिटी शोज रिसेंटली?
5: आई एम जस्ट वॉचिंग खतरों के खिलाड़ी.
1: अच्छा, तो वो एक आप देख रहे हैं
5: अभी? हाँ, बस वही एक.
1: आई डोंट नो, दिस टाइम अराउंड आई हैव नॉट सीन एनी, आई एम नॉट फॉलोइंग अप विद एनी. मुझे ज़्यादा किसी रियलिटी शो के बारे में भी पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है, बट डेफिनेटली अग्री विद द फैक्ट कि यार इतने सारे रियलिटी शोज जो है ये आ रहे हैं. अभी एक नया कुछ आया है, राइज एंड फॉल. आई थिंक ये नया है कि season 2 है इसका, आई एम नॉट रियली श्योर, पर इसके बारे में भी काफ़ी बातें हो रही है. पीपल आर लाइकिंग इट आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड. और इसे बाय द वे कमाल की बात ये है, आपने ये ध्यान दिया कि आजकल बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं ये होस्ट कर रहे हैं अलग अलग रियलिटी शोज.
5: अच्छा
1: हाँ.
5: रोहित शर्मा के बारे में मैंने कहीं पर पढ़ा था या फिर हम लोगों ने एक अपडेट जो है ये सम टाइम बैक किया था अबाउट दिस.
1: हाँ हाँ, वो भी एक रियलिटी शो जो ये होस्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक मैंने इसके एक दो स्निपेट्स देखे हुए हैं जहाँ पर इन्होंने इस रियलिटी शो में अलग अलग सेलिब्रिटीज को जो है ये बुलाया है, उनके साथ उन्होंने सर्टन एपिसोड जो है ये किए हैं. बट ऑन दी अदर हैंड काफी क्रिकेटर्स भी इनके शो में आए हैं. इसका नाम है फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा. और फैमिली फुल हाउस जो है इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली फ्यूड. आपको याद है स्टीव हार्वी इसे होस्ट करते हैं. स्टीव हार्वी का फैमिली फ्यूड जो है
5: नहीं है, न्यूजीलैंड में भी एक न्यूजीलैंड का वर्जन होता था फैमिली फ्यूड.
1: ओह आई थिंक आई हैव सीन द अमेरिकन वर्जन, दैट्स व्हाई आई नो. तो रोहित शर्मा का फैमिली फुल हाउस इज ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, फैमिली फ्यूड के कॉन्सेप्ट पर है ये. और ये होस्ट कर रहे हैं. राइज एंड फॉल सीजन 1 आया था जिसे होस्ट किया था अश्नीर ग्रोवर ने. अश्नीर याद है आपको, शार्क टैंक में आए थे ये ना. और जो राइज एंड फॉल का सीजन 2 है इसे होस्ट कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग. ये भी बड़े जाने माने क्रिकेटर हैं.
5: अच्छा,
1: तो ये इसे होस्ट कर रहे हैं. एज आई सेड बहुत से रियलिटी शोज भी आ रहे हैं आजकल. कई क्रिकेटर्स जो है ये होस्ट बन रहे हैं, ओ एक्स क्रिकेटर्स फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है ये होस्ट बन रहे हैं ऑफ दिस रियलिटी शोज. दिस इज अनदर ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox. Intaha ho gayi
1: intezaar ki. कॉमनवेल्थ वॉल्ट आपके प्रेशियस बिलोंगिंग्स को रखता है सेफ और सिक्योर. गोल्ड, बुलियन और प्रेशियस मेटल्स की वैल्यू जब ऑल टाइम हाई पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें. जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे. कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड. डिटेल्स एट commonwealthvault.co.nz. That's commonwealthvault.co.nz.
2: MediaWorks Complaints. How can I help?
3: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
2: Nice.
3: And you talked me into creating this funny character.
2: Great.
3: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
2: Are you?
3: Yes.
2: Are you Bobby the Baker?
3: Yes.
2: What's that thing you do again?
3: Stop it.
2: You bring the mouth.
3: Stop it.
2: I'll bring the pie.
3: Stop it, please.
2: Okay.
3: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
2: So what's the problem?
3: My name's Bruce.
0: Advertise with MediaWorks.
2: New Zealand listens to us.
4: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel Fusion main camera with variable aperture for more creative control, and 4 gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
5: Raz, romance, action aur supernatural power se bhari kahani. A thrilling fantasy adventure. The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna.
6: Is one ki kaali shakti, raat ke saaye se bhi kaale.
5: The One, now showing in cinemas.
7: Ab mujhe dheere dheere samajh aa raha hai. Jo kuch bhi ho raha hai, sab ek number ki bakwas.
5: Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
8: हमें माता का बुलावा आया है.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoy and Hamilton.
12: What's your take?
13: तो चलिए, इस प्रॉमिस्ड व्हाट्स योर टेक का टाइम आया और फिलहाल 20 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर. आज का टॉपिक जिस पर आप अपनी जो टेक है ये शेयर कर सकते हैं, बेसिकली अपना व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. याद दिला रहे हैं आपको, यू कैन गिव अस अ कॉल 0800 004866 पर. लाइव होने आते हुए आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं. ओ यू कैन टेक्स्ट इट टू अस ऑन 5599. अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं बिकॉज यू फील टू शाई टू स्पीक टू अस लाइव होने, या तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर यू आर नॉट इन situation to call right now but you're listening and you'd like to text, share your views, तो आप 5599 पर अपना message भेज सकते हैं. तो चलिए जानते हैं आज का what's your take topic क्या है.
14: अभी त्योहारों का मौसम जो है ये भी आ रहा है, और त्योहार जब आते हैं कई चीजें जो है त्योहारों से जुड़ी होती हैं, और उनमें से एक है मिठाई,
13: sweets.
14: हाँ, मिठाइयां जो है ये जुड़ी होती हैं, और मिठाइयां अगर देखिए अलग अलग त्योहारों के साथ अलग अलग मिठाइयाँ होती हैं, अलग अलग जगहों के साथ अलग अलग मिठाइयाँ होती हैं. जैसे पश्चिमी बंगाल के रसगुल्ले,
13: हाँ, बहुत पॉपुलर है ना
14: पूरी दुनिया में. और उसके बाद राजस्थान का
13: घेवर.
14: हाँ, आई डोंट थिंक आई हैव ईटन घेवर.
13: आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स बट ऐसे वीडियोज में ही देखा है, बट खाया मैंने भी कभी नहीं,
14: क्योंकि मैं जो फोटो देख रहा हूँ उसमें दिखने में थोड़ा केक जैसा लग रहा है.
13: इट्स नॉट अ केक, इट्स लाइक बेसन का घोल होता है. बेसन नहीं, किसी एक चीज का तो घोल होता है मेरे ख्याल से. नॉट बेसन एक्चुअली.
14: इसमें लिखा है मेड फ्रॉम फ्लावर, घी एंड शुगर सिरप, ऑफन टॉप्ड विद
13: रबड़ी
14: नट्स और सिल्वर लीफ.
13: हाँ, तो क्या होता है कि आटे को आटे को मेरे ख्याल से घी में मिलाया जाता है समथिंग, और उसे आइस क्यूब के साथ ऐसे ऐसे
14: रब किया जाता
13: है. हाँ, फिर उसका एक वो कुछ लिक्विड सा मिलता है, फिर उसमें और पानी मिलाकर उसे पतला किया जाता है, और उसको फिर ऐसे तेल में या घी में मेरे ख्याल से ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ा जाता है टू फ्राइड. एंड वो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप आप छोड़ रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो रिंग जैसा फॉर्म हो, लेकिन बीच में एक उसका एक होल भी बनता जाए. तो व्हेन इट फॉर्म्स लाइक अ सर्कल राउंड रिंग टाइप जैसा और उसके बीच में एक होल टाइप होता है, फिर उसे फ्राई करने के बाद उसको बाहर निकालकर शुगर सिरप चाशनी में डुबोकर फिर उसके ऊपर रबड़ी एंड देन नट्स वगैरह जो ये डाले जाते हैं।
14: ओके तो ये राजस्थान का घेवर, उत्तर प्रदेश का पेठा
13: यम,
14: वेरी नाइस, द बेस्ट मिठाई है ईट इन इंडिया,
13: बहुत बहुत यमी था
14: वो, अलग अलग
13: कलर्स और फ्लेवर्स में था।
14: गुजरात का कहते हैं मोहन थाल
13: मैंने कभी नहीं ट्राई किया,
14: मुझे भी याद नहीं है। महाराष्ट्र से पूरन पोली मैंने कभी नहीं खाया,
13: मैंने सुना बहुत है इसके बारे में।
14: ओके और उसके अलावा बिहार से कहते हैं खाजा।
13: हाँ
14: I like खाजा,
13: I'm not a fan।
14: ओके उड़ीसा, hopefully मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, चेन्ना पोड़ा।
13: ओके
14: होपफुली। और पंजाब से कहते हैं पिन्नी,
13: या दैट्स आल्सो वेरी पॉपुलर।
14: कर्नाटक से मैसूर पाक। तमिलनाडु से तिरुनेलवी या तिरुनेलवेली हलवा।
13: ओके
14: और केरला से कहते हैं आदा प्रदमन। हाँ
13: ओके
14: तो ये सारी, आंध्र प्रदेश से पुठारे कुलू, असम से पीठा, जम्मू कश्मीर से शुफ्ता।
13: सुनने में कितना नाइस लग रहा है ना,
14: ये यू नो मिक्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, पनीर, स्पाइसेस, हनी, सैफरन, कश्मीरी वेडिंग्स में इसे सर्व किया जाता है कहते हैं।
13: राइट
14: बहुत। तो मैंने चलो सोचा कि आज हम आपसे भी पता लगाते हैं कि आप जहां से हैं वहां की क्या कोई स्पेशल मिठाई है, और वक्त के साथ सब चीजें बदल रही हैं, क्या मिठाइयां बदली हैं।
13: तो आप अपना जो व्यू है ये शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या देखा है। अरे मेरे ख्याल से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस इन मिठाइयां, जैसे आपने बिहार का क्या मेंशन किया था,
14: खाजा
13: इज समथिंग जो फिजी इंडियंस कुड रिलेट टू बिकॉज वहां पे बनता है, वहां के लोग खाते हैं। अनदर थिंग दैट आई हैव हर्ड ऑफ इज ठेकुआ, ये बिहार में और मेरे ख्याल से झारखंड और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इलाकों में भी बहुत से लोग जो है इसे ट्राई करते हैं। सदर्न नेपाल में भी लोग इसे जो है ये बनाते हैं और एक प्रसाद की तरह इसे चढ़ाते हैं। और कमाल की बात ये है कि इसका फीजी इंडियन वर्जन जो बहुत पसंद है हम सबको, या मुझे पर्टिकुलरली, वुड बी रोट, जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं प्रसाद ना, तो वो बिहार का या यू कह सकते हैं झारखंड का ठेकुआ जो बोलते हैं वो है। And I've seen the similarities in sweets. नाम अलग अलग हैं but similarities काफ़ी ज़्यादा हैं। और मिठाइयाँ इवॉल्व हुई हैं, I would say कि yes, I've seen a lot of healthier versions. जैसे आज से पहले मैंने कभी बीटरूट का बर्फी या हलवा इसके बारे में कभी नहीं सुना था। बीटरूट का हलवा मैंने ट्राई किया है एंड आई लव्ड इट, मुझे ऐसा कुछ अलग नहीं लगा। नॉर्मली मुझे बीटरूट पसंद नहीं है बट when I tried the halwa, it was really nice.
14: अब चले अगर किसी के पास कुछ हो मिठाइयों के बारे में बताने के लिए तो उनकी भी सुन लेते हैं, आपकी भी सुनना हम जरूर चाहेंगे।
13: बिल्कुल, अभी ना आप ही की सुनना चाहते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि आप सुनाते नहीं है तो हम आपस में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम होता है हमारे पास इस टाइम आपसे बात करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी ईगली वेट फॉर, राइट?
14: यस, तो आप जहाँ से हैं वहाँ की स्पेशल मिठाई कौन सी है, ये पहली चीज बताएं, एंड हैव यू सीन मिठाई चेंज ओवर टाइम,
13: या हैव यू सीन एनी चेंजेस,
14: और कौन कौन सी नई मिठाइयां वक्त के साथ आई हैं।
13: राइट, नई मिठाई तो आई डोंट नो, मुझे कोकोनट आइस एक है, आई डोंट नो ये नया है कि क्या है वो, मैंने कोकोनट आइस, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पहले के जमाने की कोई मिठाई है, शायद अभी आया हो रिसेंटली। बट हमारे पास ये इतनी सारी, हमने तो पूरी की पूरी लिस्ट बता दी मिठाइयों की, और इतनी मिठाइयां, जैसे कि हमने क्या बोला था, मालपुआ।
14: हाँ।
13: मालपुआ आपने बोला था ना, कितने
14: पूरन पोली
13: आपने बोली थी, ये महाराष्ट्र की मिठाई है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, वी हैव नेवर ट्राइड इट बट वी हैव मेंशनड इट, एंड आई एम 100% श्योर समवन ऑफ यू या समवन हु इज लिसनिंग टू अस, शायद आपने कभी ना कभी ये ट्राई किया हो।
14: हाँ।
13: अगर आपके पास इस मिठाई के बारे में कुछ भी है शेयर करने को तो वो ही बता सकते, यू डोंट नेसेसरली हैव टू स्पीक अबाउट एनी अदर मिठाई ना। गुड मॉर्निंग, हम
12: हाय, गुड मॉर्निंग
13: जी, किन से बात हो रही है?
12: जिया
13: जी।
12: हाँ
13: जी, बताइए आप किस मिठाई के बारे में आज बताने वाली हैं?
12: जहाँ से मैं आती हूँ दैट्स फ्रॉम फिजी और पार्ट ऑफ फिजी लंबासा और वहाँ के फेमस है गट्टा
13: यार वो तो फिजी में इतना फेमस है कि लोग जब लंबासा जाते घूमने तो बोलते गट्टा लेके आए क्या
14: पूरी फिजी में वर्ल्ड फेमस
13: पूरी फिजी में वर्ल्ड फेमस या थैंक यू सो मच जी आपके कॉल के लिए थैंक यू इट्स लाइक अ शुगर कैंडी ना हाँ थैंक यू 800-00-4866 पर आप कॉल कर सकते हैं हमारे पास
14: किसी ने कहा है लौकी की मिठाई
13: आई थिंक लौकी का हलवा मैंने ट्राई किया नॉट एनीथिंग एल्स गुड मॉर्निंग हम
15: हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू
13: आई एम गुड थैंक यू हाउ आर यू
15: गुड गुड नॉट बैड
13: जी आप किस मिठाई के बारे में बताने वाली है
15: I'm not a big fan of mithai, मगर मैंने I wanted to say, आपने पूछा ना कि change in the
13: मिठाई हाँ क्या देखा क्या आपने
15: क्या change है because people are getting very conscious about health these days. I'm one of those as well. I fit into those. मैंने देखा कि पहले होता था ना सभी मिठाई like sweet, sugar.
13: जी
15: थोड़े टाइम के बाद एवरीबॉडी इज लाइक ओके शुगर नहीं खाना गुड इज बेटर देन शुगर
13: या
15: गुड खा लो एंड देन नाउ आई सीन पेट अभी वो ऑल द मिठाई पिन्नी लाइक पीपल मेक इट आई मेड इट एंड यू कॉन्ट इवन टेल डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता जस्ट अ बेटर वर्जन ऑफ स्वीट मेकिंग इट विद डेट
13: राइट डेट्स ओके
15: हाँ डेट्स खजूर
13: हाँ खजूर का इस्तेमाल कर मीठे के लिए
15: शुगर की जगह गुड़ की गुड़ शक्कर इसकी जगह पे
13: खजूर
15: अभी बना रहे खजूर से डिफरेंस आई सीन एंड आई सी लॉट्स ऑफ वीडियोस एंड पोस्ट दीज डेज आई जस्ट got attempted and I made it and it's really good
13: that's nice तो आपने पिन्नी बनाई with खजूर
15: पिन्नी हाँ all the dry fruits and मखाना उनको सभी को grind करके just make a powder and it's easy you don't have to cook it for long time
13: हमको भी खिलाओ यार कभी
15: बिल्कुल
13: हमने कभी नहीं ट्राई की पिन्नी हमने सिर्फ सुना हुआ है बट हाँ थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए
15: अनदर
13: जी जी
15: वन मोर थिंग इंस्टेड ऑफ आटा यू यूज रागी बेसन उन चीजों से
13: ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्या नाम क्या है आपका मैम
15: सिमी
13: थैंक यू सो मच सिमी थैंक यू आपके कॉल के लिए हैव अ वंडरफुल डे तो हेल्दी या मिठाई इन्होंने कहा ये इन्होंने नोटिस किया है ना
14: जो बात शायद कहीं ना कहीं आपने भी कही थी
13: राइट और किसी ने टेक्स्ट किया गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा वे इज लकड़ी मिठाई फ्रॉम लकड़ी मिठाई इज फ्रॉम फिजी लकड़ी मिठाई इज बेसिकली
14: शक्करपारा
13: या जो शायद भारत में लोग शक्करपारा के नाम से जानते हैं वो फिजी में लकड़ी मिठाई बोलते हैं
14: किसी ने कहा हैव यू गाइस एवर ट्राइड गन्ने के रस की खीर गुरुद्वारे में मिलती है।
13: We've never tried that. हम पहली बार सुना है।
14: हाँ, मैंने भी कभी नहीं सुना इसके बारे में।
13: ये कौन से गुरुद्वारे में मिलती है? Because I've been to ताकिनीनी गुरुद्वारा। वहाँ पे तो कभी नहीं मैंने I mean खीर खाई होगी पर याद पता ही नहीं किसी ने बताया नहीं कि गन्ने की रस की है नहीं मैं यहाँ मिलती है क्या अगर आप बता सकते तो सुतर फेनी फ्रॉम खम्बट गुजरात में ये क्या है
14: सुतर फेनी क्या होता है अब जाकर हमको गूगल करना पड़ेगा
13: ऑब्वियसली
14: हॉपफुली गूगल सही बताए कि क्या होता है
13: हाँ बताया ना देखो जैसे टाइप के वैसे पूरा का पूरा आ गया ओह इट लुक्स लाइक
14: समथिंग
13: वो सोन पापड़ी में नहीं जैसे रस्सा जैसा होता है
14: हाँ हाँ हाँ.
13: तो ये भी वैसा ही दिख रहा है बट इट्स लाइक अ राउंड उसमें है शेप में है ये नॉट राउंड शेप में लाइक जैसे आप सेमोलिना ले लो
14: हाँ.
13: सेमोलिना बोल रही मैं वर्मेसली जो होता है सेवई तो उस जैसा दिखता है ये
14: ओके गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय भाई मोहन थाल ऑफ गुजरात
13: हाँ
14: अच्छा तो मोहन थाल जो है इसके बारे में हमने पढ़ा इन्होंने ये भी बताया कि ये कहाँ मिलता है ऑकलैंड में
13: ओ अच्छा वहाँ पे जाके ट्राई करेंगे चलो
14: तो आप भी हमें बताएं आप किस आप जहाँ से हैं वहाँ की कौन सी स्पेशलिटी है
13: हाँ.
14: अभी जैसे गन्ने के रस की खीर के बारे में हमने कभी नहीं सुना था इट वॉज फर्स्ट टाइम
13: सुतरफेनी के बारे में मैंने पहली बार सुना
14: लौकी की मिठाई मैंने कभी नहीं खाई
13: मैंने हलवा ट्राई किया लौकी का हलवा
14: तो और कौन कौन सी ऐसी मिठाइयां हैं अभी फेस्टिवल्स का टाइम आ रहा है तो उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
11: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
16: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं
17: मैं लाऊं अपना ए गेम.
11: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: that they will keep feelings.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: Accurate traffic.
3: China Airlines spring sale.
4: A fine one all day today. A bit of cloud around, got a high of 17. Into the city, Northern Motorway, 30 minutes. Constellation Drive to town, 39 from Silverdale. Slow at Silverdale, heavy patches, Greville to the bridge. Northwestern, 37 minutes in from Massey. Heavy on and off from Te Aratu, easing around Grey Lynn. Southern, 43, Manukau to town. Slow from Papatoetoe, heavy Otahuhu to Green Lane. Southwestern, slow northbound through Whitty.
3: Brisbane, Taipei and beyond. China Airlines spring sale. Save up to 15% travelling until August 2027.
5: Professional by Ninjas है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
8: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and that seat.
9: James, this is a radio ad.
8: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
1: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoetoe and Hamilton.
10: Let's go.
1: Straight from the heart.
11: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
12: समय की ओर देखें 18 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है वैसे ख्याल रखें कि इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस Pay attention to your feelings. Reach in and check how you are doing. Reach out and talk to a trusted professional. Support is available at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342 for free and confidential mental health support. If you or someone is in immediate danger, please call 111 or the emergency services.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Traffic.
2: Everything for gardens, lawns and landscaping at Dalton's Landscape Supplies.
3: Some cloud on a mostly fine one today, 17 hour high into the city. Northern Motorway, half an hour, Constellation Drive to the city. We're slow at Silverdale, heavy patches from Greville on and off to the bridge. Northwestern, 37 minutes, Massey to the city. We're heavy on and off to Aratu to the CBD. Southern, 43 in from Manukau, slow from Papatoetoe, heavy patches from Otahu. And southwestern, slow northbound up to Puanui.
2: Easy ordering or pickup. Daltonslandscapes.co.nz.
4: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. Five-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
5: Hey you with the ears. Your skinny phone plan now has rewards. So, all your scrolling, tapping.
6: Babe, wake up. Look at this meme.
5: Ha-ha reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the skinny. Happy-o.
4: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoi and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और 10 मिनट बाकी है इसमें हमारे स्टूडियोज में वैसे ठीक 9 बजने में और 9 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे जिसके बाद व्हाट्स गोइंग ऑन इसमें भी कुछ चीज़ें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं।
10: फिलहाल मिठाइयों के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पेशल डिशेज के बारे में बातें हो रही थी। अभी ने कहा है वकलोलो।
9: ओह दिस इज समथिंग या
10: आई मेड वकलोलो ड्यूरिंग लॉकडाउन कोविड के टाइम पे।
9: अच्छा।
10: हाँ, उस टाइम पर कुछ खास करने को होता नहीं था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग उसी समय पर तो वो कौन सी कॉफी आई थी
9: डेलगोना
10: ना वो वाली कॉफी आई थी ना
9: आई नो यार लॉकडाउन के टाइम पे क्या कुछ नहीं आया था। कई लोगों ने वजन घटाया तो कई लोगों ने वजन बढ़ाया भी था।
10: विम का मैसेज आया है पोर्ट वाइकाटो से, राम राम विजय भाई एंड पूजा जी। वन ऑफ माई फेवरेट मेड बाय माई अम्मा नारियल मिठाई, ईट इट जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स हार्डनिंग। तुवु लोटो का फिजी।
9: अच्छा वहाँ पे ये बना है कि वहाँ से आप फिलहाल प्रोग्राम सुन रहे हैं। That is something to think about.
10: वो Port Waikato में है ना?
9: क्योंकि निर्वाद ने from Port Waikato में लिखा.
10: हाँ, उनकी यादें चली गई हैं तुवलोटो का.
9: Yeah, because of his mom. ना उनकी mom ने, I mean उनकी mummy जो ये बनाया करती थी. I guess that's how he wants to say it. But yeah, नारियल मिठाई जो कहते हैं, नारियल मिठाई is how we say it, how we pronounce it. मुझे जरा भी नहीं पसंद है मिठाई.
10: I love it.
9: Yeah, that's what I was going to say. कि हम दोनों कितना opposite है. पता नहीं क्यों मुझे जब भी I eat this, मुझे बहुत ज़्यादा वो नारियल का जो oil है. That I can taste in it. और बहुत से लोग जो है अलग अलग तरीके से बनाते हैं अदरक उसमें काफी ज्यादा लोग जो ये इस्तेमाल करते हैं.
10: That's very good. अदरक होना चाहिए.
9: हाँ, और ये चीज उन्होंने सही बोली है क्योंकि अगर वो आप जब रख दो सूखने के लिए तो थोड़ा हार्ड हो जाता है.
10: I like that one.
9: तो ये बोल रहे कि as soon as वो बनता है वो हार्ड होने से पहले आप उसे खा लो, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना. तो इंटरेस्टिंग अलग अलग मिठाइयाँ जो है ये लोगों ने हमारे पास भेजी है. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए. आप चाहे तो आप अभी भी मैसेजेस भेज सकते हैं. इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसी मिठाइयाँ मैंशन की है विच इज़ एसोसिएटेड विद फीजी, बट बहुत कम लोगों ने मैंशन की. मतलब इंडिया इज सच अ बिग कंट्री.
10: हाँ, ऐसी कौन कौन सी मिठाई है जो आपको लगता है कि हमें पता नहीं होगी? अभी सुतरफेनी ये पहले गन्ने के रस के खीर, दो चीजें आज नई सीखने को मिली हमको. और कौन सी मिठाई है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, वो आप बताएं.
9: मैं भी बोल रही हूँ भारत तो बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे अलग अलग राज्य है जहाँ पर अलग अलग शहर का भी मिठाई जो है पॉपुलर. आगरा का पेठा जो बोलते है वो फेमस है, तो मथुरा का पेड़ा ये बहुत फेमस है, या हाँ मथुरा का पेड़ा, या सो अलग अलग चीजें वहाँ पे पॉपुलर है. और I'm thinking like इतनी सारी चीज़ें to talk about and no one is talking about it. So quite interesting. या फिर आप सबने शायद खुद ही ये try नहीं किए इसलिए आपको नहीं पता. Could be anything. But अगर आपके पास है कुछ share करने के लिए अभी भी आप 5599 पर हमारे पास text कर सकते हैं.

0: a trip to Bali for two. 5 days, four nights, two lucky winners. Her eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
1: Time check.
2: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
3: Good morning, it's Simitik Nobajre hai.
1: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
4: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Tougher penalties are set to be rolled out as the government cracks down on the black market tobacco trade. There will be a new $2,000 fine for breaching packaging regulations. There'll also be a liability offence of up to $200,000. And there will be strengthened consequences for approval of a specialist vape retailer that breaches regulations. A fire at a shop in Auckland's Te Aratu is being treated as suspicious. Crews were called to Harbourview Road around 2 this morning and reported it well ablaze on arrival. Fire and Emergency says the incident has been referred to police. Police across the country will come together today to honour those who are no longer with them. Assistant Commissioner Jeanette Park says the Remembrance Service is also a time to support families of fallen officers.
5: They always will be part of the police families. It's why it's so special, because it's a time of support and care for each other, as well as remembrance and reconnection with everyone.
4: President Trump has reacted after the UK released 5 men arrested on suspicion of a terror plot on bail.
6: Don't let them have bail, cashless bail. I wonder, is it cashless bail, I guess? I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that.
4: And sport commentator Tony Johnson expects two experienced forwards to be recalled when the All Blacks name their Bledisloe Cup squad at 2:30 today. He told the DSPN podcast that Shannon Frizzell and Scott Barrett should be included.
7: I think Frizzell has put up a compelling case, and I think Scott Barrett, they'll want him back there as well.
4: Rugby news with All Blacks Travel and Hospitality.com. Eden Park Bledisloe Cup hospitality packages selling now.
1: Sports news. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
8: World's best, hamari good brands nahi
1: hai. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
3: तो मौसम के बारे में भी ज्यादा क्या ही बताए, उतना ही है जैसा अभी सुबह से बताते आ रहे हैं कि बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी, शाम के समय थोड़ी बहुत धूप इज एक्सपेक्टेड, सनसेट 7:24 पर होगा, टेम्परेचर 12.7 डिग्रीज तक फिलहाल पहुंच चुका है, ओवरनाइट 10 डिग्रीज रहेगा, हाई ऑफ 16 आज एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
9: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको. बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर your home, Harrington Living Monaco.
10: What's going on? Kya bakte ho?
11: Are kehna kya chahte ho?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
3: Hello, Kia ora. Good morning. Namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Aapke liye lekar aa rahe hain The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Aur filhal 3 minute ho rahe hain is samay hamare studios mein 9 bajkar. Good morning.
13: गुड मॉर्निंग.
3: हाँ, मैं आपको ही गुड मॉर्निंग बोल रही थी.
13: अच्छा,
3: जस्ट टू चेक इफ यू आर स्टिल अवेक. स्टिल हियर. फिजिकली तो है, मेंटली है क्या? बाय द वे, हम मिठाइयों के बारे में बातें कर रहे थे तो पिछले घंटे एक मैसेज आया. इन्होंने कहा खजूर, इट्स अ मिठाई नॉट द फ्रूट. इट्स फ्रॉम अमृतसर. सुनील ने मैसेज किया है. तो अमृतसर में शायद कोई एक मिठाई है जिसे खजूर बोला जाता है, ये इन्होंने मैसेज किया है. और फिर इन्होंने ये भी कहा है दोधा, वेरी यमी स्वीट फ्रॉम लुधियाना. धोधा, इफ दैट्स हाउ इट्स बीइंग सेड, अगर मैंने सही तरीके से प्रोनाउंस किया है तो. बट थैंक यू सो मच सुनील जी आपकी भी मैसेज के लिए. एक मिठाई है विच आई हैव ग्रोन अप ईटिंग एंड आई'd लाइक टू टॉक अबाउट इट. इट वॉज अ रेसिपी पास्ड ऑन बाय माय ग्रैंड मदर टू माय मम्मी, माय मदर. और ये जो मिठाई है,
13: नहीं उससे आगे पास हुआ कि नहीं?
3: नहीं, उससे आगे नहीं हुआ, अभी मेरी मम्मी तक ही है वही. इनफैक्ट शी इज द ओनली पर्सन हु नोज हाउ टू मेक इट इन द होल फैमिली एंड मेरे ख्याल से इन द होल विलेज ऑल्सो. पूरे गांव में भी सिर्फ वही बना पाती, क्योंकि मेरी आजी ने उनको वो रेसिपी जो ये दी थी. उसे अदरसम बोला जाता है, चावल के आटे से बनता है वो, और इट्स वेरी यमी. बट आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू हैव ट्राइड इट. आपने कभी सुना है अदरसम के बारे में?
13: हाँ, सुना है, खाया नहीं है.
3: कभी नहीं खाया?
13: देखा भी नहीं खाने की.
3: अच्छा,
13: तो
3: देखा भी नहीं है. ओके, या आई हैव ग्रोन अप ईटिंग इट एंड बहुत टेक्निकल तरीके से बनता है वो एक्चुअली में, क्योंकि चावल के आटे का मिठाई अगर आप कभी बनाओ, इट्स नॉट अ ईजी टास्क. उसे आप स्टीम नहीं कर रहे हो, उसे आप फ्राई कर रहे हो. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली राइट अमाउंट में, अगर आप चीजों को नहीं मिक्स कर रहे हो, वो तो हार्ड हो जाता है.
13: अच्छा.
3: एंड देन यू कांट ईट इट, इट्स जस्ट गोज टू वेस्ट. सो या अदरसम आई ईटन क्वाइट अ लॉट, आई हैव ग्रोन अप ईटिंग इट. तो आई वुड से दिस इज अ वेरी डिफरेंट मिठाई. एंड मैंने इसका कोई वर्जन अभी तक नहीं देखा है, बिकॉज आई हार्डली एवर सी पीपल मेकिंग इट दीज डेज. वो भी एक चीज है. जैसे कि मैंने कहा, इट वॉज पास्ड ऑन बाय माई ग्रैंड मदर टू माई मम. सो अभी वही जानती है, उन्होंने हम तीनों में से, हम तीनों बहनों में से, या इनफेक्ट हम चारों भाई बहनों में से किसी को नहीं पास किया. हाउएवर थोड़ा थोड़ा मेरा भाई जरूर जानता है कि उसको कैसे बनाते हैं, बिकॉज ही हैज हेल्प मम क्वाइट अ लॉट उसको शेप वगैरह करने में.
13: मतलब आप हेल्प नहीं करती थी?
3: नहीं, मैं खाती थी. बट या सो आई कैन से दैट्स अ मिठाई. और उसका कोई वर्जन अभी तक मैंने नहीं देखा है.
13: आई कैन मेक हलवा लिटिल बिट.
3: किससे, कैसा हलवा? अलग अलग हलवा बनता है ना. आटे का हलवा बनता है, सूजी का हलवा बनता है, और गाजर का हलवा बनता है, मूंग की दाल का हलवा बनता है.
13: हाँ, वो आटा और सूजी है, बाकी सब उतना एक...
3: जो मैंने अभी चारों मेंशन किया, मैंने वो चारों ट्राई किया हुआ है. लौकी का हलवा खाया है, बीटरूट का हलवा खाया है, और इज अनदर टाइप ऑफ हलवा जो बनता है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, कद्दू का हलवा. कद्दू का खीर खाया आपने?
13: नहीं.
3: कद्दू का खीर बनता है, कद्दू के गुलगुले बनते हैं, कद्दू का हलवा भी बनता है.
13: अच्छा.
3: या मैंने कद्दू का खीर खाया हुआ है, आई हैव ट्राइड दैट, इट्स यमी. कद्दू का गुलगुला खाया है, हलवे के बारे में सुना है, खाया नहीं है आज तक. सो वेरी यूनिक यू नो डिशेस, स्वीट्स के मामले का खाना इटसेल्फ जो भी है, चाहे आप कोई स्नैक ले लो, कोई मिठाई ले लो, कोई डिश ले लो, इतनी सारी वैरायटीज होती है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है. बट मिठाइयों के बारे में बातें करते हैं, दिल ऑटोमेटिक खुश हो जाता है ना.
13: जी बिल्कुल.
3: और फिर अभी तो त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, नवरात्र आने वाले, जिसके बाद दिवाली आएगी, फिर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ. बट कमाल की बात यह है कि जब भी ये मिठाइयों का सीजन, दिवाली का सीजन या फिर ऐसे त्योहारों का सीजन आता है, उस टाइम पर ना जाने क्यों मिठाई खाने का दिल नहीं करता. जब ये त्योहार खत्म हो जाते हैं, मिठाइयाँ खत्म हो जाती है, तभी दिल करता है कि अच्छा ये खा लो, वो खा लो, ये मिल जाए, वो मिल जाए. ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है. आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट या वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्वीट्स दिस मॉर्निंग फॉर अ वेरी स्पेशल रीजन, क्योंकि स्वीट्स जो कि अक्रॉस द फेस्टिवल्स, अक्रॉस द कम्युनिटीज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में अगर देखा जाए, ये हमारी पहचान बन चुकी है. एक और हमारी आइडेंटिटी भी है, और दूसरी और हमें एक दूसरे के कल्चर के साथ, ट्रेडिशंस के साथ कनेक्टेड भी रखती है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज स्वीट्स, जिसके बारे में आज हम व्हाट्स योर टेक टॉपिक में बातें कर रहे थे. बट राइट नाउ क्या बकते हो?
13: अच्छा, वो भी बाकी है ना.
3: हाँ भाई, वही तो होता है ना इस घंटे की शुरुआत में.
13: हाँ, बताइए.
3: अच्छा, मैं ही बताऊँ सब कुछ?
13: हाँ,
3: मतलब आप है कि किस लिए आप इस शो में, अगर मुझे ही सब कुछ बताना है?
13: कुछ करना नहीं होता तो आ जाता हूँ सुबह.
3: अच्छा,
13: नींद खुल जाती है.
3: अच्छा, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. तो आज की क्या बकते हो स्टोरी, आई बी ऑनेस्ट, मेरे पास नहीं है. I was not really prepared for it. और मैं आपको थोड़ी देर बाद अगर कुछ मिला तो बताऊंगी, अदरवाइज वी हैव टू स्किप इट, क्योंकि मैं खुद ही भूल गई थी कि क्या बकते हो आज. एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर इट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. सो वील मूव ऑन, एंड थोड़ी देर बाद व्हाट्स अप ऑकलैंड आपके लिए हम लेकर आएंगे. वील टॉक अबाउट इवेंट्स जो हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में हो रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे आपके साथ.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: So, हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है और कैसे आप इनका हिस्सा बन सकते हैं, इस पर अगर आपके साथ हम चर्चा करें. सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कल से शुरू हुआ है यहाँ सुपर सिटी ऑकलैंड में वेद प्रचार वीक, यानी मंडे 28 सितंबर से शुरू हुआ है और संडे 4 अक्टूबर तक 32 ग्लासगो पापाटोटो में ये होता रहेगा हर शाम 6:20 PM से. आप अलग अलग दिन किस किस समय पर क्या कुछ हो रहा है और कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, जानकारी के लिए इसका आप ज़रूर इसमें भाग लें और डिटेल्स जो है इवेंट आप हासिल कर सकते हैं. पर रहे इस साल का हाईलाइट जो होने वाला है इज द 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड.
4: उसके अलावा ये भी याद रखें कि बहुत ही ज़बरदस्त महिंद्रा एनजेड दिवाली 2026 ये इसी वीकेंड रहेगा, सैटरडे को मैनुकाओ वेलोड्रोम पार्क में, जहां पर दिन में 1 से रात 9 बजे तक आपके लिए सेलिब्रेशन का समय रहेगा. मोहम्मद सदीक एंड टीम लाइव फ्रॉम इंडिया, डीजे लकी आ रहे हैं इंडिया से, खाना पीना, बच्चों के लिए फन राइड्स और फायरवर्क्स फिनाले जो है ये आप एंजॉय कर सकेंगे. एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री, तो आप ज़रूर जाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं.
3: और साथ ही साथ आपको हम याद दिला रहे हैं अबाउट श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, और यहाँ पर कल यानी वेंसडे 30th ऑफ सितंबर तक आपके पास मौका है इसमें शामिल होने का. मतलब शुरुआत इसकी खैर ये हो रही है वेंसडे 30th ऑफ सितंबर से, और यहाँ पर श्री राम कथा जो है ये होगी पूज्य राजन जी द्वारा. ये 30th सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक रहेगा 7 PM to 9 PM, और इसमें आप जरूर भाग ले सकते हैं 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन जो है यहाँ पहुँचते हुए. और भी इवेंट्स आने वाले दिनों में आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे. बहुत सी जगह पर तरह तरह के जो सेलिब्रेशन है ये होते रहते हैं और इस पर डिटेल्स जो है ये आपको हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे. स्कूली छुट्टियाँ भी जारी हैं, तो इन स्कूली छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ कहाँ कहाँ पर आप जाकर क्या कुछ कर सकते हैं, किन चीज़ों का हिस्सा बन सकते हैं, ये डिटेल्स भी आपके साथ हम ज़रूर लेकर आएंगे आने वाले दिनों में. पर फिलहाल के लिए चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब बारी है कि आज आपके लिए लेकर आए कुछ और ज़रूरी डिटेल्स. इनफैक्ट अगर आप एक उबर ड्राइवर हैं तो वेरी शॉर्टली आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं. डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
5: ए देखो हम आ गए.
6: एटीज के रेट्रो गाने.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
2: तो मैंने कहा था कि अगर आप एक उबर ड्राइवर हैं, आपके लिए कुछ ज़रूरी डिटेल्स है जो हम लेकर आए हैं, और गौर से सुनिएगा. अगर आप एक उबर ड्राइवर हैं एंड यू ऑलरेडी हैव अ क्लेम विद नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज, तो अब ये फोर्ड मूव कर रहा है विद सिचुएशन जहां पर एक क्लेम्स मैनेजर जो है ये आपसे बातें करेंगे बहुत ही जल्द. इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड येट, तो इनटेक फो अब खुल चुका है, ना आप अपने एप्लीकेशन कर सकते हैं. बट प्लीज़ नोट कि नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज के जो फोन टीम है करंटली एट फुल कैपेसिटी है, मतलब वो उनके फोन लाइंस बहुत बिजी हैं, और इसका मतलब ये कि इवन इफ़ यू कॉल दे माइट नॉट बी एबल टू आंसर योर फोन. जिसका एक अच्छा सोल्यूशन रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो nyfservices.com पर आप जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना कर सकते हैं टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू.
3: और ऐसे और भी ज़रूरी जानकारियां जो हैं कि हम आपके लिए हम पर लेकर आते रहेंगे इस प्रोग्राम में. इनाम जीतने के कई लाजवाब मौके जो हैं ये भी ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आज आपके खातिर हैं. कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये भी आपके लिए होती हैं इस प्रोग्राम में. और इनमें अगर देखें तो आज थोड़ी देर बाद आपकी खातिर जो डेली राउंडअप है ये भी हम लेकर आएंगे. यूएफए नेशंस लीग के जो मैचेस खेले जा रहे थे उन पर भी अपडेट्स आपको जल्दी से दे देते हैं कि क्या रिज़ल्ट जो है ये हासिल किया है टीमों ने अलग अलग मैचेस में आज सुबह. और जो मैचेस खेले गए हैं बेल्जियम और फ्रांस के बीच आज जो मैच है ये खेला जा रहा है. अभी टीमें निलोल से बराबर हैं. इटली की जीत टर्की के खिलाफ 4-1 से हो रही है. जॉर्जिया नील, यूक्रेन नील, और साथ में नॉर्दर्न आयरलैंड और हंगरी भी निलोल से बराबर. बोस्निया हर्ज़ेगोविना की जीत रोमानिया के खिलाफ 4-2 से हो रही है, जबकि स्वीडन पोलैंड से 1-0 से आगे है. जो मैचेस पूरे हो चुके हैं उन पर आपको बताएं, आर्मेनिया की हार मॉन्टेनेग्रो के खिलाफ 3-2 से हुई, और लेटविया और साइप्रस निलोल से बराबर ठहरे.
0: Hollywood's most wanted.
4: Gundi khad gao. Ya seedha andar aao.
5: Main laau apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: दिया।
1: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
4: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
5: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
6: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
7: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
8: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
9: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, Intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuka. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuka.
12: What's going on?
13: तो चलिए देखते हैं हमारे आसपास क्या कुछ अपडेट्स जो है ये हमारे हाथ लगे व्हेन इट कम्स टू डेली राउंड अप। आज सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहते हैं, इट्स इन रिगार्ड्स विद द 83,000 न्यूजीलैंडर्स। कहा गया है कि अराउंड 83,000 न्यूजीलैंडर्स आर करंटली लिविंग विद डिमेंशिया एंड मोस्ट कंटिन्यू टू लिव विद इट इन देयर ओन होम्स। लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं न्यूजीलैंड में जिसे माना जाता है कि वो डिमेंशिया को माइंड में रख के डिज़ाइन नहीं किया गया है। फॉर समवन विद डिमेंशिया, समथिंग एज ऑर्डिनरी एज अ डार्क डोरमैट कैन लुक लाइक अ होल इन द फ्लोर, जबकि पैटर्न्ड कार्पेट्स जो होते हैं दे अपीयर अनइवन या फिर लाइक एन ऑब्स्टिकल। Researchers from the University of Auckland ne kaha hai ki kuch simple design changes can make homes safer and easier to navigate. Iska matlab ye hai ki using strong color contrast like black tap against a white basin or making light switches easier to spot, keeping pathways clear and removing confusing patterns from the floors. Ye kuch basic cheeze hain jo agar apne zehen mein rakhkar gharon ko design kiya jaye to people with dementia jo hai इनको इससे हेल्प हो सकती है। इवन मिरर्स कैन समटाइम्स कॉज कन्फ्यूजन, वाइल ओल्डर स्टाइल नॉब्स एंड कंट्रोल्स कैन एक्चुअली बी ईजियर टू यूज देन मॉडर्न टच स्क्रीन्स, ये माना जाता है। एंड द गुड न्यूज इज यू डोंट नेसेसरली नीड एन एक्सपेंसिव रेनोवेशन फॉर दिस। समटाइम्स सिंपल चीजें जैसे कि एक मैट रिमूव करना, लाइट स्विच चेंज करना या इम्पोर्टेंट फिक्स्चर को इजी बना देना कुड बी एन ऑप्शन, जिससे कि आपके घर में अगर किसी को डिमेंशिया है या कोई ऐसा जिनके बारे में आप जानते हैं जो एक घर में रहते हैं और उनको डिमेंशिया है, उनको ये चेंजेस जो है हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको पूरी की पूरी डिटेल चाहिए, RNZ पर एक पूरा आर्टिकल जो है ये पब्लिश किया गया है, दैट यू कैन डेफिनेटली गो एंड रीड।
14: इसके अलावा क्राइस्टचर्च में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान लेबर लीडर क्रिस हिपकिंस ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहले 100 दिनों के भीतर पे इक्विटी लॉ चेंजेस को रिवेस कर दिया जाएगा। हिपकिंस ने करंट गवर्नमेंट पर बिना किसी कंसल्टेशंस के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन के पे इक्विटी को रद्द करने का आरोप लगाया और केयर एंड सपोर्ट वर्कर्स को जल्द सेटलमेंट का वादा दिया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इलेक्शन पर जोर देते हुए उन्होंने लेबर की सोलर सेवर स्कीम, अप्रेंटिसशिप बूस्ट और स्टूडेंट लोन डेट वेवर जैसे मुख्य वादियों को जनता के सामने रखा है।
13: और और इसके अलावा एक और एक अपडेट जो सामने आया है, दिस इज समथिंग थोड़ा कंसर्निंग है एट द सेम टाइम. कहा गया है इन द मैकिन्ज़ी डिस्ट्रिक्ट कुछ ऐसे टूरिस्ट हैं हु अपेरेंटली आर अवॉइडिंग $1.50 यूजर पे टॉयलेट्स. एंड ऑफिशियल्स ने कहा है कि सिचुएशन हैड लेड टू सम रादर अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस. काउंसिल ने करेंटली एक सिचुएशन देखा है जहां पर 3 पे टू यूज पब्लिक टॉयलेट्स बट स्टाफ आर रिकमेंडिंग एक्सपेंडिंग द सिस्टम टू मोर लोकेशंस जैसे कि फेयरलाई, बर्किस पार्क्स, टेकापो एंड ट्विजल. और इसके साथ साथ जो मैकिन्ज़ी डिस्ट्रिक्ट के मेयर हैं उन्होंने कहा है कि द रीज़न इज सिंपल, टूरिस्ट नंबर्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं ऑन पब्लिक टॉयलेट्स जिसमें क्लीनर्स समटाइम्स हैव टू रिटर्न जस्ट हाफ एन आवर आफ्टर क्लीनिंग. और काउंसिल ने कहा कि दे हैव स्पेंट अराउंड $800,000 लास्ट ईयर ऑन टॉयलेट मेंटेनेंस, अबाउट 4% ऑफ इट्स टोटल रेट्स इनकम. लेकिन जो $1.50 चार्ज है हैज़ रिपोर्टेडली हैड सम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज. कुछ टूरिस्ट जो है उन्हें देखा गया है यूजिंग कैफेज जस्ट टू एक्सेस देयर टॉयलेट्स विदाउट बाइंग एनीथिंग, वाइल काउंसिल कॉन्ट्रैक्टर्स हैव इवन हैड टू क्लीन अप ह्यूमन वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड ब्लॉक्ड टॉयलेट्स. और ऐसे में ये भी कहा गया है कि द काउंसिल ऑल्सो वांट्स इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन ऑप्शंस एट सम फ्री टॉयलेट्स विद समर टूरिज्म अप्रोचिंग. तो जो बड़ा सवाल है कि या क्या लोग जो है $1.50 सेव करने के चक्कर में पब्लिक टॉयलेट्स का जो सिचुएशन है इसे और बद से बदतर करने वाले हैं.
14: माइग्रेशन देशों की एक रिपोर्ट आई है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने सिटीजन्स के क्रिमिनल कॉन्विक्शंस और पर्सनल डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करने के प्लान्स को फिलहाल रोक दिया है. इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के आइडेंटिटी मैनेजर मैट गिब्स के मुताबिक करंट लॉज के तहत विदेशी एजेंसीज को डोमेस्टिक पुलिस सिस्टम्स या कोर्ट रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की लीगल इजाजत नहीं है, इसलिए अप्रैल 2026 में इस एक्सप्लोरेटरी वर्क को रोकने पर सहमति हुई थी. एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स के तहत अभी सिर्फ इमिग्रेशन आइडेंटिटी मैनेजमेंट पर काम होता है और किसी सिटीजन का पर्सनल या बायोमेट्रिक डाटा शेयर नहीं किया जाता है.
13: तो ये थे आज के डेली राउंड अप, और आपके लिए और भी ऐसे अपडेट्स जो है हम बारी बारी लेकर आते रहेंगे. व्हाट एवर वी गेट इन आवर हैंड्स आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे. बट बिफोर वी मूव आपको ये भी बता मूव ऑन आपको ये भी हम बता दें कि यू नो नॉट जस्ट ऑन रेडियो लेकिन आप हमारे पॉडकास्ट के जरिए भी काफ़ी अपडेटेड जो है ये रह सकते हैं. जैसे अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रूसबे, यहाँ पर इलेक्शन स्पेशल एपिसोड जो है ये आप चेकआउट कर सकते हैं. नवतेज रंधावा जो है कैंपेन मैनेजर है फॉर द नेशनल पार्टी इन मनुरेवा एंड ऑटोहू, he actually joined Sandy and Roosbe for an open and wide-ranging conversation jahan par kuch issues ke bare mein unhone baatein ki hai that matter to New Zealanders today. Aur unfiltered ki recent episode mein, election special episode mein, they've discussed immigration policies and of course their impact on communities aur jo challenges face kiye jaate hain health केयर स्टाफ इन द्वारा, और जो प्रेशर जो है न्यूजीलैंड के फ्रंटलाइन हेल्थ सिस्टम पर फिलहाल फेस किया जा रहा है. देव ऑल्सो हैड अ चांस टू लुक अहेड एट व्हाट द फ्यूचर कुड ब्रिंग, जहां पर पॉलिसी चेंजेस से लेकर वर्कफोर्स चैलेंजेस तक इन्होंने डिस्कस किए हैं टू द इश्यूज अफेक्टिंग लोकल कम्युनिटीज. एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन जिसमें इमिग्रेशन, हेल्थ केयर, पॉलिटिक्स एंड द फ्यूचर ऑफ न्यूजीलैंड हैज बीन डिस्कस्ड. तो नवतेज रंधावा के साथ ये काफ़ी बातें हुई हैं, उनके परस्पेक्टिव पर भी ध्यान दिया गया है द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड. और अगर आपको ये इलेक्शन स्पेशल का फुल एपिसोड चाहिए तो आप 5599 पर ड्राइव लिखकर जरूर सेंड कर सकते हैं.
11: Let's go.
10: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें।
1: आज की पहली बात, कहते हैं कि शिक्षित मूर्ख सबसे खतरनाक होते हैं।
2: शिक्षित मूर्ख मतलब वो लोग जो पढ़े लिखे हों, लेकिन
1: educated fool is the most dangerous।
2: अच्छा,
1: दूसरी बात
2: जी,
1: दर्पण कब तक तोड़ते फिरोगे, मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरे पर है।
2: Can you explain please in detail?
1: कब तक आप आईना तोड़ोगे?
2: हाँ।
1: कि वहां दाग लगा हुआ है, आईने को फेंकोगे कब तक कि उसमें कोई धब्बा लगा हुआ है।
2: हाँ।
1: मान लो ना कि ये दाग चेहरे पर है,
2: अच्छा,
1: खुद पर है, खामियां खुद में है।
2: ओके, सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्लेम ऑन अदर्स, इस बात को समझ लो, जान लो, मान लो कि प्रॉब्लम आप में भी हो सकती है ना। इट्स अ गुड वे एक्चुअली, क्योंकि तभी आप खुद पर काम करोगे एंड प्रॉब्ली देन आप उन फ्लोज को हटा सकते हो उस पर काम करते हुए, इसे अपनी एक क्वालिटी जो ये बना सकते हैं आप। चले, इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाज़त, जाने की, जाने का समय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के साथ के लिए, और अब मुलाकात होगी आपसे कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।

0: $50,000 to four former interns. The Labour Inspectorate found they should have been classified as employees. A group of our Paralympic skiers are pleading for help to find their equipment. Police say it's believed to have fallen from the roof of a vehicle last Friday while travelling through Bulls in Manawatu or along part of State Highway 1. And overseas, the US has criticised the UK for releasing five men arrested near a military base on suspicion of terror offences on bail. President Trump says he wouldn't have done that and thinly suggested a connection to Iran.
1: Iran might be. Can you elaborate on that?
2: Well, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say it. But I would not have released them.
0: Iran denies any involvement. And in rugby news, with All Blacks Travel and Hospitality.com, a deal has been done that will give Fehi Finianga-Nofoa a chance to represent the All Blacks at next year's World Cup. The 24-year-old winger has extended his contract with New Zealand Rugby and the Hurricanes until 2027. He had signed for Newcastle for this year, but will now join the English club a season later.
3: Sports news.
4: Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: The highs of 16, overnight temperature of 9. Aaj ka forecast bataya ja raha hai. Kuch showers expected hai. Baad mein ye mausam theek ho jayega. It feels like 14 degrees, 7:24 par sunset bataya ja raha hai.
4: Non-stop Bollywood.
6: Jo bhi karte shiddat ke saath karte
4: hain. Hum playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
5: Eat better, live better.
3: My Time with Kashika.
5: Absolutely, eat better, live better. Barely शुरू हो गई मैं बोलना. अभी introduction हुआ नहीं. ऐसा हो जाता है ना जब excitement होना शुरू हो जाता है कि भाई देखो Tuesday का दिन आ गया ऐसे. और आप के साथ साथ जब जब मैं बात करती हूँ ना तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बोनस होता है, स्ट्रेस बस्टर होता है. तो डेफिनेटली मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर इसलिए होता होगा क्योंकि मुझे जो एक काम दिया गया है बताने के लिए कि आप अपने लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, आप कितने अपने लिए मायने रखते हैं, और आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है, यही आपको बता रहे हैं. और ये मेरा माई टाइम का जो समय होता है वो आपके माई टाइम के साथ जुड़ जाता है, जहाँ पे आप और मैं मिलकर इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि देर इज़ नथिंग लाइक बीइंग योर ओन सेल्फ, देर इज़ नथिंग लाइक गिविंग योर ओन सेल्फ सम टाइम. इज़न्ट दैट इम्पॉर्टेंट. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए माई टाइम लेकर मैं कशिका हाजिर हो जाती हूँ. 12 बजे तक आपका मेरे साथ बना रहेगा. वैसे आज आपका क्या प्लान है? मेरे पास एक्सपर्ट पैनल में आ रहे हैं नन अदर देन दिखते हैं हमारा कॉस्मेटिक से. अगर कोई आपके पास सवाल है तो बताइए. आई एम हैप्पी टू आस्क क्वेश्चंस विद द एक्सपर्ट्स ऑफ हमारा. लेकिन इसके पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना कल से मेरे दिमाग में गूंज रहा था, मैंने सोचा आपके लिए प्ले करूँ.
4: बचाओ क्या,

What a beautiful track and a big thank you to you, Rushila. आपकी तरफ से और आपके पूरे परिवार की तरफ से a very very big happy birthday dedication going out to Satyan Bhai. And yes, 5 tunes से हमने अपना करियर यहाँ पे हम FM में स्टार्ट किया था और आज देखिए आज उनका बर्थडे भी है. So very very happy birthday from the team of हम as well.

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो एक्सपर्ट अड्डा में आज मेरे साथ जुड़ गए हैं नन अदर देन सुजय फ्रॉम अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक। नीलू इज अवे ऑन अ ट्रेनिंग टू कैनेडा एंड व्हेन शी विल बी बैक शी विल बी जॉइनिंग अस। बट यस, अभी के लिए मेरे पास एक फड़कता हुआ सा क्वेश्चन आया है। सुजय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग सब लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हूं मैं तो,
1: एकदम बढ़िया। देखिए, एक छोटा सा शायद ब्रेक भी ले रहे हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, अवाना के 30 साल पूरे हुए हैं, राइट? और ऐसे में 30 साल की जो जर्नी आपकी जो गुजरी है, उसमें आपने बहुत सारे एडिशंस किए हैं, और अभी क्या खास चल रहा है कुछ आप बताइएगा इसके बारे में, और यू हैव समथिंग एल्स टू टॉक अबाउट?
2: नहीं, एक तो सर्टेनली यस, कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का बहुत प्यार रहा है, बहुत विश्वास रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मे बी जब 2006 या 2008 में पीपल यूज टू कम, उनके ग्रैंड डॉटर्स आ रही हैं, विच इज इन इटसेल्फ, विच इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज ह्यूज सपोर्ट बिलीफ कि हाँ, वहाँ काम अच्छा होता है, काम मोस्ट इम्पोर्टेंट सही होता है। और ये बिलीफ आज भी क्लाइंट्स अगर रखते हैं, पीपल कम बैक टू अस इवन आफ्टर 5 years 10 years, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब इसको कुछ भी मार्केटिंग, कोई कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी चीज है कि लोग अभी भी ट्रस्ट करते हैं, लोग अभी भी हमारे पास आते हैं। एंड मतलब मेरे ख्याल से इससे बेहतर हमको कुछ भी प्रसाद आप कह लीजिए या ब्लेसिंग कह लीजिए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है कि क्लाइंट आपको ट्रस्ट करें, आपके पास आए विदाउट मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ से अगर आपके पास आते, तो इससे बेहतर मार्केटिंग कुछ नहीं हो सकती पूरी जिंदगी में। दैट्स वन ऑफ इट,
1: राइट?
2: सर्टली। उसके बाद कुछ, बिकॉज पूरी दुनिया वेलनेस के तरफ जा रही है, तो वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम न्यू ट्रीटमेंट्स विच आर द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, जैसे कि हम अभी अभियंगा मसाज, विच इज अ फुल बॉडी 1 hour ऑयल बेस्ड मसाज, इट्स ऑन द प्राइसिंग इज 149, बट इट हैज बीन ड्रॉप्ड टू $69 ऑन अ सुपर स्पेशल, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। प्लस 30 years के उपलक्ष्य में वी आर हैविंग जो फेशियल रिजुवनेशन है विद पीको लेजर, वो 1:1 है, मतलब अगर आप एक बाय करते हैं तो यू कैन गेट अनदर वन फॉर फ्री। So that's the second special which we are giving, and the third special is glutathione infusion. अगर आप अपने again face को rejuvenate करना चाहते हैं, brighten करना चाहते हैं, lighten करना चाहते हैं, polish करना चाहते हैं, तो glutathione infusion आप कर सकते हैं with some kind of a needling, जिससे कि आप उसको और अंदर nutrients को ढकेल सकते हैं in your deep in your skin, जिससे कि आपको बहुत बेहतर results या rejuvenation आपको face पे आता है। तो ये तीन स्पेशल्स हैं हमारे पास, एंड पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट।
1: ओह यस, एब्सोल्युटली। तो भाई बहुत दर्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, एंड वंस नीलू रिटर्न्स फ्रॉम हर ट्रेनिंग व्हिच इज गॉन फॉर, वी विल बी बैक विद हर टू टॉक मोर एंड मोर ऑन दिस। बट ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक की जो क्लिनिक्स हैं, ये आपके लिए लोकेटेड हैं सिल्विया पार्क शॉपिंग मॉल में Level 1 पर, एंड ऑर्मिस्टन मॉल में भी। 0800-128-821 इज द मैजिक नंबर जिस पर आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। avana.co.nz की वेबसाइट पे जाएं, और ढेर सारे स्पेशल्स आपको इनकी 30th एनिवर्सरी की वजह से भी मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच, एंड वी शैल टॉक टू यू सून सुजय।
2: थैंक यू सो मच,
1: बाय।
0: माय टाइम विद कशिका,
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं।
4: Sanatan World Cup Sports in Cultural Incorporated brings you Valentine's Buffet Restaurant, Lal's Transport in Rams Group of Companies, 11th Sanatan World Cup 2026, hosted by NZ Sanatan Sports in Cultural Incorporated from September 30th. Auckland comes alive with soccer, netball, volleyball, and golf teams from New Zealand, Fiji, Australia, Canada, and America, competing across Bill McKinley Park and local venues. Unity through sport, culture, and community. Contact Tulman Chairperson Jiten Lal on 021-452-503.
5: Followed by nyfservices.com, professional visa services, and baitcaps.com.
4: Stay tuned to Hub, your official media partner.
5: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
7: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
8: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
9: Already got a quote for your bathroomware? But what about a second opinion? Email your cart or your list to Elite Bathroomware. Right now, take advantage of their massive spring sale and experienced staff. Quality reassurance, trending coloured tapware ranges, natural timber vanities, concrete freestanding baths, and everything else bathroomware. September only, spring bathroom sale in-store only. Or apply for VIP access online. Elite Bathroomware, market leaders in designer bathrooms. 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.
10: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydaar.co.nz.
11: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
12: Pick up a prepaid plan for peanuts with 2 degrees. Starting from just $8, our prepaid prices are nuts. Minimum $10 top-up applies. Plans auto-renew monthly if you have enough credit. Check 2degrees.com.

0: तो जब मैं ऑफिस शाउट आउट की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले अ वेरी वेरी बिग शाउट आउट गोइंग टू टीना फ्रॉम वगार किचन. आप माउंट रॉस्कल से समय मुझे सुन रही हैं और बढ़िया बढ़िया खाने भी बना रही हैं. आज पता नहीं क्या आपके डब्बा स्पेशल में है. यहाँ पे आप हार्ग्रीव्स में आ जाइए अपना डब्बा लेकर. जस्ट किडिंग बट थैंक यू फॉर योर मैसेज टीना. एंड आपने बताया कि आज आपके हस्बैंड का 60th बर्थडे है. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड जितनी भी खुशियां हैं आपके लिए. और अगला गाना जो है वो भी मैं आपके लिए अब प्ले करने वाली हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक है श्रेया घोषाल एंड रोमी की आवाज़ में. तो चलिए इस गाने को सुनते हैं. आप इंजॉय कीजिए.
1: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: By the way, हमारी वैसे कोई ब्रांच है नहीं, लेकिन कुछ लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो हमारी एक जो स्टेशन है, बहुत सारे ऐसे स्टेशन है जो अब ऑकलैंड के साथ साथ और न्यूजीलैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी सुनाई देने लग गए हैं. एंड सम ऑफ योर फेवरेट इंग्लिश स्टेशन आर नाउ हमिंग फ्रॉम देयर एज वेल. ओ, ये तो मैंने आपको खबर दे ही दी है, लेकिन इसी के साथ साथ एक खबर और देना चाहती हूँ. कुछ लोग जो है ना मैकेंजी डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक टॉयलेट्स में जाना ही नहीं चाहते, और क्या करते हैं, ये कैफ़े में जाते हैं टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने के लिए. रीज़न आप सोचोगे क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं, और टॉयलेट के आजू बाजू में भी ये जाकर यू नो वहाँ अपना काम करके आ जाते हैं. दे डू द बिजनेस एंड दे कम. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे पेड टॉयलेट्स हैं. अब ये पेड टू गो टॉयलेट्स जो होते हैं वो रेट पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा न्यूसेंस बन चुका है. तीन डिस्ट्रिक्ट जो है मैकेंजी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वहाँ पे 25 टॉयलेट्स आर देयर फॉर यूजर्स टू पे, बट द ओवरवेलमिंग प्रेशर जो आ रहा है फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो स्टाफ रिकमेंड करता है प्लीज़ मेक सम पेमेंट एंड रिक्वेस्ट यू टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डोनेशंस एज वेल. ना अब ये जो पेमेंट के टॉयलेट्स हैं दे आर इन फैली, बुकिस पास एंड थ्री साइट्स इन टिकापू, और मेनली जो है इन द मेन ब्लॉक ऑफ ट्वाइजल. ये एरियाज़ में अगर आप जा रहे हैं, छुट्टियों में जाएंगे, बहुत माइंडफुल रहिएगा कि यू हैव टू गो टू द टॉयलेट, देन यू बेटर इफ़ यू डोंट वांट टू पे गो टू द कैफ़े, गो टू योर होटल, एंड उसके बाद ही आप उन टॉयलेट्स को अवॉइड कर सकते हैं, वरना आप टॉयलेट अवॉइड ही नहीं कर सकते. वैसे जो पहला गाना अभी गुजरा है, इतना खूबसूरत सॉन्ग था, जहाँ पे हमें पता है नैन मटक का गाना, वामिका जो है एक्ट्रेस, ये अपना बर्थडे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं.

0: Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better और दृश्यम फिल्म आने वाली है. वैसे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ कट्स के लिए डिमांड किया गया है. देयर इज अ सरप्राइज जहाँ पे ये जो वन फिल्म देखी आपने कि नहीं, इट हैज़ पास्ड विदाउट अ सिंगल कट बाय सेंसर बोर्ड. या और अब ये पता चल रहा है कि दृश्यम द कंक्लूजन, ये इसके बारे में ये कहा जा रहा है, इट्स पास्ड विद अ 16+ UA बाय द CBFC. और एग्जामिनिंग कमिटी जो है, इन्होंने कहा कि दे डिडंट आस्क फॉर अ सिंगल कट या ऑडियो या विजुअल मॉडिफिकेशन. उस समय उनको लगा कि चलो ठीक है, लेकिन सेंसर ने जब हैंडओवर किया दृश्यम फिल्म ऑन 28th, विच वॉज यस्टरडे, लेंथ ऑफ द फिल्म इज 150 मिनट्स. इन अदर वर्ड्स द फिल्म रन टाइम इज 2 hours 30 minutes. ये इस फ्रेंचाइज में फिल्म जो बन रही है, एंड ऑफकोर्स दृश्यम 2 was 2 hours 22 minutes. लेकिन इस फिल्म में आप कंक्लूजन देख पाएंगे जो अराइव कर रही है ऑन अ डे 2nd of October. सो फिल्म तो अब बनती ही बनती है. ड्रीम का इंटरप्रिटेशन जो है वो अब चल रहा है, एंड साथ में 6 word की स्टोरी. अगर आप रेडी कर सकते हैं तो रेडी कर लीजिए अगले घंटे के लिए.
2: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
2: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
7: Everything's better fresh at New World North Island. Get chicken thighs, $7.99 per kilo, or Rocket's Law 350 gram, $3.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
10: James, this is a radio ad.
9: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: ड्रीम डायरी में कल आपके साथ काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए ऑन ऑफ एयर. फ़ोन किया, आप शायद थोड़ा बहुत एम्बेरस हो गए कि अगर भाई सेलिब्रिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम कि क्या हो गया. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप जैसे मैंने कहा था कि अगर इफ़ यू ड्रीमिंग अबाउट अ सेलिब्रिटी इन जनरल, आपके खुद के हिडन ट्रेट्स, आपकी एम्बिशंस और शायद डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन एंड सक्सेस सामने आता है. आपका माइंड जो होता है हमेशा एक वो फेमस पर्सन को देखता है, सिंबलाइज करते हैं, आप उनकी क्वालिटीज़ को एडमायर करते हैं और कैसे चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी जो है आप खुद जिए. ऐसा होता है एंड ऐसा मैंने कई लोगों से सुना भी है. तो कभी सपने में देख रहे हैं कि यू आर मीटिंग और यू आर जस्ट गोइंग अराउंड हैंगिंग अराउंड विद द स्टार. ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से आप उस कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पे वो सेलिब्रिटी ऑलरेडी है. आप एक वैलिडेशन चाहते हैं और हो सकता है एक आपका हिडन कुछ लोग होते हैं बॉलीवुड का, एक बताऊँ एक मेनिया क्या है. आप मुंबई जाएंगे ना, जैसे लाइक आई बीन इन मुंबई फॉर मैनी मैनी ईयर्स, एंड वहाँ पर राइट फ्रॉम वॉचमैन टू आपके घर में जो बाई आएगी काम करने के लिए, या आपके घर में कोई वड़ा वो ये पाव देने के लिए आएगा, या आपके वॉचमैन से लेके आपके सिक्योरिटी गार्ड से लेके आपके पड़ोसी कोई भी हो, किसी ना किसी का कोई ना कोई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के किसी ना किसी बंदे या बंदी से कनेक्शन ज़रूर निकल आता है. और फिर घर जब वो लौट के आते हैं, बात करने आते हैं, तो शुरू हो जाते हैं, अरे भाभी आपको पता है सोएंसो का सोएंसो हुआ. अच्छा ओके, मुझे तो नहीं पता, तुम्हें किसने बताया? अरे वो जो सब्जी वाला है ना. अरे भाई इन लोगों के पास बॉलीवुड इज़, मुंबई इज़ ब्रीदिंग इन एंड आउट ऑफ बॉलीवुड. बट ये सेलिब्रिटी से रिलेटेड मैंने आपसे बात तो कर ही ली थी, बट आपको बताना चाहती हूँ कि ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऊबर ड्राइवर हैं तो आप यू नो क्लेम करते हैं नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज में, और अब मूविंग फॉरवर्ड क्लेम्स मैनेजर जो हैं आपके बाद आपके टच में रहेंगे. आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो इनटेक 4 खुल चुका है, और ऐसे में नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज की फ़ोन टीम इस समय टोटली पैक्ड चल रही है, इसलिए उन्हें फ़ोन मत कीजिए. बेटर है आप ऑनलाइन अप्लाई करें फॉर इनटेक 4 nyfservices.com पर.
0: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4-NZPMI.
1: कम्युनिटी न्यूज़ में आपको बताना चाहती हूँ कि श्री राम मंदिर जो है वहाँ पर पूज्य राजन जी जो हैं ये कल से पधार रहे हैं, और 6 अक्टूबर तक 7 से 9 बजे इनका प्रवचन होगा, और उसके बाद महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाएगा.

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: What a beautiful track and thank you so much, आपने इस गाने की रिक्वेस्ट की है। मगर आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं, बट डजंट मैटर, आपका नंबर है 2123 एंड दिस सॉन्ग इज़ गोइंग आउट टू यू। यू आर इन्जॉइंग द सॉन्ग्स विच इज़ फैंटास्टिक सिक्स वर्ड स्टोरी। आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड है भाई, चलो कोई स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर बताओ। 5599 पे टेक्स्ट ज़रूर करो।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 16, overnight temperature of 10. आज का forecast बताया जा रहा है, feels like 14 degrees. कुछ बादल नजर आए हैं, ये दोपहर के बाद थोड़ा कम होते चले जाएंगे. It feels like 14 degrees and 7:24 पर sunset बताया गया है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning massa.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai.
2: My time with Kashika.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 11 तो बज ही चुके हैं. क्योरा, अगर आपने अभी मेरे साथ ट्यून इन किया है तो माय टाइम लेकर मैं आ जाती हूँ 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे. बिग थैंक यू टू कशिश फूड्स जिनके ओर से आपके लिए आ जाता है. बाय द वे, क्या आप वो रेसिपीज देख रहे हैं? क्या वो रेसिपीज़ आपकी फीड में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जो मैं बड़ी ईजीली आपके लिए रेडी करती हूँ? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जाकर पूरा दिन लग जाता है. वो 2-3 रेसिपीज़ हो पाती है एक दिन के अंदर, बट या बिट लॉट ऑफ एफर्ट्स गो इन प्लेस फॉर दैट. चलो, यहाँ तक तो मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद कुछ रेसिपीज़ हैं, कुछ नवरात्रि की और दिवाली की, उनकी तैयारी भी चल रही है. तो डेफिनेटली ट्यून्ड इन रहिएगा. अभी के लिए ट्यून्ड इन रहने के लिए आपको मैं कहने वाली हूँ कि ऐसा कई बार हो जाता है हमारे साथ कि हम जब सोने लग जाते हैं तो उस समय एक चीज़ जो होती है हमें वो परेशान करती है कि हमारी नींद पूरी नहीं होने लगती. अब जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमें क्या होता है? इरिटेशन होना शुरू हो जाता है. ओके, कुछ उसी के बारे में बातचीत करेंगे जस्ट इन अ बिट.
0: बचाओ क्या,

0: ईट बेटर लिव बेटर, बट डू यू स्लीप बेटर और नॉट? कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी, सरदर्द या कोई और बीमारी की वजह से आप हैवी हेड के साथ उठते हैं और आपको लगता है कि घर के आप विंडोज़ या घर के शीशे तोड़ डालें, अपना सिर फोड़ डालें या कुछ ऐसा, यू नो यू ट्राई, इट अनबेरेबल हेडेक होने लगता है. एंड यू नो व्हाई दिस हैपेंस? खास तौर पे जब आप सोए नहीं होते, रात को गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. एग्जैक्टली द सेम थिंग वॉज हैपनिंग टू मी. डे लाइट सेविंग, ओ माई गॉड, इट टुक इट्स टोल ऑन मी यस्टरडे. आई वॉज लाइक अ जॉम्बी. एक मीटिंग जो थी मैंने ऑनलाइन अटेंड की जहाँ मुझे पर्सनली अटेंड करनी थी, का कोई बात नहीं, चलो ऐसा हो जाता है. तो डेफिनेटली व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट कुछ ऑब्स्ट्रक्टेड नींद आपकी होती है. यू स्टॉप ब्रीदिंग मल्टीपल टाइम्स इन एन आवर, देन यू स्टार्ट यू नो थिंकिंग कि हो क्या रहा है क्या नहीं. तो ये जो मसल्स हैं हमारे थ्रोट के अंदर, दे आर रिलैक्स्ड अ लॉट ड्यूरिंग द नाइट टाइम. तो उससे क्या होता है कि आपके एयरवेज कट होने लग जाती हैं और वो कट ऑफ होने लग जाती है, एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग एग्जॉस्टेड. आपकी बॉडी जो फाइट करती है एक नाइट का बैटल, आपको पता भी नहीं होता उसके बारे में. जैसे कि आपको पता है, आपके पार्टनर कहते हैं आप तुम बहुत ज़्यादा स्नोर करते हो, क्या करते हो, ये हेडेक, कॉन्स्टेंट फॉगीनेस आपके माइंड में रहने लगती है. स्कैरी पार्ट इज आपका ब्लड प्रेशर उसकी वजह से हाई होने लग जाता है, मूड जो है और डाकर होने लग जाता है. डॉक्टर कहते हैं ये एक टिपिकल स्लीप एमिया हो सकता है जो आपकी रात को स्पॉइल कर सकता है. अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स जो है उन्होंने हेल्प ही नहीं किया होता. दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट शुड यू डू व्हेन योर हेड इज इन अ प्रॉपर पोजिशन या सपोर्ट. आपके एयरवे जो है वो कोलैप्स नहीं होती है, और ऐसे में आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट सही होना चाहिए. आपकी कई बार ब्रीदिंग भी रुक जाती है, चोक होने लग जाते हैं. आपका हेड का पोजिशन, जो नेक का पोजिशन है व्हाइल यू स्लीप, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरह से यू डोंट रियलाइज कि ये पिलो जो है, ये जो तकिया होता है, ये कितना बड़ा रोल अदा करता है. आप एक स्लीप ऐप की मशीन जो होती है आप वो लगाते, समथिंग लाइक अ वैक्यूम क्लीनर लगता है, यू फेस के ऊपर लगा लिया, अलग अलग करके आवाज़ आने लग जाती है. कभी चिन पे स्ट्रैप्स अटक जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है. एवर चेंजिंग पोजिशंस आप पिलो में जो लेते हैं, और पिलो की शेप जो है वो लूज होनी शुरू हो जाती है. फिर आपका एक स्टिफ नेक हो जाता है, आर्म्स नम होने लग जाते हैं, और काफ़ी टाइम लग जाता है आपको सोचते हुए कि क्या करें क्या करें क्या करें. एक बात बताओ, एक सिंपल सोल्यूशन जो था वो होता है एक पिलो. एक पर्टिकुलर टाइप के पिलो होते हैं जो एर्गोनॉमिक डिज़ाइंस के यूनिक पिलोस कहा जाता है इनको. ये रेगुलर पिलोस जैसे नहीं होते हैं, इसमें सपोर्ट विंग्स होते हैं जहाँ पे आपके आर्म को स्ट्रेच करने के लिए उसी शेप में वो पिलोस आपको मिलने लग जाते हैं. एयरवे आपकी ओपन होने लग जाती है पहली रात में ही. अगर आपने इस तरह का पिलो इस्तेमाल किया, आप नोट करेंगे. अच्छा, हाउ डज इट लुक लाइक? यू नो व्हेन बेबीज आर बॉर्न तो उनकी पिलोज में एक हॉलो होता है ना. ये पिलो में भी इतना बड़ा हॉलो नहीं है, ताकि बेबी के तो हेड को फॉर्मेशन देना होता है ना, लेकिन इसमें हल्का सा आपको एक छोटा सा होल होता है. एंड दिस इज़ व्हाट हेल्प्स, दैट ब्रीथिंग फोम होता है जो आपके स्पाइन के अलाइनमेंट में हेल्प करता है. ट्राई कीजिए कि अगर आपके पास इस तरह का पिलो अगर आपको मिल जाए, तो डेफिनेटली विद इन अ मंथ्स टाइम यू विल नोटिस द चेंज इन दैट, एंड यू विल रियलाइज कि हाँ, आई हैम गेटिंग अ बेटर स्लीप, एंड आई थिंक दीज पिलोज विल डेफिनेटली हेल्प यू. रेवोल्यूशनरी शोल्डर आर्च भी होता है इनमें, एडवांस्ड नेक सपोर्ट भी होता है इनमें, इंटेलिजेंट जॉ लाइन अलाइनमेंट भी ये कर लेते हैं. आर्म सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था. तो ये इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं मुझे बहुत इंप्रेस कर रही हैं. बट इस तरह के पिलो अगर आपको लगता है कहीं आपको ये पिलो मिलने चाहिए, मिल जाए, तो प्लीज़ नो ब्रेनर समझ के मुझे भी कॉल कर लीजिएगा.
1: Drive show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.
5: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
6: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
7: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
6: इसीलिए एनजेड पीएमआई से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
8: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही एनजेड पीएमआई के पॉल से बात कीजिए एनजेड पीएमआई टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZ PMI
9: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
10: Everything's better fresh at New World North Island. Get chicken thighs, $7.99 per kilo, or Rocket's Law 350 gram, $3.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
11: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
12: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
13: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six-word story.
0: Six-word story, yes, definitely, मेरे पास आ चुकी हैं, and I'm very sure that आपको भी बहुत in माफ कीजिएगा interesting लगेगा. तो लिखा तो बहुत मुझे sarcastic लग रहा है, but it's fine. He died waiting for more likes. ऐसा होता है, I know ऐसा होता है कि he died waiting for more likes. बहुत लोग होते हैं जो wait करते हैं कि क्या है. The notifications stopped, the anxiety started. ऐसा होता है, notifications बंद होने लगते हैं, आपको लगता है oh my god ये क्या हो रहा है. I can only say one thing. Fake profile, real tears, hidden pain. Fake profile, real tears, hidden pain. Okay, thank you so much. Jitne logon ne bhi abhi bhi message kiya hai aur text bhi kiya hai. It's really nice to see that how you guys take so much of interest in all these kind of things. By the way, aapko bata deti hu ki Navtej Randhawa jo hai, ye campaign manager hai for National Party Manoriva and Otahuhu. Ye Sandy aur Rusbe ko join karne wale hai. And inka jo ek immigration policies aur unke impact ke upar kya kya baate karne wale hai, jo ye jana chahte hai, pura episode aap sun sakte hai, dekh sakte hai. And 5599 pe text bhi aap kar sakte hai.
13: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

बिग थैंक यू टू यू. आप सुन रही थी एंड आपने कहा हाय काशिका जी, आई वॉज लिसनिंग टू यू ऑन द रेडियो जस्ट नाउ. आई हैव ऑर्डर्ड दिस पिलो फॉर माई सेल्फ लास्ट वीक. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. रिगी, मुझे इस पिलो के बारे में डेफिनेटली पता करना है कि कौन सा पिलो है. तो आपने लिख के भेजा है, लिंक भेजा है nextbestthing.co products/products/nextbestthing orthopedic pillow. Okay, if this is an orthopedic pillow, if it really works, Riggy, you are my guinea pig. I wouldn't want to use the word pig, but you're my, I'm going to sample this on you, okay? And if this works well, I am in for it. तो हम सब listeners तुमसे बात करेंगे पूछने के लिए कि तुमने ये pillow के साथ तुम्हें नींद आई कि नहीं आई. चलो इसी note पर आपके लिए गाना.

0: Nightline with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: बात तो अद्भुत है, क्योंकि ऐसा है कि न्यूजीलैंड में कभी कभी ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक ऑकलैंड के आदमी को चार्ज कर लिया गया, इलेक्शन होर्डिंग्स साउथ ऑकलैंड से हटा दिए। वाओ मैन, दैट इज समथिंग। लेकिन स्टैट्स न्यूजीलैंड ने बताया कि उन्होंने डिस्कवर किया कुछ प्रोसेसिंग में 3 स्टैटिस्टिकल रिलीजेज जो 2025 की थी उसमें एरर आया है, विच विल इफेक्ट द हाउस होल्ड इनकम एंड लिविंग सर्वे, HILS उसको कहते हैं, जो एक एंड हुआ था जून 2025 में उसका सर्वे। एजेंसी सेड दैट शायद उनको फ्लो ऑन इफेक्ट्स की वजह से इनकम बेस्ड स्टैटिस्टिक्स में कहीं पे मिस्टेक हो गई है। उससे क्या हुआ है कि ये इम्पैक्ट हुआ और ये एक कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड किया गया, चाइल्ड पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स, हाउस होल्ड इनकम एंड हाउसिंग कॉस्ट स्टैटिस्टिक्स और LGBT प्लस पॉपुलेशन ऑफ आउटीरोआ न्यूजीलैंड एंड ऑफ 2025। अब ये उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है वहाँ के GM स्टैटिस्टिकल डिलीवरी सोसाइटी सोशल एनवायरनमेंट, उन्होंने बताया कि दे कुड बी सम एरर्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड वी आर वर्किंग थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग इट, और हमारी कोशिश है कि दिस इज़ अ लेसन लर्न और हम रिस्क जो है रिड्यूस करना चाहते हैं ऑफ ऑल दिस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अप्रिशिएट तो करा कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अपने एरर को तो माना।
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
1: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for Nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
3: हाँ, अच्छा
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: Hey you with the ears, your skinny phone plan now has rewards. So, or you're scrolling, tapping,
7: babe, wake up, look at this meme.
6: Ha-ha reacts and thumbs up from Dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 Everyday Rewards points. Skinny and Everyday Rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the Skinny.
8: Happy, happy, happy, oh.
9: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat and this seat. And that's it.
10: James, this is a radio ad.
9: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more. So let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
11: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
12: Rescue me, recycle me.
13: रेस्क्यू मेरी साइकिल में, ऑफकोर्स मेरा यहाँ पे प्यार वाला वार्तालाप रिगी के साथ चल रहा है। एंड आपने बोला कि श्योरली आई डोंट माइंड यू माइंड बीइंग द गिनी पिग, बट सॉरी आई शुडंट हैव यूज दैट वर्ड, बट थैंक यू रिगी, यू आर सच अ डार्लिंग एंड सच अ स्वीट हार्ट। रेस्क्यू मी रिसाइकिल मी मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, आपका कॉल आया था और आपने कहा यू नो व्हाट, आपके कहने पे हमने अपने पिज्ज़ा के बॉक्सेस को रिसाइकिल किया। अरे भाई, वो ग्रीसी होते हैं, ये क्लीन कार्डबोर्ड को रिसाइकिल कर सकते हैं। ग्रीस, ऑयल, फूड जिसमें खाना लगा हुआ होता है उसमें, उसको एक्चुअली क्या करते हैं, उसको पानी में सोक किया जाता है, उसका कंटेमिनेशन निकाला जाता है, देन द पल्पिंग प्रोसेस स्टार्ट्स। सो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, डबल श्योर, डबल चेक एवरीथिंग।
11: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI।
13: याद रहे कि इस सैटरडे के दिन 3 तारीख को 1 से 9 बजे तक फ्री एंट्री है। पूछो कहाँ, मैंने कहा वेलोड्रोम पार्क में दिवाली मनाई जा रही है, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, जहाँ मोहम्मद सादिक की टीम आने वाली है लाइव परफॉर्म करने के लिए। डीजे होंगे, खाने पीने के स्टॉल्स होंगे, फन राइड्स होंगे और फायरवर्क्स विल बी एट द फिनाले।

0: 800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: तो मेरे पास कॉल आया सपना आपका और आपने बताया कि आप अपने जो ये जो कैंडल्स मिलती हैं ना कैंडल्स की बॉटल्स बड़ी खूबसूरत होती हैं और आपने क्या किया आपने इन कैंडल्स की जो बॉटल्स हैं या जार्स मिलते हैं इनको आपने रीयूज़ किया मोटे होते हैं ना ये बहुत अच्छे रहते हैं आई एम विद यू टोटली तो आपने बताया कि आपने पहले इनको अच्छी तरह फ्रीज़र में रखा उसके बाद उसमें से पूरा का पूरा जो वैक्स था वो निकल गया और फिर आपने इसको वॉश करके अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल किया और अब आपकी जो डॉटर है She is actually using them for jewelry के रखने के लिए बहुत beautiful होते हैं ये boxes. Thank you. I love that idea. मैं ये घर में यही सोचती हूँ इतनी सुंदर सुंदर candles की bottles को मैं ऐसे फेंकना पड़ता है But this can turn out to be nice. Freezer में रख दो उसका wax automatically निकल जाएगा फिर गर्म पानी से उसको wash कर लो चलिए सपना तो ये अगला गाना है आपका अपना लीजिए enjoy कीजिए और shine in the glory. This is Kashika signing off from the Hum Studio saying ke kijiye sikar Kashika ka namaskar. Aaj ka din kehlata hai Mangalwar. Meri mulaqat aap se hogi kal din kehlaega Humvar. Apna Budhwar yaar. All right, look after yourselves. I'm leaving now. Ketan is coming up next. Bye.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: दिल ने ये मान लिया है तुम ही हो मेरी मंजिल. न चाहते हुए भी तुमसे उम्मीदें रखता है दिल.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

Hello, Namaste, Sasrikaal, Assalamu Alaikum, Bulabka. Swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein, jiska naam hai The Lunchbox Show. The Lunchbox Show dekh ke, sun ke, itna yummy craving hone lag jati kisi na kisi cheezon ki. Aap lunch mein kya kar rahe hain aaj? Bataiye aap 5599 pe. आज वैसे बात करेंगे, आज मौका देंगे कॉल करने का. मैसेज कम भेजिएगा आज, आज आप कॉल करिए, आज आप मुझसे बात करेंगे. वेल यस, होम सिक के लिए आप मुझे भेजिए 5599 पे कुछ ऐसी चीजें जो आप डेफिनेटली मिस करते हैं यहाँ पे बीइंग इन ऑकलैंड और मे बी वेयर यू आर लिसनिंग टू मी, चाहे यू नो आउट ऑफ ऑकलैंड, साउथ आइलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया से अगर मुझे सुन रहे हो तो यस मेक श्योर आप मुझे कॉल करें 0800 004 866 पे. मेरे को पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आई हैव नो आइडिया, बट डेफिनेटली पीपल हु आर लिसनिंग टू मी एंड इफ यू आर अनेबल टू कॉल मी ऑन दिस नंबर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया देन यू कैन मैसेज मी, ड्रॉप द मैसेज ओवर हियर ऑन 5599. बट जो हमारे देश रहते हैं यहाँ पे यानी कि न्यूजीलैंड में, कॉल करना यार होम सिक रेमेडीज के लिए इन दोनों के गाने में. पहला गाना वो है जो सचमुच सारे लौंडे लोगों का दुख है, दे वॉन्ट टू गो आउट प्रपोज अ गर्ल बट उन्हें फ्रेंड जोन बना दिया जाता है. कितना रिलेटेबल है ये वर्ड, आई एम प्रीटी श्योर सबके साथ हुआ होगा एक ना एक दिन, एक ना एक बार तो हुआ ही होगा, लाइक यू नो. बट एटलीस्ट दैट इज बेटर देन भाई, फ्रेंड जोन तो चलो बढ़िया है, भाई वाला तो और भी घटिया है.

What a song, what a song, what a song. यार ये मेरा फेवरेट गाना यार, honestly, इतना बढ़िया. और मेरे ख्याल से जितना मैंने उस टाइम पे गाने सुने थे उसमें मेरे हिसाब से पहला मैशअप सॉन्ग था, लाइक पहला फ्यूजन सॉन्ग था. एक से बढ़कर एक गाने थे यार, मतलब एक से बढ़कर एक गाने का इन्होंने फ्यूजन बनाया. बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा. Well, yes, Homesick Remedies. Yeah, इतना खो गया था मैं ये गाना गाने के साथ ही गुनगुना भी रहा था और इतनी मुर्खियाँ हैं. एंड एक्चुअली आई वुड से कि मेरी पर्सनली ऑब्वियसली सोनू निगम सर के खैर ज़्यादा दिन बचे नहीं उनको आने में, बट येस सिर्फ मेरे ख्याल से 4 दिन ही बचे हुए हैं. बट येस वो आ रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म करने, बट ये गाना है मेरे बहुत ही करीब है. और भी है वैसे गाने तो बहुत ज़्यादा हैं, कल हो ना हो है, उसके बाद बहुत से अमेजिंग एक से बढ़कर एक गाने. But this is one of the song. मतलब ये मेरे को गा के you know practice करके and then I feel like you know yes yes I can nail it. Because इतना tough गाना है, इतनी मुर्खियाँ हैं इसमें, इतने up and down low high notes हैं. And then of course feel को बरकरार रखना, पुराने गाने को बिल्कुल भी insult ना करवाना, ये बहुत ही ज़्यादा important है. But yes, Homesick Remedies, आप मुझे call करिए 0800-048-66 पे, यहाँ पे बात करते हैं. And share with me something which you would like to share. कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने मिस किए हो. एक मैसेज आया वो तो मैं पढ़ूंगा ही, बट अगर आपका कॉल आएगा तो वुड बी सो ग्रेट यार. काफ़ी टाइम हो गया बात नहीं हुई है किसी से. चलिए कॉल आता तब तक ये मैसेज तो पढ़ लेते हैं. मोहित भाई का, मोहित भाई ने मैसेज भेजा है. खेरा केतन, लास्ट नाइट आई हैड एन सॉरी ये मैं कल ही का पढ़ रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से कल का मैसेज है ये. सो आई थिंक आई जस्ट नीड टू रिफ्रेश, लेट मी जस्ट रिफ्रेश द थिंग. And yes, before Kashika was here and then Kashika ji ke saath aapne My Time with Kashika suna hai. Amazing show, amazing baatein bhi karti hain wo. And yes, now I'm just waiting for this refreshment and there you go, refresh ho chuka hai. Mohit ne actually Sahil ka ye message hai, wo kehte hain last night I had a huge craving. Sabko craving hi ho rahi kya bhai, kuch aur nahi. Jokes apart, इन्होंने भी कहा है कि लास्ट नाइट आई हैड अ ह्यूज क्रेविंग ऑफ फॉर अ क्रिस्पी मसाला डोसा, सो आई ऑर्डर $20 टेक अवे फ्रॉम द लोकल रेस्टोरेंट. भाई $20 में कहाँ मिल रहा है, मेरे को ही बताओ यार. मैं मुझे भी बहुत पसंद है, बट प्लीज़ हाँ मुझे बताना. बाय द टाइम आई गॉट होम एंड ओपन द कंटेनर इट हैड टर्न इनटू अ लिम्प सॉगी वेट पैनकेक रैप्ड इन टिन फॉइल. And the chutneys were completely watery and cold. Paying $20 to chew through a cold rubbery roll in my Auckland kitchen broke my heart. Well, pehli baat to ye mera ye sawal hai bhai, $20 mein kahan mil raha hai? I would love to try yaar, agar ye $20 mein agar kahin pe dosa mil raha hai to I would love to go and I would love to try over there. But I feel so sorry bro. ऑनेस्टली आपने, बट मेरे हिसाब से पता है क्या है, ये कुछ कुछ चीज़ें होती खानों में जो एक्चुअली यू शुडन्ट बी पैकिंग एंड टेकिंग इट अवे. आई मीन यू शुड बी ईटिंग एट द सेम प्लेस जब बन के आता है, बिकॉज ऑब्वियसली गर्म है अंदर है और इतने थिन लेयर के होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो घर जाने के बाद यू विल फील द सेम टेस्ट और वो है. तो मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि इसमें उनकी गलती नहीं है. It is more about that आपने जो decision लिया था to take away and eat at home, वो मेरे को लगता है गलत decision होगा at this point. Because डोसा मेरे को लगता है कि डोसा है, इडली है, and there are few more dishes जो momos ये पैक करके घर ला के फिर खाने वाली चीज़ें नहीं है. इनफैक्ट पिज्ज़ा एज वेल, पिज्ज़ा भी जब गर्म गर्म आता है वो जो टेस्ट आता है, हाँ वो बात अलग है कि मुझे ठंडे भी पसंद है. लाइक यू नो वंस द नेक्स्ट डे कुछ बच जाता है मेन दिन, तो नेक्स्ट डे मैं ठंडा भी खाता हूँ, वो भी मुझे अमेजिंग लगता है. बट वो थोड़ी सिचुएशन अलग है, वो पर्सनल चॉइसेस पे. बट यस आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, ट्राई एट द सेम प्लेस, लाइक जैसे ही आता है यू जस्ट हैव इट एट द सेम टाइम, तो मज़ा आएगा. हाँ बट यस सो सॉरी ब्रो, फील सॉरी फॉर यू, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ट्राई करिए और फिर मुझे बताना कि डिफरेंस सही में आपको लगा है या नहीं लगा. राइट वेल यस, फोन करते रहिए आप. फोन तो ऐसा किसी का आया नहीं है, बट थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस मैसेज साहिल भाई. नेक्स्ट आर्टिकल के लिए, नेक्स्ट सेगमेंट के लिए हम आपको फिर से मौका देंगे, वहां पे आप मुझे कॉल करिएगा. एंड लेट्स टॉक यार, लेट्स टॉक, आज तो बात करके ही रहूंगा. लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का. 80s के रेट्रो गाने.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
2: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
3: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
4: हाँ. अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
7: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydaar.co.nz.
8: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
9: Non-stop Bollywood.
10: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
9: हम playing Bollywood's biggest hits.
11: Lunchbox with Ketan.
12: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
11: हम office shout out.
13: ऑफिस शाउट आउट के सेगमेंट में आपका स्वागत है. आप मुझे भेज सकते हैं ऑफिस शाउट आउट के मैसेजेस, यानी कि आप एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हैं, यानी कि आप घर पे खा रहे हैं या वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, और क्या खा रहे हैं या क्या खाने वाले हैं, ये मुझे आप भेज दीजिए 5599 पे, सो दैट यस वी टॉक ओवर हियर. तब तक के लिए एक अनाउंसमेंट देता हूँ कुछ कम्युनिटी न्यूज़ के बारे में. सो यस ऑकलैंड, आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया दिवाली सेलिब्रेशन आने वाली है. आप सब रेडी हो जाइए. महिंद्रा न्यूजीलैंड दिवाली 2026 मनुकाओ वेलोड्रोम पार्क में मोहम्मद सदीक एंड टीम आ रही है यहाँ पे लाइव फ्रॉम इंडिया. डीजे लकी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया. काफी डिलीशियस फूड मिलने वाला है. फन राइड्स फॉर द किड्स एंड स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स फिनाले मनुकाओ वेलोड्रोम पार्क में होने वाला है 3 अक्टूबर को, यानी कि बहुत ही कम टाइम बचा है. इस आने वाले सैटरडे के दिन आप ये एंजॉय कर सकते हैं. दिन के 1 बजे से शाम के 9 बजे तक. शाम क्या, रात ही होगी वो तो यार, रात तक ये है. एंट्री कंप्लीटली फ्री है. वेल यस, ये इवेंट इन एसोसिएशन विद NZI कम्युनिटी ट्रस्ट एंड AMI. ब्रिंग द होल फैमिली एंड सेलिब्रेट दिवाली विद देम. उसके अलावा वेद प्रचार वीक भी होने जा रहा है 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, यानी कि कल से शुरू हो चुका है. 32 ग्लासगो एवेन्यू पापा टोटो में शाम के 6:20 के बाद. द हाईलाइट ऑफ दिस ईयर प्रोग्राम विल बी द 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड. उसके बाद श्री राम मंदिर यानी कि 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में आप पहुंचिए फॉर श्री राम कथा, जो कि किया जाएगा उपस्थिति बाय पूज्य राजन जी. 30th सितंबर यानी कि कल से शुरू होने वाला है, 6 अक्टूबर तक चलने वाला है. शाम के 7 से रात के 9 बजे के बीच महाप्रसाद विल बी सर्व्ड एज वेल. एंड देयर यू गो, आ चुके हैं मैसेज. तो ये रही है कम्युनिटी इवेंट्स के बारे में जो आप जा सकते हैं. वैसे एक का मैसेज आया रिगार्डिंग डोसा, उन्होंने बोला है एक शॉप का नाम लिया है. ओके, श्री रेस्टोरेंट मनुकाओ, यू विल गेट अमेजिंग डोसा अंडर $20. ओके यार, मेरा तो फेवरेट ऑब्वियसली, मैं राजस्थानी हूँ तो दे आर इवन फेमस फॉर राजस्थानी डिश एज वेल. सो आई वुड लव टू गो देयर. एक का मैसेज है, टू पीस क्वार्टर पैक अप साइज टू लार्ज विद कोक फ्रॉम KFC. सही है यार, मैं कभी कभी ट्राई कर लेता हूँ, यू नो, व्हेन आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग एल्स. बहुत ही सही दाम पे मिल जाता है, लाइक यू नो, एक तो लंच बॉक्स में मिलता है वहाँ पे. ऑफ कोर्स उन्होंने काफ़ी इंस्पायर्ड हुए हैं मेरे शो से. उन्होंने भी अपना लंच बॉक्स निकाला था, बट ऑब्वियसली वो खिलाते हैं और मैं यहाँ पे खाते खाते एंटरटेन करता हूँ. एनीवेज, ये मैसेज आए हैं और भी कुछ, वो भी पढ़ लेता हूँ. नितिन भाई ने भेजा है, वो कह रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, आई मेड अ क्विक एग फ्राइड राइस फॉर लंच. और उनका फेवरेट कुजीन है चाइनीज. चाइनीज का सबसे क्या होता है, लाइक पॉपुलर डिश? गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं डोमिनियन रोड पे गया हूँ काफ़ी बार, वहाँ पे मैंने आई थिंक डम्पलिन इज इट द चाइनीज डिश? नहीं, लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था. सना, उन्होंने भी मैसेज किया है, वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, आई पिक्ड अप अ फलाफल रैप फॉर लंच, दैट इज सो कूल. एंड आखिरी मैसेज है अरविंद भाई का. अरविंद कहते हैं, ऑन साइट टुडे माय मॉम पैक्ड चिकन करी एंड रोटी फॉर मी, दैट इज सो कूल. मैंने आज पोहे खाए हैं, पोहे. जी हाँ, मेरी माता जी ने भी मेरे लिए टिफिन पैक किया है, पोहे, और ऊपर से हमारे जो उदयपुर की फेमस जो नमकीन है वो हमने, मतलब वो मम्मी लेके आई थी, आप मानोगे नहीं, चार पैकेट लेके, चार में से लिटरली मेरा इतना दिल जल रहा है, बिकॉज लिटरली नॉट इवन 25% लेफ्ट आउट ऑफ, लाइक क्योंकि तीन खत्म हो चुके ऑलरेडी और एक ही पैकेट बचा है, उसका भी सिर्फ 25% नमकीन बचा है. तो मैंने तो सीधा सा बोल दिया, 25% है, कोई हाथ नहीं लगाएगा आप, क्योंकि खुशबू को ठीक है, वो ऑब्वियसली वहाँ से नहीं है, तो शी इज़ नॉट वेरी वेरी मच इनटू कि भाई मेरे को चाहिए वैसा नहीं, बट मेरे लिए नमकीन इज़ लाइक लाइफ, जो हम बनाते थे, क्योंकि वी ऑलवेज यूज टू ऑर्डर, और ये ऑर्डर हम वहीं से करते थे जो ये बनाता था खुद घर पे. सेव, दाने, दालमोट और मूंगफली, अमेजिंग टेस्ट, स्पाइसी है, और इनफैक्ट जितने भी विजिटर्स हैं मेरे घर पे उनको भी मैंने खिलाया, एंड इवन दे सेड लाइक या सही में यार बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है.
9: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
4: Get the bold new flavors of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
0: Lunchbox with Keithan.
5: Aisa bajaunga na ki tere kaano mein roz meri aawaz goonjegi.
6: Chutney shots.
7: Chutney shot ke segment mein aapka swagat hai. Yahan pe hum padhenge news. ये वाली फटाफट जो भी लेटेस्ट रही है। लेटेस्ट से याद आया, वुलवर्थ न्यूजीलैंड अपना कस्टमर केयर ऑपरेशन सिडनी शिफ्ट करने जा रहा है, जिससे अराउंड 130 न्यूजीलैंड जॉब्स अफेक्ट हो सकती है। तो अगर आप वहां पे काम करते हैं, सो दिस इज माइट गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल न्यूज फॉर यू एज वेल। स्टाफ और यूनियन के साथ कंसल्टेशन के बाद कंपनी ने प्लान को प्रोसीड करने का डिसीजन लिया है। वुलवर्थ का कहना है कि मूव का पर्पस ऑपरेशन सिंप्लीफाई करना, डुप्लीकेट कॉस्ट हटाना और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करना। कंपनी अफेक्टेड एम्प्लॉयज को न्यूजीलैंड बिजनेस में रीडिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करेगी, जो कि अच्छी बात है, विच इज ग्रेट। बट स्टिल आई वुड से कि आप थोड़ा आंखें और कान खोले रखें। वर्कर्स फर्स्ट यूनियन ने डिसीजन भी लिया है और उन्होंने इस डिसीजन पर क्रिटिसिज्म भी की है और कहा कि इससे अराउंड 130 लोगों की नौकरी जा सकती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। व्हाट यू थिंक? अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भेज सकते हैं 5599 पे। सो ऑब्वियसली ये यू नो अदर पीपल कैन यू नो अंडरस्टैंड एंड उनको भी थोड़ी यू नो नॉलेज मिल सके, ताकि वो कुछ डिसीजन ले सके फॉर देयर ओन पर्सनल थिंग्स।
8: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-4624. First home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: वेलकम बैक। चलिए आज एक सवाल मेरा ये है जो मैं ऑफ कोर्स जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपका जवाब जानना चाहूंगा। आज जिनका जन्मदिन है वो आपको गेस करना है। काफी बढ़िया और काफी फेमस एक्टर रह चुके हैं ये। इनका जन्मदिन 1932 में हुआ था, 2004 में ये इनकी डेथ भी हो गई थी। पर यस, इन्होंने क्या मुकाम हासिल किया है बॉलीवुड फिल्म में, काफी मूवी है। एक गाना इनको जब भी देखते हैं, जब भी इनका नाम आता है तो एक गाना जो है हमेशा आता है आपके जहन में, जिनमें संजय दत्त के पिताजी भी रोल के, और वो गाना है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। सो बेसिकली उस गाने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस गाने में बेसिकली इन्होंने एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल किया है और अमेजिंग अमेजिंग किरदार निभाया। सो यस, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आप मुझे होपफुली ये वही हो, होपफुली, क्योंकि मैं जहाँ तक गेस कर रहा हूँ ये वही है। बट यस, एक पड़ोसन फिल्म में भी इन्होंने काम किया है। तो यस, आप मुझे जल्दी से मैसेज भेज दीजिए कि आज कौन किनका अपन जन्मदिन मना रहे हैं। सो यस, दत्त साहब के साथ इन्होंने काम किया है, वहाँ पे उनका सपोर्टिंग रोल था। एंड इन फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर मेरे सामने वाली खिड़की में वो उसी में था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट हाँ, पड़ोसन फिल्म का गाना है जहाँ पे इन्होंने रोल किया, और ऐसे बहुत बहुत बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं जिन्होंने इन्होंने काम किया है उसमें। सो यस, 5599 नंबर जहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, एंड इनका नाम जो एम से शुरू होता है, एम से, जी हाँ, भेज दीजिए मुझे 5599 पे कौन अपना जन्मदिन मना रहे हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, 10% चांस है बारिश के आज, लेकिन यस बहुत ही खूबसूरत दिन रहने वाला है। ऑन एंड ऑफ आज का सनसेट होगा 7:24 पे।

Kara, namaste. Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. And welcome back, yaar. Welcome back. Welcome to the second hour of this show. बहुत ही बढ़िया रहा पहला आर. इन्फॉर्मेटिव खबरें भी दी हैं और काफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे हैं. इस आर में भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आऊँगा मैं. और यस, फेस्टिवल सीज़न भी आने वाला है, सो प्लानिंग जोरों शोरों से होगी. गणपति विसर्जन अभी गया है और भी त्यौहार आने वाले हैं, यू नो, दिवाली एंड देन यू नो ईद एट्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी देयर. सो मज़ा तो आने वाला है. ये जो एंड के जो चार पाँच महीने होते हैं ना, यू नो, साल के, इट्स अमेजिंग. क्रिसमस से लेके कितना कुछ फेस्टिवल होता है, राइट? पर ये एक सवाल आया था, शायद इन्होंने मिस कर दिया था मेरी न्यूज़ अबाउट द वुलवर्थ, तो मैं वो यहाँ पे पहले पढ़ लेता हूँ एंड देन आई विल गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. वुलवर्थ न्यूजीलैंड, जस्ट फॉर यू टू रिपीट एंड जस्ट अगर किसी ने मिस किया है तो यस,